0: अभी आप सुन रहे थे स्वर रंजनी कार्यक्रम में अमिया रंजन बनर्जी द्वारा प्रस्तुत राग ललित। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाईयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवाद हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वह पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयरा सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है।

0: department said Madhya Pradesh, West Madhya Pradesh, or Saurashtra and Kutch are expected to face heavy to very heavy rainfall. In tennis, Elena Rybakina defeated Aryna Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 to win US Open Women's Singles Final at Arthur Ashe Stadium in New York last night. This is Rybakina's first US Open title and her third career Grand Slam championship following her Australian Open victory earlier in the year. And in T20 Women's Asia Cup Cricket, India will face defending champion Sri Lanka in the summit clash in Dubai today. The match will begin at 8 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:10 और ठीक 20 सेकंड हुए हैं और अब वक्त है भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदना का. वंदना कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है. मैं हूं आपके साथ अनुराधा. दोस्तों, कहा जाता है कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक जरूरी है सच्चा प्रेम और निर्मल भक्ति. जहाँ प्रेम में स्वार्थ नहीं होता वहाँ भक्ति अपने आप जन्म लेती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ ईश्वर से दूरी नहीं रहती. प्रेम वह भावना है जो हमें अपनेपन का एहसास कराती है, और भक्ति वह भाव है जो हमें परमात्मा से जोड़ देती है. आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये प्यारा सा भजन.

दोस्तों, भगवान को फूल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन अपने मन में प्रेम का फूल जरूर खिलाएं, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने का नाम नहीं, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये भी तो ईश्वर की पूजा ही है। जब मन में प्रेम होता है तो हर चेहरा भगवान का दिखाई देने लगता है और हर सेवा पूजा बन जाती है।

भक्ति की बात हो और मीरा का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, मीरा ने कृष्ण को केवल भगवान मानकर पूजा नहीं की, उन्होंने उन्हें अपने प्रेम का आधार बनाया। उनकी भक्ति में विश्वास था, समर्पण था और ऐसा प्रेम था जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। यही तो सच्ची भक्ति है, प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु की हूं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर मन में ईश्वर के प्रति विश्वास और प्रेम बना रहे तो इंसान हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। आइए अब सुनते हैं प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ एक और मधुर भजन, और रचना है मीरा की।

दोस्तों, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। ईश्वर को पाने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने मन में प्रेम जगाइए और उस प्रेम को भक्ति में बदल दीजिए। आइए सुनते हैं ये नात।

0: और प्रभु के प्रेम में से जुड़े रहे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर रवि शर्मा मधुप की लघुवार्ता, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जीवन से प्रेरक प्रसंग।
2: बहुमुखी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर विधान चंद्र राय, प्रख्यात चिकित्सक, प्रभावशाली शिक्षक, सच्चे मानवतावादी समाजसेवी, कुशल प्रशासक और समर्पित राजनीतिज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि डॉक्टर राय ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक, कोलकाता विश्वविद्यालय से चिकित्सा की डिग्री और तत्पश्चात लंदन से चिकित्सा में उच्च अध्ययन किया। इनके पिता मजिस्ट्रेट थे, किंतु अपने सेवा भाव और दान वृत्ति के कारण वे बेटे के खर्च के लिए पर्याप्त राशि नहीं दे पाते थे। मेडिकल की पूरी पढ़ाई के दौरान वे पुस्तकालय या साथियों की किताबों से ही पढ़ाई करते थे और बहुत कम किताबें खरीदते थे। वे लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वहां उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। वे लगातार आवेदन करते रहे। अंत में 30 आवेदन देने के बाद उनका प्रवेश हुआ और उन्होंने बहुत कम समय में वहां से चिकित्सा में उच्च शिक्षा प्राप्त करके सभी को अचंभित कर दिया। डॉक्टर राय अपने समय के प्रतिष्ठित और अत्यंत कुशल चिकित्सक माने जाते थे। लंदन में शिक्षा प्राप्त करने पर वहां उन्हें उच्च वेतन और सुविधाओं वाली आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव दिया गया, परंतु डॉक्टर राय अपने निर्धन देशवासियों की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस आकर्षक प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। भारत आकर उन्होंने कोलकाता में प्राध्यापन का कार्य शुरू किया। उनका विराट अनुभव, मरीजों के प्रति संवेदना, निर्धन तथा दीन दुखी लोगों की सहायता करने का भाव, अपने कार्य में दक्षता के कारण वे शीघ्र ही देश विदेश में विख्यात हो गए। वे उस समय के सभी बड़े राजनेताओं के चिकित्सक रहे, जिनमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, नेताजी सुभाष बोस आदि शामिल हैं। वे महात्मा गांधी के मित्र और निजी चिकित्सक थे। सन 1933 में गांधी जी की तबीयत उपवास के कारण खराब हो गई, लेकिन महात्मा गांधी ने यह कहते हुए दवा लेने से इनकार कर दिया कि यह दवा स्वदेशी नहीं है। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राय से पूछा, मैं आपका इलाज क्यों करवाऊं? क्या आप मेरे करोड़ों देशवासियों का मुफ्त इलाज करते हैं? डॉक्टर राय ने जवाब दिया, नहीं गांधी जी, मैं सभी रोगियों का मुफ्त इलाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी का इलाज करने नहीं आया हूँ, बल्कि उनका इलाज करने आया हूँ जो मेरे देश के करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर राय की प्रतिभा का एक और पक्ष उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ा है। वे सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में डॉक्टर राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। वे 14 वर्ष तक अपने जीवन के अंतिम दिन 1 जुलाई 1962 तक इस पद पर रहे। उन्होंने राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की, जिस कारण उन्हें आधुनिक बंगाल का निर्माता या भारत के आधुनिक वास्तुकारों में से एक माना जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वे गरीबों का न केवल निःशुल्क उपचार करते थे, अपितु आवश्यकता होने पर बहुत निर्धन लोगों को वे दवा के लिए पैसे भी दे देते थे। वे भाषा और प्रांत की संकीर्ण मानसिकता से बहुत ऊपर रहे। भाषा के नाम पर जब बंगाल और बिहार के बीच लोग सौहार्द बिगाड़ने लगे, तब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से पूछा, मेरा जन्म बांकीपुर पटना में हुआ, मैं बंगाल का मुख्यमंत्री हूँ, अब आप ही बताइए कि मैं बंगाली हूँ या बिहारी, फिर भारतीय कौन है, इंसान कौन है? अभी देश आजाद हुए चंद वर्ष हुए हैं और हम भारतीय लड़ेंगे बिहारी बंगाली बनकर? एक बार गांधी जी ने उनसे पूछा, आप आदमी की नब्ज तो टटोल लेते हैं, देश की नब्ज क्या बताती है डॉक्टर राय? वे हंसकर कहने लगे, देश की नब्ज तो सब मिलकर बिगाड़ रहे हैं, भाषा प्रांत मजहब की बीमारी तेजी से फैल रही है, ऐसे समय में नेता तो कम से कम आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारे तो राहत होगी। चिकित्सा, समाज सेवा एवं राजनीति में उनके विलक्षण योगदान को देखते हुए सन 1961 में उन्हें देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राय के सम्मान में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 47।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्रीराम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहां जहां आपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 47 अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:55 होने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने का संकल्प दोहराया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल शुरू हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास का संकल्प दोहराया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी चिंता जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल ब्रिक्स नेताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह पुस्तकालय का अवलोकन भी करेंगे। गृह मंत्री एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों के निरीक्षण के बाद जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियानों के कमांडर को पद से हटा दिया है। साथ ही ईरान के साथ लगी शलाम चे सीमा चौकी को एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस बीच हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के तटवर्ती इलाकों में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बढ़त हासिल कर ली है। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा विजेता श्रीलंका से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। 7 बार का विजेता भारत ग्रुप में सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा। वहीं श्रीलंका ने भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। अलीना रैबाकिना ने अमेरिकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रैबाकिना ने बेलारूस की आरेना सबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रैबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब है, जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने इसी वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता था। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता

0: संगीति का कार्यक्रम में अभी आप सुनीपा दास से रविंद्र संगीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। वक्त है कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए अवसर और नई ऊर्जा लेकर आती है। जीवन में कठिनाइयां तो आती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कान और आगे बढ़ना सीख लेता है, वही सफलता की मंजिल तक पहुंचता है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से। थ्री इडियट्स फिल्म से ये गीत लिया गया है।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, सूरज हर शाम को ढल जाता है, लेकिन हर सुबह फिर नई रोशनी लेकर आता है। इसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, उम्मीद का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, अगर कल का दिन आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं रहा तो निराश मत होइए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आया है। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। और नई सुबह का स्वागत कीजिए उत्साह, आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ, और अपने मन में नकारात्मक विचारों को दूर कर दें, बिल्कुल दूर कर दें, और यह विश्वास रखें कि आने वाला हर पल आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। आइए सुनते हैं फिल्म मैरी कॉम का ये गीत मोहित चौहान की आवाज में।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और आइए अब सुनते हैं फिल्म केदारनाथ का ये गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ों में।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ लगता है रास्ते ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर ठहराव के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। बस ज़रूरत है फिर से उठने की, फिर से सपने देखने की और फिर से उड़ान भरने की।

तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत सुबह खुद से एक वादा कीजिए, जो छूट गया उसे पीछे छोड़ेंगे, जो पाना है उसके लिए आगे बढ़ेंगे।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है और अब वक्त है समाचार प्रभात का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document.
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि

0: भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
4: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्री राम शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आर्यना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रावेट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब

0: अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पर आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ते के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद, जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी, कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, ब्रिक्स लीडर्स कंडेम 2025 पहलगाम टेरर अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, कॉल फॉर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। also expressed concern over the escalation of tensions in West Asia. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. West Bengal government approves DRDO's proposal to set up weapon and missile testing range in Purva Medinipur district of the state. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Gujarat today. Elena Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis in New York. And in cricket, India to take on defending champion Sri Lanka in Women's Asia Cup final in Dubai this evening. And now the news in detail. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pehelgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. More from our correspondent.
5: The New Delhi Declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed and many more injured. The attack was later traced to terrorists backed and trained in Pakistan. The declaration also called for action against the cross-border movement of terrorists, terrorism financing, and safe havens. BRICS leaders also urged the member nations to ensure zero tolerance for terrorism and reject double standard in countering terrorism. They further called for concerted actions against all UN-designated terrorists and terrorist entities. The joint declaration also expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. It said the BRICS countries will increase efforts through dialogue and diplomacy towards a long-term understanding that will contribute to lasting peace, security and stability in the region. Saklayan Akhtar, Kashwani News, Delhi.
4: In his remarks yesterday, Prime Minister Narendra Modi noted that the New Delhi Declaration provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
6: बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले.
4: Mr. Modi has proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the chairship changing every year. The Prime Minister said the mechanism would enable follow-up of all initiatives and outcomes through the Torioka.
6: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले. अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा. इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी. ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए.
4: Today is the second and final day of the BRICS summit. Our correspondent has filed this report.
7: Today, BRICS member and partner countries will participate in the session based on resilience, innovation, cooperation and sustainability, shaping the future for inclusive global growth. The 10 partner countries are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi. He will also hold meetings with vice presidents of Nigeria and Uganda. The summit is being held under India's BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with Dipendra Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
4: Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with leaders of BRICS countries yesterday. A report. Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping have reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties, and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. The two leaders expressed commitment to a fair, responsible and mutually acceptable resolution of the boundary question, proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and their

0: ओपन टेनिस में कजाकिस्तान की एलिना रायबकीना ने बेलारूस की अरियाना सबालेंका को हराकर खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में खवातीन के एशिया कप के फाइनल में दिफाई चैंपियन श्रीलंका का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स रहनुमाओं ने अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। एक मुश्तरक बयान में ब्रिक्स रहनुमाओं ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अख्तियार करने की अपील की और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के इलाकाई इत्तेहाद के अज़्म का इरादा किया। ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के पहले दिन मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किए गए नई दिल्ली ऐलामिया में कहा गया कि हर किस्म की दहशतगर्दी मुजरिमाना अमल और नाकाबिल कबूल है, ख्वाह इसके महरकात कुछ भी रहे हों और ये कार्रवाई किसी ने भी की हो। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: नई दिल्ली ऐलामिया में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है, जिसमें 26 अफराद हलाक और कई दिगर जख्मी हुए थे। बाद में इस हमले का ताल्लुक पाकिस्तान के पुष्पनाए वाले और तरबियत हासिल करने वाले दहशतगर्दों से बताया गया। ऐलामिया में दहशतगर्दों की सरहद पार नकल व हरकत, दहशतगर्दी की माली मदद और दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम करने के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। ब्रिक्स रहनुमाओं ने रुकन मुल्कों पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी को यकीनी बनाएं और दहशतगर्दी से निपटने में दोहरे मेयार को मुस्तरद कर दें। रहनुमाओं ने अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से नामजद तमाम दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मरबूत कार्रवाई का भी मुतालबा किया। मुश्तरका ऐलामिया में मगरबी एशिया में कशीदगी मुसलसल इजाफे पर भी तशवीश का इजहार किया गया और ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने के साथ ऐसे इकदाम से गुरेज करने की अपील की गई जो हालात को मजीद खराब कर सकते हैं। ऐलामिया में कहा गया कि ब्रिक्स ममालिक बातचीत और सफारतकारी के जरिए तवील मुद्दती मुफाहमत पैदा करने की कोशिशें बढ़ाएंगे ताकि खित्ते में देरपामन सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग दिया सके। ब्रिक्स रहनुमाओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि काबिल इतलाब अल-अक़वामी कानून के मुताबिक आलमी तजारत सप्लाई चेन और तवानाई की मुसलसल और बिला रुकावट फराहमी को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। ब्रिक्स इत्तेहाद ने दुनिया के कई हिस्सों में जारी तनाज़ात और आलमी निज़ाम में मौजूदा दौर में बढ़ते इख्तलाफात और धड़ेबंदी की सूरतहाल पर भी तशवीश का इजहार किया। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपने खिताब में कहा कि नई दिल्ली ऐलामिया रुकन ममालिक के लिए मुश्तरका अज़्म की वाज़ह सिमत का तायुन करता है। उन्होंने कहा कि ये अब इन रुकन ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो इन अज़ाइम को नताइज में तब्दील करें।
2: बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के तसलसल और निफाज का मैकेनिज्म जारी रखने की तजवीज़ पेश की ताकि हर साल सदारत की तब्दीली के बावजूद ग्रुप की इदारा जाती रफ्तार बरकरार रह सके। उन्होंने कहा कि ये मैकेनिज्म सैरुखी इश्तराक के जरिए सभी इकदामात और माहसल पर अमल आवरी जारी रखने के काबिल बनाएगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: आज ब्रिक्स सरबरा मीटिंग का दूसरा और आखिरी दिन है। दो रोजा सरबरा मीटिंग का आगाज कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। सरबरा मीटिंग के पहले ही दिन ब्रिक्स ममालिक ने नई दिल्ली ऐलामिया 2026 को मंजूरी दी। रहनुमाओं ने पिछले बरस 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले के सख्त अल्फाज में शदीद मजम्मत की और हर किस्म के दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने अज़्म का इरादा किया। भारत चौथी मरतबा ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: आज ब्रिक्स के रुकन ममालिक और शराकत दार ममालिक मजबूत इख्तरा ताउन और पायदार तरक्की का क्याम जामे आलमी तरक्की के लिए मुस्तकबिल की तश्कील के मौजू पर मुनाकिद होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स के 10 शराकतदार ममालिक में बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया,

0: नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं। इजलास के अख्तिताम के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और ब्रोंडी के सदूर के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वो नाइजीरिया और युगांडा के नायब सदूर के साथ भी मीटिंग करेंगे। ये सरबराह मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनक़िद की जा रही है। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस बात का इरादा किया कि भारत और चीन को अपने बाहमी ताल्लुकात और इख्तलाफात के बारे में हिकमत अमली पर मबनी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र इख्तियार करना चाहिए और इख्तलाफात को तनाज़ात में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर कल दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली दो तरफा मीटिंग में दोनों ने पिछले साल अगस्त में टिनजिन में होने वाली अपनी पिछली मुलाकात के बाद भारत और चीन के दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली मुसलसल पेशरफ्त का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि दोनों ममालिक को इलाकाई और आलमी उमूर पर मुश्तरका नुकात को मुसलसल वसत देनी चाहिए और मुख्तलिफ चैलेंजों से निमटने के लिए भी बाहमी तआवुन जारी रखना चाहिए। इससे कबल दिन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स ममालिक के रहनुमाओं के साथ कई दो तरफा मीटिंगें कीं। वज़ीर आज़म मोदी ने इथियोपिया के अपने हम मनसब डॉक्टर आबे अहमद अली, मलेशिया के अपने हम मनसब अनवर इब्राहिम और वियतनाम के अपने हम मनसब ली मिन हंग के साथ भी मीटिंग की। जनाब मोदी ने अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अनहियान के साथ भी बातचीत की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल शाम ब्रिक्स रहनुमाओं के एजाज में वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए इशाइये के दौरान एक खसूसी सकाफती प्रोग्राम नोरस मुश्तरका जज्बात की कायनात पेश किया गया। इस सकाफती प्रोग्राम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई सकाफत भी पेश की गई, जिसमें ब्रिक्स के रुकन और शराकतदार ममालिक के मौसीकारों ने एक मुनफरद मुश्तरका मौसीकी प्रोग्राम में हिस्सा लिया।

0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत को मगरबी बंगाल के मशरकी मेदिनीपुर जिले के साहिली गांव जुनपुट में एक और हथियारों और मिसाइलों के तजुर्बे के लिए आजमाइशी रेंज मिलने जा रही है। मगरबी बंगाल के वजीर अला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे DRDO की जानिब से हथियारों और मिसाइलों का तजुर्बाती मरकज कायम करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वजीर अला ने कहा कि यह मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा। जुनपुट में मुजव्वजा आजमाइशी रेंज, ओडिशा के चांदीपुर में मौजूद तजुर्बाती मरकज और आंध्र प्रदेश में तजुर्बाती मरकज के बाद DRDO का तीसरा बड़ा मरकज होगा। भारत में इस वक्त मिसाइलों की आजमाइश के लिए एक अहम मरकज मौजूद है जिसे मरबूत आजमाइशी रेंज कहा जाता है। ये ओडिशा में मौजूद 2 लॉन्च कॉम्प्लेक्स के जरिए काम करता है। जुनपुट में मुजव्वजा आजमाइशी रेंज खलीज बंगाल के रास्ते चांदीपुर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ होगी। ये नया मरकज ओडिशा के तजुर्बाती मरकज के काम का बोझ कम करेगा और मुल्क की दिफाई टेक्नोलॉजी और हथियारों के आजमाइश की सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने में मदद करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज गुजरात खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मध्य प्रदेश, मगरबी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में आज दिन में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं महकमा मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, सिक्किम और शुमाल मशरक़ी भारत के हिस्सों में भी आज दिन में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वहीं महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन के दौरान बहुत हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। नेपाल में अचानक आने वाले सैलाब की वजह से हलाकतों की तादाद 1386 हो गई है। कुदरती आफात से निपटने की कौमी अथॉरिटी के मुताबिक अब तक बरामद होने वाली 104 लाशों को शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। तकरीबन 5130 अफराद अब भी लापता हैं। अब तक 13700 अफराद को बचा लिया गया है जबकि 339 अफराद जेर इलाज हैं। तलाश और बचाव कार्रवाई अब भी जारी है। त्रियासना, रसुआ, नोवाकोट और धारडिंग जिलों में 3700 से ज्याद अफराद आर्जी पनाह गाहों में मुकीम हैं। गुज़श्ता महीने की 26 तारीख को नेपाल तिब्बत सरहद के नज़दीक बर्फानी तोदे गिरने से आने वाले सैलाब ने शुमाली और वस्ती नेपाल के कस्बों और देहातों को तबाह कर दिया था। इराक ने मायसन सूबे की फौजी कार्रवाइयों के कमांडर को बरतरफ कर दिया है और ईरान के साथ अपनी शलमचे सरहद क्रॉसिंग को आर्जी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों के बाद जाँच के दौरान ये कार्रवाई की गई। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि इन हमलों की शुरुआत इराक से हुई है, तहम सऊदी अरब ने कोई जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला किया था। टेनिस में एलिना रायबाकीना ने US ओपन के खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। रायबाकीना ने कल शाम न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अरीना सबलेंका को 6-4, 5-7 और 6-2 से शिकस्त दी। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद ये रायबाकीना का पहला US ओपन खिताब और करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इस जीत के साथ ही रायबाकीना WTA आलमी रैंकिंग में सबलेंका को हटाकर आलमी नंबर 1 बन गई हैं। खवातीन के T20 एशिया कप क्रिकेट फाइनल में आज भारत का मुकाबला दिफाई चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये खिताबी मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। 7 मरतबा की चैंपियन भारतीय टीम बिना कोई मैच हारे फाइनल में पहुंची है और सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से शिकस्त देने से पहले वो 3 फुतूहात के साथ ग्रुप ए में सरफहरिस्त रही। वहीं श्रीलंका भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त देने से पहले अपने 3 ग्रुप मैच जीतकर फाइनल में पहुंची है। मर्दों के क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 बैन अलावी मैचों की सीरीज का आगाज करेगा। सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा T20 मैच मंगल के रोज जबकि तीसरा मैच जुमेरात को होगा। सभी 3 मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने ब्रिक्स सरबराह इजलास के दौरान ब्रिक्स एलामिया को मंजूर किए जाने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے پیش کیا گیا برکس کا نئی دلی اعلامیہ اتفاق رائے سے منظور، بین الاقوامی امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے مضبوط عالمی اقدامات پر زور۔ روزنامہ پرتاب نے وزیراعظم نریندر مودی اور چین کے صدر کے ساتھ ملاقات کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، برکس سمٹ میں شی جن پنگ کی شرکت سے بھارت چین تعلقات میں بہتری کی امید۔ برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی، روس کے صدر ولادیمیر پوتین، چین کے صدر شی جن پنگ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے بھارت انویٹس نمائش کے دورے کی خبر کو سرخی بنایا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس رہنماؤں نے جموں کشمیر میں 2025 پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے، دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی اپنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر قزاقستان، فلپینز، مصر، جنوبی افریقہ اور برونڈی کے صدور کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ مغربی بنگال حکومت نے ڈی آر ڈی او کی جانب سے ریاست کے مشرقی مدنی پور ضلع میں ہتھیاروں اور میزائلوں کی آزمائش کے لیے تجرباتی مرکز قائم کرنے کی تجویز کو منظوری دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج گجرات میں بہت شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور نیو یارک میں یو ایس اوپن ٹینس میں قزاقستان کی ایلینا رائباکینا نے بیلاروس کی آریانا سابالینکا کو ہرا کر خواتین سنگلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: آکاشوانی دلی ہے، لیجیے سنیے ہمارا ساپتاہک کاریکرم ساہتیہ کی۔ شروتاؤں، جب ہم اپبھرنش اور اوہٹ کے سندھی کال کو کھنگالتے ہیں تو سرہپا اور گورکھ ناتھ کی وانیوں میں ہمیں اپنی بھاشا کے آرمبک پد چاپ سنائی دیتے ہیں۔ راسو کاوی کی ویر رس سکت ڈنگل پنگل سے گزرتے ہوئے جب یہ یاترا کبیر کی الٹ باسیوں، جائسی کی مثنوی، سور کے واتسلیہ اور تلسی کے مانس تک پہنچتی ہے تو بھاشا کیول ابھیویکتی کا سادھن نہیں رہتی، وہ جن مانس کی جیون درشن بن جاتی ہے۔ بھاشا کے سماج شاستری اور کاویاتمک روپانترن کو سمجھنا سدا وسمکاری رہا ہے۔ اسی بودھک یاترا کو جاننے کے لیے لیجیے سنیے پریچرچا ہندی بھاشا آدی کال سے سورن کال تک۔ پرتیبھاگی وشیشجھ ہیں ورشٹھ ساہتیہکار اور بھاشا وشیشجھ ڈاکٹر ویملیش کانتی ورما، ورشٹھ ساہتیہکار اور پرادھیاپک ڈاکٹر راجیندر گوتم، ورشٹھ بھاشا وشیشجھ اور ہندی ندیشک پروفیسر ہتیش مشر،

0: वरिष्ठ पत्रकार और प्राध्यापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे, पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे।
1: युवाल नोआ हरारी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सेपियंस में लिखते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के क्रम में सेपियंस प्रजाति अन्य करोड़ों प्रजातियों की तुलना में इसलिए आज तक विद्यमान है क्योंकि उसके पास भाषा थी। किसी भी सभ्यता के निर्माण एवं विकास की आवश्यक शर्त उसकी भाषा ही है, क्योंकि भाषा ही वह पूंजी है जो व्यक्ति और समाज को एक साथ जोड़कर रखती है। और बदलते समय में संस्कृति के साथ भाषा भी निरंतर परिवर्तित होती जा रही है। उसके कई स्वरूप हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, या यूं कहें विकसित हो रहे हैं। जैसे पहले कहा जाता था, कोश कोश पर बदले पानी और चार कोश पर वाणी, वैदिक एवं संस्कृत साहित्य से शुरू हुई हिंदी की यह यात्रा प्राकृत पाली अभ्रंश से होते हुए ब्रज और अवधी के रास्ते खड़ी बोली हिंदी तक पहुंची है। और यही नहीं, हिंदी की यह यात्रा आगे भी निरंतर जारी रहेगी, वैसे ही परिवर्तन की संभावनाएं भी इसमें दिखाई देती रहेगी, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी पहचान है, हमारी अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। चाहे वो अमीर खुसरो हो, विद्यापति हो, जायसी हो, तुलसी हो, सूर हो, मीरा हो, केशव हो, बिहारी हो, भारतेंदी हो, मैथिलीरत्न गुप्त हो, राजेश जोशी हो, तो जो अमीर खुसरो से चली हुई भाषा की जो प्रकृति है, जो भाषा के लक्षण है, उसमें कहीं ना कहीं समय के हिसाब से परिवर्तन दिखाई देता जा रहा है। और आज हम यहाँ पर हिंदी भाषा आदिकाल से स्वर्ण काल तक की परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा हितेंद्र जी आप ही से, भाषा क्या है?
2: दरअसल भाषा प्रथमतः जिस कार्य के उपयोग में लाई जाती है वह विचारों का विनिमय है, किंतु इसकी परिधि में केवल विचारों का विनिमय ही नहीं आता। भाषा संपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा की, संपूर्ण मानवीयता के विकास की गाथा को अभिव्यक्त करने का माध्यम है
1: जी।
2: हम मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से, जब हम भाषा के बड़े व्यापक आयामों को देखते हैं तो वह सिर्फ अभिव्यक्ति के माध्यम तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वह विस्तार लेकर के संपूर्ण चराचर जगत के, इस संपूर्ण प्रकृति के अभिव्यक्ति का, प्रस्तुति का, पहचान का माध्यम बन जाती है
1: जी।
2: इस रूप में देखा जाए तो भाषा को हम केवल अभिव्यक्ति तक सीमित करके उसे मैकेनिकल बनाने की जो चेष्टा कुछ लोगों द्वारा की जाती है, उसे बाहर निकल करके इसे संस्कृति एवं संवेदना की अभिव्यक्ति का माध्यम के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। यदि हम बात करें तो मानते हैं कि प्राकृत पाली संस्कृत से निकली हुई अभ्रंश भाषाओं के रूप में इसका एक बहुत योगदान रहा। क्या विमलेश जी, आदिकाल की भाषाई विविधता और व्याकरणिक अनिवार्यता को हम हिंदी भाषा का शैशवकाल कह सकते हैं क्या?
3: धन्यवाद आलोक जी। हिंदी के संबंध में बहुत सी भ्रांत धारणाएं हैं
1: जी।
3: मुझे लगता है कि जो प्रश्न आपने पूछा है, अगर उन भ्रांत धारणाओं का समाधान हो जाए तो बहुत सी चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। पहली चीज तो ये है कि हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है
1: जी, जी
3: भाषा है, लेकिन संस्कृत से हिंदी का जन्म नहीं हुआ है। संस्कृत हिंदी की जननी नहीं है, हिंदी की जननी अपभ्रंश है। पहली चीज, हिंदी का अर्थ खड़ी बोली नहीं है, हिंदी का अर्थ वे 17 उपभाषाएं हैं जिनको मिलकर के हिंदी एक समष्टि रूप में समझी जाती है। उसमें अगर हम उपभाषाओं के रूप में देखें तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, जिसे हम राजस्थानी हिंदी कहते
1: जी, जी, जी, जी, जी, जी।
3: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसे हम पूर्वी हिंदी कहते हैं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, जिसे हम पश्चिमी हिंदी कहते हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी, जिसे हम बिहारी हिंदी कहते हैं,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: और गढ़वाली और कुमायूनी, जिसे हम पहाड़ी हिंदी कहते हैं। तो पहाड़ी हिंदी कोई भाषा नहीं है, राजस्थानी कोई भाषा नहीं है। इसके अंतर्गत जो भाषाएं हैं उनको समझाने के लिए हमने सुविधा के लिए एक नाम दे दिया है, राजस्थानी हिंदी। तो अगर आप कहते हैं राजस्थानी भाषा, वो गलत है। आप कहते हैं पहाड़ी भाषा, वो गलत है। जब राजस्थानी कहते हैं तो आपको बताना होगा कि मारवाड़ी है, कि मेवाड़ी है, कि मेवाती है, कि जयपुरी है, क्या है
1: जी,
3: है ना
1: जी।
3: इसी तरह आज जो सबसे अधिक भ्रम हो रहा है, हमने हिंदी को खड़ी बोली मान लिया है। खड़ी बोली हिंदी की 1/17 भाषाओं में एक मानी जाती है ना। आज जो हमने संविधान में हिंदी को अष्टम अनुसूची में रखा है और उसके साथ हमने मैथिली को रख दिया, इसका मतलब है विद्यापति उससे हट गए। अगर साहित्य अकेडमी ने हिंदी के साथ राजस्थानी को रख दिया, इसका मतलब मीराबाई हट गई, बेल कृष्ण रुक्मणी री हट गई, है ना। हिंदी एकेडमी जो दिल्ली सरकार है उसने भोजपुरी और मैथिली एकेडमी बना दी, इसके मतलब भोजपुरी और मैथिली हिंदी साइड की, तो हिंदी को एक खड़ी बोली का रूप देना जो
1: नहीं,
3: है
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
3: वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे कि एक वटवृक्ष होता है, हाँ। उस वृक्ष के नीचे बहुत सारी शाखाएं होती हैं और हिंदी उसी वटवृक्ष के समान है और उसके अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं और सभी शाखाओं के मिलने से ही
3: तब हिंदी बनती,
1: हाँ, हिंदी बनती है,
3: हिंदी भाषा समष्टि का नाम,
1: बिल्कुल बिल्कुल हिंदी भाषा समष्टि का नाम है
2: जी।
1: राजन जी, अमीर खुसरो मुखरिया लिखा करते थे
2: जी जी,
1: और वो लिखा भी उन्होंने कि रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सखी तारा। तो अमीर खुसरो जिसे हम पुरानी हिंदी कहते हैं, और जब भारतेंदु आते हैं तो वो लिखते हैं कि भीतर भीतर सब रसी चूसे, हंसी हंसी के तनमन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्या सखी साजन नहीं अंग्रेज। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में दिखाई देने वाली जो खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप है, उसका विकास भारतेंदु तक आते आते एक नए रूप में होता है, और जिस समय राजेश जोशी लिख रहे हैं, जिस समय आप लिख रहे हैं, जिस समय विमलेश जी लिख रहे हैं, जो आजकल हिंदी का स्वर्ण युग माना जा रहा है, सर्व समावेशी की बात की जा रही है, तो उस हिंदी को वटवृक्ष के रूप में मानते हैं कि ले लो
2: जी।
1: और कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि व्याकरण और ज्यादा ध्यान दोगे तो हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो वो अभ्रंश से निकली हुई हिंदी जिसे हम पुरानी हिंदी कहते हैं और आज का स्वर्णकाल हिंदी है, आपको किस रूप में दिखाई देता है?
2: आपका सवाल बहुत व्यापक है और देखा जाए तो यह अतीत और वर्तमान दोनों को जोड़ता है।
1: जी जी।
2: पहले थोड़ी बात अतीत की ही की जाए और फिर हम वर्तमान तक आते हैं।
1: जी जी जी।
2: असल में ये जो भाषा का विकास है मोटे रूप में, तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे वर्मा जी कि अपभ्रंशों से होते हुए जैसे हिंदी आई है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। मैं यहाँ ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो ही हम संस्कृत से आगे बढ़ते हैं तो हम अपभ्रंशों और प्राकृतों शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बहुवचन है, तो ये बहुवचनीयता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असल में ये विकास तत्सम से तद्भव की ओर जाने वाला विकास है। ये जो तद्भवता है ये लोक के साथ जुड़ती है, लोक सत्ता के साथ जुड़ती है, और हिंदी का विकास जनपदीय रूप में हुआ है, लोक के साथ जुड़कर हुआ है, ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो खुसरो की ही बात ले। आपको मैं एक बहुत रोचक एक हवाला देना चाहता हूँ। खुसरो ने नौ सेपर जो उनकी फारसी की कृति है उसमें भारत की भाषाओं पर लिखा है। एक खास बात यह भी है कि जिसे हम हिंदी कहते हैं पहले इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में नहीं हुआ, पहले तो इसका प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ, जो हिंद से जुड़ी हुई है, हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है, कोई भी चीज, केवल भाषा नहीं, कोई भी चीज वो हिंदी है, लेकिन बाद में वो हिंदवी के रूप में आया। वो कहते हैं सिंधी ओ लाहौरी ओ गर, धुर समंदरी तिलंगी ओ गुजर, मानवरी ओ गोरी बंगाल अवध, दिल्ली ओ पैरा मनस अंदर अमाहद अदर अमाहद, ई हमा हिंदिस हिंदिस वस हिंदविस्त जी ए या मे कुहन, अम्मा बाकार बकारस्त बहर गुना सुखन।
1: जी जी जी।
2: अब देखिए वो भारतीय भाषाओं को गिनाते हैं इसमें, जिससे ये भी पता चलता है कि उस समय पूरे भारत का एक संगठित बिंब बन चुका था, जिसमें वो सिंधी पंजाबी मराठी कश्मीरी कन्नड़ तेलुगु गुजराती तमिल असमिया बंगला अवधी दिल्ली तथा उसके आसपास की भाषाओं का जिक्र करते हैं, अलग से हिंदी का जिक्र नहीं करते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: उसको देहलवी कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि खुसरो जो है वो देहलवी के रूप में जिस तरह से उसका जिक्र करते हैं, जिन मुकरियों का और उनकी पहेलियों का उल्लेख आपने किया है, वहां से वो विकसित होनी शुरू होती है और मध्य काल में इसका विकास बहुत समृद्ध है। और समृद्धि का कारण वही है जो डॉक्टर वर्मा बता रहे थे कि जनपदीयता का उसमें समावेश है, उसमें अनेक बोलियां समाहित हैं, केवल खड़ी बोली के रूप में नहीं बल्कि अनेक बोलियां समाहित हैं। लेकिन वही जब आगे चलकर 19वीं शताब्दी का जब भारत हमारे सामने आता है तो यहाँ कुछ राष्ट्रीय आंदोलन इस रूप में विकसित होते हैं कि उसको अभिव्यक्ति का एक सामूहिक माध्यम बनाया जाने लगा, और तब खड़ी बोली अपने आप में हमारे सामने आती है, वो लोक जागृति के साथ साथ एक सांस्कृतिक जागृति और राजनीतिक जागृति का माध्यम बनकर आती है। इसमें आकर वो एक नया रूप धारण करती है, जैसे आपने स्वर्ण काल का
4: शताब्दियों का, मैं संक्षेप में बात खत्म करता हूँ, देखा जाए तो भाषा का स्वर्ण काल है या साहित्य का, ये भी सोचना पड़ेगा। हमने साहित्यिक रूप में तो स्वर्ण काल को मध्य युग में ही पढ़ा है, भक्ति काल को ही स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं, और उसके बाद तो फिर छायावाद को ही स्वर्ण युग के रूप में जाना गया। लेकिन भाषा का कोई इस तरह का स्वर्ण युग हो सकता है, ये एक सोचने विचारने की बात है। हाँ, ये कह सकते हैं कि

0: व्यापकता की दृष्टि से यह स्वर्णयुग
1: नहीं,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। सोहनलाल द्विवेदी लिखते हैं कि बिहारो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे सूर की कुटी में और आसन जमाइए, केशव की कुंज में तिलोल तेली कीजिए या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, देव की दरी में दूरी दिव्यता निहारिए या भूषण की सेना के सिपाही बने जाइए, अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए।
0: बहुत अच्छे,
1: तो हिंदी के हिंडोले में बैठने वाला जो काल है सर, और यह मध्य काल से, जिसे हम पुरानी हिंदी कह दें और कहें कि अपभ्रंश से अवहट से निकली हुई हिंदी, मध्य काल के युग में जो कबीर सधुकरी भाषा का प्रयोग करते हैं, सुर के यहाँ तुलसी के यहाँ साहित्यिक रूप से जो हिंदी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देता रहा है। रीतिकाल में आके और परिवर्तित हमें दिखाई देता है। तो हितेंद्र जी, सुर तुलसी केशव बिहारी घनानंद जैसे प्रचुर साहित्यकार ने, मैं साहित्यकार मान लेता हूं, इन सब ने हिंदी को समृद्ध किया, क्या आपको नहीं लगता कि आधुनिक साहित्यकार साहित्य और भाषा को समृद्ध करने में जिस अतीत की बात कर रहे थे सर, उस अतीत को अपने अंदर सामंजस्य करके और जिस हिंदी के स्वर्ण काल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कितना उन्होंने अपनाया है?
0: देखिए, जब हम किसी भाषा साहित्य के स्वर्ण काल की बात करते हैं, जब
1: जी,
0: तो स्वर्ण काल मतलब हमने एक तय कर लिया कि उस समय इस भाषा की समृद्धि, इस साहित्य की समृद्धि शिखर पर है, और शिखर के आगे की जो यात्रा है वह भी उतनी ही दिलचस्प होती है जितनी शिखर की होती है।
1: बिल्कुल
0: भाषा और साहित्य के स्वर्ण काल, जिसे मध्य काल में आपने रेखांकित किया, किसी भी साहित्य को, किसी भी समय को उस समय के इतिहास से भी हमें देखना चाहिए। और जो समय है मध्य काल का, उस मध्य काल के समय में आप देखें तो जो भारत का राजनीतिक परिदृश्य है, उस परिदृश्य में लोगों को जोड़ने का माध्यम भाषा और साहित्य बनता है। और जब कोई भी भाषा और साहित्य लोक से जुड़ता है, तभी वह अस्थायी और दीर्घजीवी होता है, तभी वह अपने स्वर्ण स्थिति में पहुंचता भी है। तो इस लोक भाषा का जो प्रयोग उस समय के कवियों ने किया, जो लोक जरूरतों को अपने कविता में प्रस्तुत किया, जब देश में अनेक प्रकार के व्यवधान राजनीतिक चल रहे थे, ऐसे में जनमानस को एकत्र करके राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय समन्वय बनाने की जो चेष्टा की, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
1: महत्वपूर्ण, जी।
0: और उसको लेकर हम आगे चल के देखें तो जब हमारे समय बदलते हैं, स्वतंत्रता के बाद हमारे उद्देश्य बदलते हैं, हमारा समय बदलता है, हमारी कार्यपद्धति बदलती है, उस स्वर्ण काल से और आज के काल को हम जब देखने की कोशिश करते हैं तो एक समानता पाते हैं कि दोनों साहित्य में
1: जी,
0: पहली बार और बड़े प्रखर ढंग से मनुष्य की उपस्थिति दिखाई देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: आम आदमी, आम मनुष्य के सुख दुख, जीवन की चिंता इन दोनों में दिखाई देती है।
1: जी,
0: आदिकाल और रीतिकाल थोड़ा पीछे इसलिए हो रहा कि आदिकाल में केवल शौर्य गाथाएं अधिकांश थी, श्रृंगार गाथाएं थी। आप रीतिकाल में आकर के देखा तो श्रृंगार ही प्रमुख रस बन जाता है।
1: जी।
0: लेकिन इस मध्य काल में
1: जी,
0: जो मनुष्य की चिंता है, मनुष्य के सुख के, मनुष्य के जीवन की चिंता है, वो दिखाई देती है, चाहे वो पारलौकिक हो चाहे वो अलौकिक हो। और आज के भी साहित्य में मनुष्य जो सशरीर उपस्थित हुआ, उसी मध्यकालीन मनुष्य का दूसरा अवतरण आधुनिक साहित्य में दिखाई देता है।
1: जी।
0: इस रूप में इस साहित्य को, इस भाषा को हम देखते हैं कि यह कैसे मध्य काल के स्वर्ण काल से
1: जी,
0: आधुनिक काल के स्वर्ण काल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वह किसी एक रेखीय ढंग से दिखाई देता है।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हितेंद्र जी ने एक रेखीय की बात की बिमलेश जी, और बहुत अच्छे तरह से मैथिली शरण गुप्त भी लिखते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए, भाषा में बनावटी पन्ना होना चाहिए। और आपने तो पहले ही कह दिया कि एक बट वृक्ष है, उसके सामने बहुत सारी भाषाएं हैं। तो हिंदी भाषा के विकास में, प्रचार प्रसार में, क्षेत्रीय भाषाएं, जिसको हम अब क्षेत्रीय भाषा मान ले, जो उसके अंदर की जो पहाड़ी है, राजस्थानी है, चलिए भारतीय भाषा मान ले, क्षेत्रीय भाषा मान ले, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा है, हरियाणी, तो भारतीय जो 22 भाषाएं हैं, भाषाओं और बोलियों के मिश्रण की जो सार्थक एवं प्रभावी वैज्ञानिक भूमिका रही है, क्या इनकी जो हमारी 22 बोलियां भाषाएं हैं उनसे हिंदी समृद्ध हुआ है, या आजकल हिंदी और छोटी छोटी भाषाओं में जो आपसी घालमेल चल रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, आप क्योंकि आप भाषाविद हैं तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
2: अनुज जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा सामयिक प्रश्न है ये। हिंदी जो है, हम सब जानते हैं कि 11 प्रदेशों की मातृभाषा है
1: जी,
2: और ये जो 11 प्रदेश हैं, देश का लगभग आधा भाग है। इसके साथ जो भाषाएं सीमावर्ती प्रदेश की हैं, वे सब लोग भी हिंदी जानते हैं।

0: और वहां पर हिंदी जो है वो एक संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। आज देश में आलोक जी अगर सच पूछा जाए
1: जी
0: तो हिंदी का कोई विरोध कितना भी करे लेकिन जानते हिंदी सब हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं
1: जी
0: और हिंदी में कार्य करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि सारी भारतीय भाषाओं के मध्य में हिंदी जो है एक हृदय मणि की तरह है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जैसे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, और सब भाषाएं जो हैं वो मणियां हैं लेकिन ये जो है ये मुख्य मणि है जो सबकी चमक को अपने में समेटे हुए है, क्योंकि उसके साथ देश की 22 जो बोलियां हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं आलोक
1: जी
0: जी,
1: जी जी जी
0: आज का जो विषय रखा है
1: जी जी
0: भाषा का स्वर्ण काल,
1: जी जी
0: तो स्वर्ण काल अगर भाषा का है तो साहित्य का तो होगा ही होगा,
1: जी
0: लेकिन भाषा के स्वर्ण काल का अर्थ क्या है? भाषा के स्वर्ण काल का अर्थ है कि जो संभावित विकास की दिशाएं भाषा के संदर्भ में हो सकती
1: जी
0: हैं
1: जी जी
0: वो आज हमें दृष्टिगत हो रही हैं।
1: जी
0: उदाहरण के लिए एक समय था जब हिंदी शब्द सागर सबसे बड़ा शब्दकोश था,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मानक हिंदी का मानक हिंदी कोश था रामचंद्र वर्मा का था, और आज निदेशालय ने शब्द सिंधु बनाया हुआ है
1: जी बिल्कुल जी
0: जिसमें 7 लाख से अधिक शब्द हैं, तो ये तो स्वर्ण युग ही तो है।
1: जी
0: हिंदी जो है वो तकनीकी भाषा के साथ ही साथ वो कृत्रिम मेधा का एक मूल आधार बन गया है। हिंदी भाषा का अनुवाद किसी भी भाषा में आज आप यांत्रिक बुद्धि के माध्यम से, यांत्रिक मेधा के माध्यम से कर सकते हैं। अंग्रेजी से हिंदी पीछे नहीं, फ्रांसीसी से हिंदी पीछे नहीं। तो जो हिंदी को बढ़ाने के जो अंतर्राष्ट्रीय माध्यम हो सकते हैं आज वो विदेशी भाषाओं के साथ ही हिंदी में भी उपलब्ध है,
1: उपलब्ध
0: तो
1: बिल्कुल
0: यही हिंदी का स्वर्ण युग है। इसके साथ ही साथ जो साहित्य लिखा जा रहा है वो जो विदेश में से हिंदी का साहित्य लिखा जा रहा है जिसमें भारत की सुगंध बसती है, पहले हम सिर्फ देश में लिखा जा रहा जो हिंदी का साहित्य उसकी चर्चा करते थे, आज हम हिंदी के विश्व की चर्चा करते हैं।
1: जी
0: हिंदी कहाँ कहाँ विकसित है और उसका साहित्य कितना प्रचुर और कितना समृद्ध है, ये आज हिंदी के स्वर्ण युग का एक प्रतिबिंबन है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं विमलेश जी, क्योंकि जैसे जैसे हमारे देश की मुद्रा व्यवस्था अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन है,
1: जी
2: 2007 में $1 ट्रिलियन थी, और आने वाले समय में हो सकता है 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, हो सकता है कि $24 ट्रिलियन हो जाए। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे हिंदी भी बढ़ेगी, और हिंदी कभी भी किसी चीज की मोहताज रही नहीं है, क्योंकि हिंदी दिल की भाषा है, जोड़ने की भाषा है, जन जन की भाषा है। राजेंद्र जी से एक छोटा सा सवाल, कबीर ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। और जो कबीर की भाषा हम कहते थे पंचमेल खिंचरी है, सदुकरी है, और तुलसीदास की भाषा, क्योंकि हम यहाँ भाषाई रूप में साहित्य को जोड़ कर देख रहे हैं भाषा के विकास
1: ठीक
2: में,
1: सही
2: और तुलसीदास की भाषा संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा, तो इन दोनों का विकास बढ़ता गया, और आज हम जिस रूप में राजेश जोशी को पढ़ते हैं, अरुण कोमल को पढ़ते हैं, वो न संस्कृत निष्ठता है न वो सदुकरीपन है,
1: जी
2: जो एक छंद मुक्ता की बात है। तो क्या ये सच में हिंदी का स्वर्ण युग है
1: सही है।
2: भाषाई रूप से,
1: आपने
2: साहित्य
1: बात
2: दृष्टि में?
1: पहले कबीर और तुलसी
2: जी
1: के
2: जी
1: साथ
2: जी
1: शुरू की
2: जी जी जी
1: और दोनों के अंतर की बात की,
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन मैं अंतर के साथ दोनों में एक समानता देखता हूं। पहले उसकी बात कर लो, फिर हम अंतर पर
2: जी जी
1: आएंगे।
2: जी जी जी
1: समानता वो शुरू हो जाती है आदिकाल से ही, जब भाषाई नवजागरण आरंभ होता है। जो सत्ता की भाषा है या उच्च वर्ग की भाषा है उसकी तुलना में लोक की भाषा विद्रोह करती है, और एक तरफ तो आपके विद्यापति जो कहते हैं कि ये जो देसिल बैना है,
2: सबजन
1: तो
2: सबजन
1: देसिल
2: मिठा
1: बैना सबजन मिठा ते
2: हाँ
1: तैसन जम्पव अवहट्ठा,
2: अवहट्ठा
1: और बिल्कुल समानांतर रूप से उसी समय खुसरो भी यही कहते हैं कि मुझे अरबी का ज्ञान नहीं है, होते हुए भी वो कहता है मुझे अरबी का ज्ञान नहीं है, मुझसे बात करनी है तो हिंदवी में मुझसे बात करो, जो मिठास हिंदवी में है वो मुझे किसी और भाषा में नजर नहीं आती। ये एक परिवर्तन है, और यही परिवर्तन तुलसी में भी मिलता है। जिस संस्कृत निष्ठा की बात आप करते हैं, संस्कृत के विद्वान होते हुए भी उन्होंने संस्कृत में रचना नहीं की, उन्होंने काव्य रचना की अवधि में, अवधि जो कि एक लोक भाषा थी। तो कबीर और तुलसी में फर्क है निश्चित रूप से, और वो फर्क इस बात का विशेष रूप से है कि जो कबीर हैं वे उस जन समुदाय के साथ विशेष रूप से जुड़े हुए हैं जिसमें वे सामान्य

0: व्यक्ति के साथ अपना जुड़ाव अनुभव करते हैं। एक खास बात आपने देखी होगी मध्यकालीन कविता में, कृषि और व्यापार से जुड़ी हुई शब्दावली संत साहित्य में बहुत विपुल रूप में प्रयुक्त हुई है। जितनी विपुलता आपको इन विषयों की दिखाई देती है भाषा में, और शायद कहीं आपको दिखलाई न दे, तो इसलिए तुलसी और कबीर को हम बिल्कुल अलग अलग खानों में बांटकर नहीं देख सकते, बल्कि लोक से जुड़ाव तुलसी का भी है और लोक से जुड़ाव कबीर का भी है। आपने कहा कि आधुनिक युग के विकास के बाद, अब देखिए कि निराला की राम की शक्ति पूजा की भी भाषा है अपनी,
1: जी जी बिल्कुल,
0: और कुकुरमुत्ता की भी भाषा,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वही निराला कुकुरमुत्ता भी लिखते हैं और राम की शक्ति पूजा भी लिखते हैं, और दोनों की भाषा शैली बिल्कुल भिन्न है। तो स्मृति भी लिखते हैं, और तुलसीदास काव्य जो है तो निराला का, उसकी भाषा को भी आप देखिए, आपको एक विशेष अंतर दिखाई देगा। तो एक ही युग में अज्ञेय भी लिखते हैं और जैनेन्द्र भी लिखते हैं, अज्ञेय की भाषा का स्तर दूसरा है और जैनेन्द्र की भाषा का स्तर दूसरा है, और उससे थोड़ा सा ही पहले प्रेमचंद का अलग है। तो आधुनिक युग में वैविध्य है भाषा का, और वो वैविध्य वहीं से आया है, मध्यकाल से ही विविधता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और कुल मिलाकर आज की चर्चा का जो हम सार निकालें, तो ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य हमारी पहचान, संस्कृति और अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर माध्यम है। और एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है जगदीश ब्योम ने, वो लिखते हैं कि तुलसी कबीर सुर और रसथान के लिए, तुलसी कबीर सुर और रसथान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से यही बही धार है हिंदी, सिद्धांतों की बात से न होगा भला, सिद्धांतों की बात से न होगा भला जब तक हम उसे जीवन में लहराएंगे नहीं हिंदी। आप सबने समय दिया, बहुत बहुत आभार,
2: बहुत धन्यवाद।
3: हिंदी भाषा आदिकाल से स्वर्णकाल तक, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ साहित्यकार और भाषा विशेषज्ञ डॉ. विमलेश कांति वर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार और प्राध्यापक डॉ. राजेंद्र गौतम, वरिष्ठ भाषा विशेषज्ञ और निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र, और वरिष्ठ पत्रकार और प्राध्यापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। और आइए अब सुनते हैं इस सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां। प्रस्तुत कर रही है युवा पत्रकार डॉक्टर तन्वी त्यागी।
4: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सितंबर माह हिंदी दिवस की आभा तले साहित्यिक गतिविधियों से भरा रहा। सभी सरकारी विभागों, संस्थानों, निगमों और स्कूल कॉलेजों में अनेक साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रविवार 6 सितंबर को हिंदी भवन में प्रतिष्ठित साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था लम्हे जिंदगी का पंचम वार्षिकोत्सव एवं संस्था की वार्षिक साहित्यिक पत्रिका रुचिरा का लोकार्पण समारोह हिंदी भवन में साहित्य, संस्कृति, कला और सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कात्यायनी पूर्णिमा शर्मा रही। विशिष्ट अतिथियों में वरिष्ठ साहित्यकार और भाषाविद डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा और वरिष्ठ साहित्यकार विनय कुमार वर्मा रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ईशा भारद्वाज, डॉक्टर अनीता त्रिपाठी, हिमांशु शुक्ल जी ने किया, जबकि श्री सचिन परवान ने बच्चों के कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया। समारोह में बाल कवियों की काव्य प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। वान्या भट्ट की मनमोहक नृत्य प्रस्तुति तथा दिव्यांग बच्चों की भावपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुति ने पूरे समारोह को भाव विभोर कर दिया। संस्था की ओर से इन विशेष प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर विमलेश कांति को संस्था के सर्वोच्च ब्रज प्रेम विभूति सम्मान से अलंकृत किया गया। वहीं हास्य शिरोमणि सम्मान से श्री अवधेश कन्नौजिया जी को सम्मानित किया गया। ज्ञानपुंज सम्मान से श्री मनोज कामदेव, श्री नीरज सक्सेना एवं श्री ओंकार त्रिपाठी जी को सम्मानित किया गया। साहित्य सारथी सम्मान से वॉव इंडिया बानो बंसल, ट्रू मीडिया के डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति एवं प्रतीक स्पेशल स्कूल की श्रीमती रीटा सक्सेना को सम्मानित किया गया। लम्हे अवार्ड्स के अंतर्गत ज्योति जुल्का, डॉक्टर ईशा भारद्वाज, डॉक्टर अनीता त्रिपाठी एवं अवधेश कन्नौजिया, स्मृति श्रीवास्तव जी को सम्मान प्रदान किया गया। वहीं रुचिरा के रचनाकारों तथा मीडिया क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रूप सिंह जी और श्री गौरव जैन को सम्मानित किया गया। देश भर से आए अन्य साहित्यकारों, कवियों एवं सहयोगियों को भी सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। संस्था की संस्थापिका डॉक्टर पूजा भारद्वाज ने सभी अतिथियों, साहित्यकारों, रचनाकारों, कलाकारों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लम्हे जिंदगी का उद्देश्य जीवन के छोटे छोटे लम्हों को साहित्य के माध्यम से सार्थक बनाना, नई प्रतिभाओं को मंच देना और साहित्य को समाज से जोड़ना है। कार्यक्रमों की कड़ी में 8 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में आमंत्रित विद्यार्थियों एवं शिक्षाविदों के समक्ष विकसित भारत हिंदी भाषा और साहित्य विषय पर एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह सहित प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर ममता कालिया, वरिष्ठ लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र, वरिष्ठ लेखक एवं प्राध्यापक डॉक्टर बलराम पाणी, वरिष्ठ लेखिका और भाषाविद प्रोफेसर रजनी अब्बी और हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर सुधा सिंह उपस्थित रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा,
2: भाषा अपने आप में ताकतवर और कमजोर नहीं होती, उसके बोलने वालों की ताकत तय करती है कि भाषा की क्या ताकत। जब 20 ट्रिलियन डॉलर के भारत के लोगों की आवाज भारत में और भारत के बाहर सुनेगी और गूंजेगी तो हिंदी उसकी पताका पर होगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि भाषा की शक्ति उसके व्याकरण और शब्दकोश में होती ही नहीं है। होना चाहिए अच्छा व्याकरण, होनी चाहिए अच्छा शब्दकोश, लेकिन यह उसकी शक्ति का कारण नहीं है। भाषा की शक्ति उसके बोलने वालों की शक्ति होती है। इस कारण से जो बढ़ता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत है, इसमें हिंदी ताकतवर होगी ही, आप चाहें या न चाहें, आप सहयोग करें या न करें। क्योंकि जो जन जन की भाषा है, सबकी भाषा है, मेरी भाषा है, आपकी भाषा है, न जाने कितने भारत के लोगों की भाषा है, भारत बढ़ेगा तो हिंदी बढ़ेगी।
4: कार्यक्रम में बोलते हुए प्रोफेसर सुधा सिंह ने कहा,
5: हम सबको पता है कि हिंदी की यात्रा इतनी सहज नहीं रही है जितनी सहज आज दिखाई देती है। हिंदी की यात्रा इतनी सहज नहीं रही, बहुत लंबी यात्रा करके हिंदी यहाँ तक पहुँची है जिस रूप में आज हम हिंदी को जानते और पहचानते हैं। आप सभी जानते हैं 700 और 800 शताब्दी की हिंदी कैसी थी, 1000वीं ईस्वी की हिंदी भाषा कैसी थी, प्रथम साहित्य कैसा लिखा गया और किस तरह से उसमें अमीर खुसरो से लेकर कबीर और बाद में तुलसी, सूर, बिहारी तमाम लोगों के साथ चलते हुए भाषा कभी सदुकड़ी कहलाई, कभी सुसंस्कृत परिनिष्ठित कलात्मक हिंदी या ब्रजी कहलाई। तो भाषा की यात्रा एक निरंतरता में चलती रही और इसके बाद हम फिर फोर्ट विलियम कॉलेज देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखते हैं और जिन्होंने जन भाषा में साहित्य लिखने की गुजारिश की थी। आप सब जानते हैं कि जन भाषा में साहित्य लिखने की गुजारिश आधुनिक काल में क्यों की गई। बहुत बड़ी जरूरत थी तत्कालीन राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की और जनता से भाषा को जोड़ने की। भाषा जब तक जनता से नहीं जुड़ेगी, भाषा में जन चेतना की प्रतिध्वनि भी संभव नहीं है। तो भाषा को जो जरूरत महसूस की गई आधुनिक काल के शुरुआती दौर में, उस जरूरत से लगभग हम एक लंबी यात्रा आज के 2026 में कर चुके हैं और अब फिर भाषा के सामने, साहित्य के सामने क्या नए सवाल खड़े हो रहे हैं, यह चिंता का विषय है। इस पर सोचने की जरूरत है।
4: देश भर के शैक्षणिक संस्थानों और सांस्कृतिक मंचों पर साक्षरता, पठन पाठन की संस्कृति और भाषा संवर्धन को लेकर संगोष्ठियां व विचार गोष्ठियां आयोजित की गईं। साहित्य अकादमी और दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में 9 सितंबर को 21वीं सदी में रचनात्मक लेखन के विविध आयाम विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया।
3: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर तन्वी त्यागी। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति पैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मेड़ा।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्यिकी, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे अतिथि। हमारे आज के अतिथि हैं जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। आपसे बातचीत कर रहे हैं काजल सूरी।
7: नमस्कार, मैं काजल सभी श्रोताओं का हमारे अतिथि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने चिकित्सा सेवा को केवल पेशा ही नहीं बल्कि मानवता की साधना बना दिया। अपने समर्पण, सादगी और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जी, जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में जाना माना नाम है। सर्जरी में हासिल की गई उपलब्धियों को देखते हुए उनका नाम लिम्का और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वहीं सामाजिक उपलब्धियों के लिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल चुका है। पद्मश्री से सम्मानित है। वर्ष 2005 में हड्डी का सबसे बड़ा ट्यूमर निकालने का विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हुआ। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की उत्तराखंड शाखा के वो संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं। आजकल एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब की पहचान केवल एक कुशल सर्जन के रूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील और विनम्र इंसान के रूप में भी है। आज हम उनसे उनकी शख्सियत, जीवन मूल्यों और प्रेरणादायक अनुभवों पर विशेष बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है।
8: नमस्कार।
7: डॉक्टर साहब, आपकी सादगी की चर्चा अक्सर होती है, आप अपने व्यक्तित्व को किस तरह से परिभाषित करेंगे? आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जिसे आप अपनी सफलता का आधार मानते हैं, क्या कहेंगे?
8: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया काजल जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और आपने जो सवाल किया वो इतना है, वो हमारे लिए नहीं, आपने कहा कि हमारी सफलता का, एक मंत्र दे रहा हूँ, वो हमारी सफलता का नहीं, वो आपकी सफलता का और जो लोग सुन रहे हैं वो सबकी सफलता का है।
7: बहुत शुक्रिया।
8: सबसे अच्छे सफलता के लिए आपका व्यवहार बहुत अच्छा।
7: क्या बात।
8: उसके बाद हम जिस काम में भी करें, जिस क्षेत्र में भी है, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए।
7: बिल्कुल।
8: और यदि आपके पास ज्ञान आ गया है तो व्यवहार के माध्यम से इसको आप अपना प्रयोग कीजिए, जिसको स्किल कहते हैं
7: जी।
8: तो हम सब लोगों को इन तीन चीजों को हमेशा रखना चाहिए, व्यवहार, ज्ञान एंड कौशल। उसको हम अंग्रेजी में कहें तो बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल।
7: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब। आप एक संवेदनशील इंसान तो हैं ही, इतनी खूबसूरत बात कही। और जितना मैंने आपके बारे में जाना है, तो मैंने ये भी अभी आपसे बातचीत हो रही थी कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ, जाने माने सर्जन होने के साथ साथ, आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए और हमारे श्रोताओं को जरूर आपसे कुछ सुनाइए।
8: देखिए, कविताओं का तो मुझे ऐसे है कि मुझे लिखने पढ़ने का शौक है, वो बचपन से रहा है। किताबें खरीदने का और किताबें पढ़ने का, मैं तो आपके माध्यम से सब लोगों से कहूंगा कि जो पुस्तकें हैं वो सबसे अच्छी दोस्त हैं। मैं लिखता भी रहता हूँ, मेरी एक पुस्तक आई है उपहार संदेश का, जिसको पहले ज्ञानपीठ ने छापा हुआ था, प्रकाशित किया था, अब वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। उसमें हमने कई कविताएं लिखी, और कविताएं किसी एक डॉक्टर के नाते नहीं लिखी है, एक समाज के व्यक्ति के नाते मैंने हर समस्या के लिए कहे या हर घटना के ऊपर कोई ना कोई कविता लिखी है। जो दर्शक या जो श्रोता कभी इसको पढ़ेंगे तो मैं ये बिल्कुल उनसे निश्चित तौर से कहता हूं कि उन कविताओं में कम से कम आपको एक कविता ऐसे लगेगी जैसे आपने खुद वो कविता अपने बारे में लिखी हो।
7: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही। और इसीलिए तो कहा जाता है कि आप एक बहुत ही संवेदनशील इंसान है। और डॉक्टर साहब, कविता तो मैं आपसे जरूर सुनेंगे हमारे श्रोता। तो एक सवाल मेरे जहन में आया, कहते हैं कि जो आपकी बॉन्डिंग है, आत्मीयता है जो मरीजों के साथ, वो आपकी पहचान है, तो इसके पीछे आपका जीवन दर्शन क्या है?
8: देखिए, मेरा मानना ये है कि हम लोग समाज की उत्पत्ति है।
7: बिल्कुल, बिल्कुल।
8: और हमें समाज को कुछ देना चाहिए, ये हमारा अब कर्तव्य भी नहीं रहना चाहिए। जो हमारी उम्र के हैं उनका कर्तव्य भी नहीं होना चाहिए, उनका दायित्व भी होना चाहिए। जैसे बहुत लोग हैं हमारी उम्र के लोग, अपने बच्चों को, नाती पोते पोतियों को तो आप पढ़ाते हो, उनके बारे में तो सोचते हो, कभी आप दूसरों के नाती पोतों के बारे में सोचिए। और हम लोगों को इतना ज्ञान है, यदि हम अपनों को दे सकते हैं तो वो ज्ञान आप दूसरों को दे दिए, और हो सकता है वही दूसरे आपके अपने बन जाएंगे ना।
7: क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि अपना अपनी चीजें बांटिए।
8: क्यों नहीं। और वैसे भी कहते हैं कोई भी चीज है ना, बांटने से दुगनी होती है।
7: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही थी कि एक सर्जन होने के साथ साथ एक संवेदनशील इंसान बने रहना, ये बैलेंस आप कैसे बनाए रखते हैं, क्योंकि लेखन के लिए संवेदनशीलता की जरूरत होती है।
8: आपको मैं दो चीजें कहूं कि संवेदनशीलता हर व्यवसाय में आनी चाहिए, हर प्रोफेशन में आनी चाहिए, लेकिन दो प्रोफेशन एक ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत ही जरूरी है, यदि इसको कहें तो बहुत। एक है शिक्षक का
5: जी,
8: और दूसरा है वो है चिकित्सक का
5: जी। कहते हैं ना कि ये जरूर सोचे कि हर आंख का आंसू हमारा है, इंसानियत के शहर की कोई सीमा नहीं होती, हर जख्म की पीड़ा हमारी है, तभी हम दूसरों के दर्द को
8: समझ सकते हैं
5: जी। बिल्कुल, तो यहाँ मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि अब कभी भी

0: हैं, लेखक भी हैं, तो एक कविता तो जरूर बनती है।
1: मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है सपने हमारे और आपके। ये हमारी कविता की एक पुस्तक है उपहार संदेश का, उसमें से एक कविता ली गई है। वही यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते।
0: वाह।
1: मैं कहता हूँ कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते।
0: क्या बात।
1: सपनों को देख

0: ए अधिकांशता। कवि कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वासुदेव कुटुंबकम।
1: वाह क्या बात,
0: जिसका मतलब है पूरी एक दुनिया परिवार। धन्यवाद,
1: बहुत खूबसूरत।
0: धन्यवाद। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन में? सपने ही तो आधार है हमारे आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य हमारा आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो, और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग।
1: बहुत खूबसूरत,
0: धन्यवाद।
1: बहुत खूब,
0: क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को समाने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके सपनों को समझने के लिए हमारी शुभकामनाएं।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो अभी जैसे आपने कहा कि सहयोग की, अभी आपने बात की थी, खूबसूरत कविता जो आपने हमें सुनाई, हमारे श्रोताओं ने सुनी, तो यहाँ मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि आप जब एक टीम को हेड करते हैं, जब आप टीम के साथ काम करते हैं, तो आपकी जो नेतृत्व शैली होती है वो कैसी रहती है?
0: मैं ये अपनी ही बात नहीं कहता हूँ, मैं बहुत, जैसा कि मैंने कहा, बहुत मंचों से, विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, किसी तरह के कार्यक्रम में जाता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को एक टीम की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, और यदि अकेले हो सकता तो उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि एक टीम के साथ होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं विनिंग, वर्किंग टुगेदर मींस विनिंग टुगेदर। मैं कई लोग जो सुन रहे हैं, और जो खास तौर से उन लोगों को जैसे लेते हैं या अपने सहयोगियों को रखते हैं, तो मैं उन सहयोगियों के लिए 5 चीजों को बताऊंगा। वो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी का सबसे भय कि उस जिस व्यक्ति को आप टीम में रख रहे हैं उसमें कॉम्पिटेंस होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: पहला उसका गुण है कॉम्पिटेंस होना
1: बिल्कुल।
0: चाहिए। दूसरा उसका गुण है कमिटमेंट होना चाहिए।
1: जी।
0: तीसरा उसका गुण जो है वो एक कर्टियस होना चाहिए।
1: जी।
0: और चौथा उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए,
1: बहुत जरूरी।
0: और 5वीं जो सबसे बड़ी चीज है उसमें कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें, 5 चीजें होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छी टीम को बना सकते हैं। हम लोग किसी के लिए प्रतियोगिता के माध्यम से काम ना करें। जब हम किसी टीम में होते हैं, किसी दफ्तर में होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो हम लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं, बल्कि हम लोगों को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करने चाहिए, कि जो आप में कमी है वो मैं पूरा करूंगा, जो मुझ में कमी है वो आपको पूरा करना चाहिए।
1: बहुत ही खूबसूरत। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब आपको इतना बड़ा सम्मान मिला पद्मश्री, तो उसके मिलने के बाद आपके भीतर क्या भावनात्मक परिवर्तन आया?
0: देखिए, मैं ये कहूँ कि बिल्कुल आया है। हमें जो कहने के जो प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गए हैं, पहले जैसे हम कहते तो उसको मानते नहीं थे, आज हम जो बातें, आज मैं आपके माध्यम से जो श्रोता सुन रहे होंगे, वो लोग भी, उनमें से मुझे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कुछ लोग हमारी कही हुई बातों को
1: मानते हैं।
0: तो जब किसी भी काम के लिए कहते हैं, कोई मार्क लग जाता है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है,
1: और जिम्मेदारियां और बढ़ जाती
0: है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
1: जी सर, डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके जीवन का कोई ऐसा क्षण जिसने आपको भीतर तक बदल दिया?
0: देखिए, सबसे ज्यादा तो जो मुझ में बदलाव आया है कि मैं डॉक्टर बनने के नाते कई तरह के लोग आते हैं, और मैंने एक ये भी कहा कि हर किसी में भी, मतलब हर व्यक्ति का विकास वातावरण से होता है, और मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। तो मैंने बहुत बदलाव आया, खासतौर से जैसे मरीज लोगों को देखते हैं। मैं एक सड़क सुरक्षा का या रोड सेफ्टी का मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, अभी हमने एक पुस्तक भी लिखी है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं
1: जी, आपने लिखी है?
0: मैंने लिखी है। आज मैं अपने उपराष्ट्रपति महोदय को भेंट करके भी आया हूँ
1: जी,
0: और वो सिर्फ इसीलिए लिखी है कि मैंने बहुत नजदीकी से इन लोगों की जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक इस तरह की इनकी परेशानियों को देखा है, तो उसी के लिए मैं कहता हूँ कि लोगों को सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करना चाहिए। बहुत ज्यादा वो नहीं है,

0: आपको यातायात के नियमों को सीखना चाहिए और मानना चाहिए, और सरकारों को यातायात के नियमों को सिखाना चाहिए और मनवाना चाहिए।
1: अंत में आप श्रोताओं के लिए अपने जीवन मूल्यों से जुड़ा कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सब लोगों से ये कहूंगा आपके माध्यम से कि देखिए, जो मैंने पहले बताया है, आप हर किसी में अपने व्यवहार में सुधार लाए।
1: बिल्कुल।
0: एक दूसरा में ये कि जब आप पढ़ लिख रहे हैं तो आप विद्यार्थियों से कहेंगे कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। जब आपको विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी जीवन वाले काम करिए, आप वो काम ना करिए जो ग्रस्त वाले लोग काम करते हैं। इस बात को बच्चों को जरूर ध्यान देना चाहिए।
1: सर, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और बहुत आपसे के साथ जो चर्चा रही बहुत ही सार्थक रही, लेकिन इतनी खूबसूरत कविता आपने हमको सुनाई, तो जी चाह रहा है कि हमारे श्रोताओं को हम एक आपकी एक कविता और सुनाए, तो आपसे गुजारिश की एक और कविता।
0: मैं जरूर सुनाऊंगा। देखिए, कविता का शीर्षक है मौन नहीं मुखर हो।
1: क्या बात।
0: कविता हमारी एक नई पुस्तक आने वाली, उसका एक हिस्सा है।
1: जी जी।
0: इसको ध्यान दीजिए, एक हमने समाज के एक वर्ग के लिए लिखा हुआ है कि कुछ लोग बड़ी बात को सुनते रहते हैं, हर बात को सुनते हैं। आपको हर बात को सुनने की जरूरत नहीं है। कहां आपको मुखर होने। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप सर से सबसे लड़िए झगड़िए, ऐसा भी नहीं, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज होती तो आप अपने मन की तो बात बताइए। खास तौर से जो आज समाज में दुर्घटनाएं घटनाएं हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। कविता का शीर्षक है मौन नहीं मुखर हो। मौन भी एक भाषा है। यह एक कविता का शीर्षक है। हाँ, मौन भी एक भाषा है, जो कभी भाव की स्वीकृत है तो कभी भाव की अस्वीकृत की स्थिति में हमेशा मौन नहीं बेबाक होना जरूरी है। ऐसे में ढुलमुल नहीं मुखर होना जरूरी है।
1: क्या बात, वाह,
0: धन्यवाद। मुखरता की जरूरत है। मुखरता संचार का माध्यम है, संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुखरता केवल ज्ञान ही नहीं, एक कौशल है जिसको सीखा सिखाया बेहतर बनाया जा सकता है।
1: वाह।
0: पर मुखरता है क्या? सम्मान के साथ प्रभावी ढंग से, बिना आक्रामक हुए, आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता से, स्पष्ट शब्दों में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना की क्षमता मुखरता की परिभाषा है।
1: वाह।
0: हाँ, मौन भी एक भाषा है, पर जीवन के द्वंद में यदि अन्याय या अमंगल की आशंका है तो ऐसे में मौन नहीं मुखरता की आवश्यकता है। इसलिए डर नहीं निडर हो, मौन नहीं मुखर हो।
1: वाह, बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब आपने। अपने अनुभवों और विचारों को आपने हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपने भी मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी सादगी, सेवा भाव और सकारात्मक दृष्टिकोण निश्चित ही हमारे श्रोताओं को प्रेरित करेंगे। आपने बिल्कुल ये सिद्ध कर दिया है कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि मानवता के प्रति समर्पण में होती है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हम आज के इस विशेष कार्यक्रम को, हमारे अतिथि को, यही विराम देते हैं।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि, और आइए अब सुनते हैं मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके अज तुहाडी सेवा विच हाजर हां मैं रविंदर कौर। अज दे प्रोग्राम विच तुसी सुनोगे वार्ता पंजाब दे दरिया। वार्ताकार होणगे डॉक्टर मनीषा बत्रा। इस तो अलावा एक आवाज लड़ी हेठ असी तुहानू सुनवावांगे अमरिंदर गिल दे गाए होए कुछ गीत। मनुखी समाज विच परिवार एक अहम इकाई है अते बजुर्ग इस इकाई दी जड़ ने। जिस तरह एक मजबूत जड़ तो बिना दरखत हरिया भरिया नहीं रह सकदा, उसे तरह बजुर्गां दे आशीर्वाद अते मार्गदर्शन तो बिना कोई भी परिवार जा समाज तरक्की नहीं कर सकदा। बजुर्ग साडे परिवार दी रौनक अते तजर्बियां दा खजाना हुंदे ने। बजुर्गां कोल जिंदगी दा ओ अनुभव हुंदा है जो किसे भी किताब जा स्कूल विच नहीं मिल सकदा। उन्हां ने जिंदगी दे कई उतार चढ़ाव देखे हुंदे ने। जदों भी असी

0: ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਭਰੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਗੋਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤਿਓ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ। ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ।
1: ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਗਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝੀਲ, ਨਦੀ, ਝਰਨਾ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਰਾਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵੰਤ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦੁਆਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਸਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਜਾਂ ਪੰਚਨਦ ਭਾਵ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਦਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਰਾਣੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਚਨਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੋ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੈਲਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ 3200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 6 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਨਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਰਾਕਸ਼ਸ ਸਥਲ ਝੀਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ मिलन तो पहला भारत विच हिमाचल प्रदेश अते पंजाब विचों लंघदा है। यह दरिया पंजाब खेतर दे भूगोलक धार्मिक अते सभ्याचार हर चीज विच महत्वपूर्ण भूमिका निभांदा आ रहा है। जेकर सतलुज दरिया दे इतिहासक अते भूगोलिक महत्वता नूं नेड़ियों पछाणदे होए ऋग्वेद विच इसका प्राचीन नाम शतुंद्री मिलता है बारे दस्या गया है। प्राचीन सभ्यता सतलुज दे इस खेतर दियां होर नदियां दे कंडियां ते वदी फली शुरू हुई है। शुरू तो ही खेतीबाड़ी व्यापार अते रोजाना जीवन इन्हां पानियां ते ही निर्भर रहा है। अपनी पूर्वली परंपरा नूं निभांदा आधुनिक समय विच भी सतलुज दरिया पंजाब खेतर नूं महत्वपूर्ण जल स्रोत प्रदान कर रहा है जो इस दे वधदे फुलदे खेतीबाड़ी खेतर दा समर्थन करता है। इस दे किनारियां दे उपजाऊ मैदान कणक चोल कपाह अते होर कई जरूरी फसलां दी काश्त नूं वधाउंदे हन जो स्थानक आर्थिकता लई महत्वपूर्ण हन। जेकर सिंचाई दे पक्ष तों देखिए तां इस दरिया दी भूमिका लखां लोकां दी रोजी रोटी लई भी महत्वपूर्ण रही है। सब तो महत्वपूर्ण बुनियादी प्रोजेक्टा विचों भाखड़ा नंगल डैम जिसका निर्माण 1960 दे दहाकियां विच कीता गया सी सतलुज नदी ते ही बनिया होया है। यह भारत दे सब तो वड्डे डैमां विचों एक है जो अपने आले दुआले दे खेतरां नूं बिजली अते सिंचाई प्रदान करता है। इस डैम ते गोविंद सागर जल भंडार भी है जो खेतीबाड़ी अते पीण वाले दोवां उद्देशां लई पाणी दे इक मुख स्रोत वजों काम करता है। ए दरिया ऊर्जा अते जल स्रोतां दी वरतों नूं यकीनी बनाउंदा महत्वपूर्ण भूमिका निभांदा आ रहा है। इस तों अलावा सतलुज दरिया साडे विश्वासां ते धार्मिक महत्ता दा भी प्रमुख केंद्र रहा है। मान्यता अनुसार सिख पंथ दे पहले संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने अपनियां अध्यात्मक यात्रावां दौरान सतलुज कंडे ते ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे शुरुआती शब्द जपजी साहिब दी सिरजना कीती। इस तों अलावा इस दरिया दा संबंध 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी नाल भी जुड़िया होया है। मानता अनुसार गुरु साहिबान लंबे समय तक सतलुज दे कंडियां ते ध्यान दी अवस्था विच रहे। गुरुआं दे पावन चरणा दी छो कारण इह स्थान अध्यात्मक दृष्टि तों भी सत्कारयोग स्थान बन गया। असल विच सतलुज दरिया इक भूगोलिक विशेषता तों वध जीवन खुशहाली अते अध्यात्मिकता दा प्रतीक है। इस दरिया ने अतीत नूं इक अजिहा आकार प्रदान कीता जो इस दे वर्तमान नूं पोषण दिंदा होया भारत देश खास करके पंजाब दे लोकां दे जीवन विच इक जरूरी भूमिका निभाउंदा रहा है। ब्यास दरिया जिसनूं उत्तर दा पवित्र जल मार्ग भी आख्या जांदा है पंजाब दा इक होर महत्वपूर्ण दरिया है जो हिमालिया दे हिमाचल प्रदेश विच रोहतांग दर्रे दे नेड़े ब्यास कुंड तों शुरू हुंदा है। इसका प्राचीन नाम विपाशा है। यह इको एक अजिहा दरिया है जो पूरी तरह भारत दे अंदर ही वगदा है अते हरिके पतन तरन तारन विखे सतलुज दरिया विच मिल जांदा है। सतलुज दरिया दी तरह ही ब्यास दरिया दी भी अपनी इतिहासक समाजक सभ्याचारक अते धार्मिक पछाण है। पुरातन भारतीय इतिहास विच ब्यास नदी दा अध्यात्मक पक्षों खास स्थान होण करके पुराणिक कथावां अनुसार इस दरिया दा नां ऋषि वेद व्यास दे नां ते रख्या गया जिन्हां ने महान भारतीय महाकाव्य महाभारत दी रचना कीती। नतीजे वजों ब्यास दे पाणियां नूं धार्मिक अते अध्यात्मक दृष्टि तों सत्कारयोग अते पवित्र स्थान प्राप्त होया। प्राप्त इतिहासक वेरव्या अनुसार 326 ईस्वी पूर्व जदों सिकंदर महान ने भारत ते हमला कीता तां उसदी फौज ने ब्यास दरिया नूं पार करन तों मना कर दिता जिस कारण सिकंदर नूं इत्थों ही वापस मुड़ना पिया। अपनी इतिहासक महत्ता तों परे ब्यास दरिया ने पंजाब दियां सभ्याचारक परंपरावां विच अणगिनत लोक गीतां कवितावां अते कहानियां नूं भी प्रेरित कीता है। अजोके समय भी ब्यास दे पाणियां ने स्थानक धार्मिक रीति रिवाजां अते त्योहारां दी दृष्टि तों पंजाब दे लोकां नूं उहनां दीआं अध्यात्मक ते सभ्याचारक जड़ां नाल जोड़िया होया है। ब्यास दरिया सतलुज दरिया विच मिलन तों पहलां पंजाब विचों लगभग 470 किलोमीटर तक वगदा है जिस कारण इस दरिया दा उत्थों दी खेतीबाड़ी ते महत्वपूर्ण प्रभाव पिया है। इस तों अलावा यह दरिया जल विज्ञान दे खेतर विच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा आ रहा है। दरिया ते सब तो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे विचों पोंग डैम दा खास विवरण मिलता है जिसनों ब्यास डैम भी कहा जाता है जो कि 1970 दे दहाकियां विच बनाया गया सी। महाराणा प्रताप सागर दे नां तों बनिया यह जल भंडार बहु उद्देशां जिन्हां विचों सिंचाई पण बिजली अते हड़ नियंत्रण विच विशेष भूमिका निभाउंदे हन दी पूर्ति करदा है। इस तो अलावा ए जल भंडार जंगली जीवां खास करके प्रवासी पंछियां लई एक प्रमुख स्थान बन चुकिया है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते रामसर वेटलैंड वजो ब्यास दरिया दी ए वातावरणक महत्ता इस दे महत नू होर भी उजागर करती है। उपरोक्त अंकित दोहां दरियावां तो बाद जिस दरिया ने पंजाब दे इतिहास विच अपनी एक विशेष भूमिका निभाई है और रावी दरिया है। इसका प्राचीन नाम परुषनी जा संस्कृत विच इरावती है। रावी जो कि भारत दे हिमालयां चो निकलदा सरहद पार पाकिस्तान दे सरहदी खेतरां विचों होके लंघदा है। लाहौर शहर इसे दरिया दे कंडे वसिया होया है। इतिहासिक दृष्टि तो भारतीय सभ्यता विच रावी दरिया दा काफी महत्व है क्योंकि इस दरिया दा जिक्र वेदा उपनिषदा समेत कई प्राचीन ग्रंथां विच मिलदा है। हर ग्रंथ विच इस नू जीवन दे प्रवाह अते समय दे बीतन दे प्रतीक वजो दर्शाया गया है। इस दे पानियां नू शुद्ध जल वजो मनिया जांदा रहा है जिस करके बहुत सारे धार्मिक अते पवित्र स्थान इस दे कंडियां ते स्थित हन, खास करके पाकिस्तान विच। ए दरिया एक महत्वपूर्ण सभ्याचारक प्रतीक वजो अपनी वखरी पछाण रखदा है। अक्सर गीता कवितावां अते भारतीय साहित विच इस दी महत्ता नू दर्शाया गया है। पंजाबी साहित विच शुमार किस्सियां विचों मिर्जा ते साहिबा दा प्रसंग भी रावी दरिया दे इलाकियां अते सियालां दी धरती नाल जुड़िया होया है। इस तरह जिथे एक पासे रावी दरिया पंजाब दे लोकां दी भूगोलिक पछाण ते अध्यात्मिक संबंधां नू दर्शाउंदा है, उथे बहु धार्मिक प्रतांत अंतर्गत सिख इतिहास समाजिक गतिविधियां अते विरासत दे संदर्भ विच भी प्रदर्शित हुंदा है। जेकर आर्थिक उन्नति दे पक्खों विचारिया जावे तां पंजाब दे होरना दरियावां वांग रावी दरिया लंबे समय तो सिंचाई लई पानी दा एक जरूरी स्रोत बन खेतीबाड़ी अते आर्थिकता नू समर्थन दिंदा रहा है। इसका पानी कणक चोल अते कपाह वर्गियां फसलां नू पोषण दिंदा है जो इसके कंडियां ते रहण वाले लोगों की रोजी रोटी का आधार हन। हालांकि 1947 विच वंड तो बाद रावी दरिया दे वहा दा एक वड्डा हिस्सा पाकिस्तान विच मुड़ गया। भारत विच इस दा वहा घट होण दे बावजूद भी रावी दरिया वातावरणक प्रणाली दा अनिखड़वा अंग बनिया होया है ते निरंतर रूप विच जमीन दे नाल नाल साडे समाज ते सभ्याचार नू पोषण दिंदा है। विभिन्न चुनौतियां दे बावजूद रावी पंजाब खेतर दे लोकां लई डूंघा महत्व रखदा है। चना जां चनाब दरिया भारत दे हिमालया पर्वत तो निकलदा होया पाकिस्तान विच दाखिल होण तो पहला जम्मू ते कश्मीर विचों वगदा है। पानी दी मात्रा दे हिसाब नाल ए पंजां विचों सब तो वड्डा दरिया है। इसका प्राचीन नाम असिकनी जां चंद्रभाग है। इस नू प्रीत दा दरिया चनाब भी कहा जांदा है। शुरू तो ही चनाब दरिया पंजाब दी उपजाऊ जमीन नू कायम रखण विच अपनी विशेष भूमिका निभाउंदा रहा है। इस दरिया दे पानियां ने लंबे समय तो चौल कपाह कणक वर्गियां मुख फसलां दी काश्त नू जन साधारण लई सुविधाजनक बनाया है। खेतीबाड़ी विच इस दरिया दी भूमिका लखां लोकां दी रोजी रोटी नू समर्थन देण लई विशेष तौर ते महत्वपूर्ण रही है। इस दे पानियां ने नहरां दे निर्माण दे नाल नाल आले दुआले दीआं जमीनां नू बहुत ज्यादा उत्पादक अते पंजाब नू खेतीबाड़ी विरासत दा केंद्र बनाया है। इस दरिया दे किनारियां ते सिंचाई चैनलां दे विशाल नैटवर्क द्वारा खेती विच दरिया दे योगदान नू होर भी वधाया गया है। नतीजे वजो अज भी चनाब दरिया किसानां लई एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बनिया होया है। खेतीबाड़ी दे महत्व तो अलावा भारती पंजाबी सभ्याचार अंतर्गत चनाब दरिया दा डूंघा समाजक ते धार्मिक महत्व है। मिथिहासक तथा अनुसार गुरु नानक देव जी ने अपनिया यात्रावां दौरान चनाब दरिया पार किया सी जिस कारण लोकां विच इस दरिया दी पवित्र स्थिति होर भी मजबूत हो गई। इस तथ दे सम्मान वजो गुरु नानक देव जी दीआं यात्रावां अते सिख्यावां दे प्रचार ते प्रसार लई इस नदी दे कंडियां ते कई गुरुद्वारे स्थापित कीते गए हन। सिख पंथ नाल जुड़े होण तो इलावा चनाब दरिया दा सभ्याचारक महत्व भी इस दी गहराई वांग ही बहुत विशाल है जो धरती दे लोकां विचकार अध्यात्मक अते कुदरती संबंध नू दर्शाउंदा है। इस दे पानियां दा पासार जीवन अते जीवन खेतर दीआं अमीर सभ्याचारक परंपरावां दी निरंतरता दा प्रतीक है। विश्व प्रसिद्ध पंजाबी किस्सा साहित दे महान किस्सियां विच्चों जिते हीर ते रांझे दा प्यार तख्त हजारा अते झंग दे इलाके विच चनाब दरिया दे वेड़े विच प्रफुल्लित होया, उत्थे नाल ही सोहनी महिवाल की प्रेम कहानी चनाब दरिया के पानिया।

0: जुड़ी हुई है, जिथे सोनी रोज कच्चे घड़े ते तर के महिवाल नूं मिलन जांदी सी। भारतीय इतिहास विच अपना विशेष स्थान रखण वाला यह दरिया हुण पूरी तरह पाकिस्तान वाले पंजाब विच वगदा है। झेलम दरिया पंजाब दे पंज दरियावां विचों उत्तरी भारत प्रशासित जम्मू अते कश्मीर दे वैरी नाग चश्मे तो निकलदा अते पाकिस्तान विच वगदा है। इसका वैदिक नाम वित्सता है। यह दरिया चनाब दरिया की तरह ही हुण पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा है। यह एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है जो लखां लोकां दी खेतीबाड़ी पण बिजली अध्यात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। भारतीय सभ्यता विच इस नूं एक पवित्र नदी वजो सत्कारिया जाता है, जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथां विच अक्सर किया गया है। इस दे कंढिया ते बहुत सारे इतिहासक अते अध्यात्मिक स्थान स्थित हैं जो इस नूं श्रद्धा अते तीरथ का स्थान बनाते हैं। इसका शांत वगदा पानी पवित्रता का प्रतीक है जो लोगों लई शांति भावना पैदा करता है। खेतीबाड़ी ऊर्जा अते अध्यात्मिकता विच अपने विभिन्न योगदानों के नाल ही यह दरिया पंजाब खेतर विच कुदरत अते मनुखता विचकार स्थाई संबंध का प्रमाण भी दिंदा है। झेलम दरिया कश्मीर अते पंजाब दे जिन्ना खेतरां विचों लंघदा है उत्थे खेतीबाड़ी ते सिंचाई लई इस दे पानी की वरतों की जाती है, जिस नाल कणक चौल अते फलां वर्गियां मुख फसलां की काश्त कारण भारत अते पाकिस्तान दोवां देशां दी अर्थव्यवस्था विच कई सकारात्मक बदलाव वापरे हन। पण बिजली दे मुख स्रोत वजों भी झेलम दरिया दा आपणा ही महत्व है। नदी दी पण बिजली समर्था दोवां देशां विच नव्याउन योग ऊर्जा बारे शुरू कीतियां पहलकदमियां दा एक आधार है। पंजाब दे पंज दरियावां बारे जिक्र करन तों बाद सिंध दरिया बारे गल करना बहुत ही लाजमी है। पंजाब की भूगोलिक स्थिति विच जिथे इन्हां पंज दरियावां दी अपनी खास विशेषता है, उत्थे मैदानी इलाके विच सैकड़े मील पार करके उत्तर वल नूं आंदे दरिया अखीर दक्षण वल जाउंदे इस वड्डे दरिया विच समा जाउंदे हन, जिन्हों सिंध दरिया कहा जाता है। सिंध दरिया नूं हिंदुस्तान दा नील दरिया भी कहा जाता है, जो कैलाश पर्वत विचों निकलदा लेह लद्दाख विच दाखिल हुंदा होया दरबंद तो पंजाब विच दाखिल हो जाता है। प्राचीन काल विच इस नूं हाइडपस कहा जाता सी। पुरातन तत्था अनुसार पालिनी इस नूं इंडस कहिंदा है। संस्कृत भाषा विच इस दा नाम विदास्ता है, जो स्थानक बोली विच इस नूं बायात ते बैबूत आखदे हन। सिंध दरिया नूं भी पंजाब दा एक प्रमुख दरिया मन्या जांदा है, क्योंकि इह भी दूजे पंज दरियावां वांग हिमालिया तिब्बत ते मानसरोवर दीआं चोटियां विचों निकलदा होया पाकिस्तान विचों लंघदा कराची दे दक्खण विच अरब सागर तक जांदा है। इह पंजे दरियावां दक्खण पछम दिशा वल लगभग 45 मील वहिंदे होए मिठन कोट लागे अखीर जिस स्थान ते सिंध दरिया विच जा डिगदे हन उस नूं पंजनद कहा जांदा है। पंजनद दे संगम तो बाद सिंध दरिया नूं सतनद वजो जाणिया जांदा है, भाव इस विच सिंध दे नाल नाल घग्गर हकरा ते सरस्वती नदी भी रल जांदे हन। इस प्रकार सिंध दरिया अगे अरब सागर विच विलीन हो जांदा है ते भारतीय इतिहास विश्व इतिहास दा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने पड़ता है। समुचे रूप विच पंजाब दे दरिया सतलुज ब्यास रावी चनाब अते झेलम सिर्फ जलमार्ग ही नहीं बल्कि ए जीवन विश्वास अते इतिहास दे प्रतीक हन। इन्हां दरियावां ने सदियां तो पंजाब दे लोकां दे सभ्याचारक आर्थिक ते अध्यात्मक अभ्यासां नूं आकार दिता है। ये खेतीबाड़ी धार्मिक रस्मां रिवाजां अते समुची भलाई लई महत्वपूर्ण हन। इन्हां दरियावां दी स्थाई विरासत आउण वालियां पीढ़ियां लई पंजाब दी पछाण दा एक मुख तत् बणियां रहणगियां।
1: हुणे असीं वार्ता सुन रहे सी पंजाब दे दरिया। वार्ताकार सन डॉक्टर मनीषा बत्रा। एक आवाज लड़ी हेठ अज असीं तुहानूं सुनवा रहे हां अमरिंदर गिल दे गाए हुए कुछ गीत। सब तो पहला पेश है एक गीत, गल तेरी सोनिए गल मेरी सोनिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने

0: और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। यह उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। ईरान और ओमान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। योजना के अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जलसीमा के भीतर होगा। इसके निकास मार्ग का हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा रहा है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलिना रायबाकीना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रायबाकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्पुस्की ने जर्मनी के केविन क्रार्वेटेस और टिम पुइट्स को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pahalgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. The declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed and many more injured. The joint declaration also expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. Today is the second and final day of the BRICS summit. Our correspondent has filed this report.
3: Today, BRICS member and partner countries will participate in the session based on resilience, innovation, cooperation and sustainability, shaping the future for inclusive global growth. The 10 partner countries are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi. He will also hold meetings with Vice President

आपका अपना आता है तो उसे किस तरह से, किस गर्मजोशी से आप उसका स्वागत करते हैं। और आपके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास फिलहाल स्लैश हो रहे हैं, यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो पहला संदेश हम ले रहे हैं, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना भाटिया लिखते हैं कि आदरणीय आर्य सिद्धार्थ, बहुत बहुत नमस्कार, आपकी कुशलता के साथ धन्यवाद करते हैं, और विषय बहुत अच्छा है, अपनी पसंद का कोई गीत सुनवा दें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हमें किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी ने भी लिखा है कि आप हमें हमारी पसंद का गीत सुनवाएं। बिल्कुल हम सुनवाएंगे। और जी हमारे अगले श्रोता लिखते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव शर्मा, साइना और निवान, ये पूरा परिवार हमारा इस कार्यक्रम को सुन रहा है और ये कह रहे हैं कि हमारा देश मेहमान नवाजी में इसका कोई जवाब नहीं है हमारे देश में, जब कोई, क्योंकि हमारा देश अतिथि देवो भव के ऊपर चलता है, क्योंकि यहाँ पर भारत की संस्कृति में अतिथि केवल मेहमान नहीं होता बल्कि उसे सम्मान और आदर के साथ ईश्वर का रूप माना जाता है। तो सच बात है, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो तो कुछ ऐसा ही है।

जी हाँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। क्योंकि मेहमान जो आए घर में खुशियों के फूल खिलते हैं, अपनापन जब मिलता है रिश्तों के दीप जलते हैं। भारत की धरती की यही तो पहचान रही है, अतिथि में भी ईश्वर की छवि दिखाई देती रही है। जी हाँ, हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे जो आतिथ्य है, जो सत्कार है, वो बहुत होता है। और इसीलिए शायद एक परंपरा और एक जो परिवार होता है, पूरा देश एक परिवार की तरह रहता है। और हमारा अगला संदेश आया है, लिखते हैं कि आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता सिद्धार्थ भाई को सप्रेम नमस्कार। हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, हमें किसी गीत में शामिल करें। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से इन्होंने हमें लिखा है, और बिल्कुल हम आपकी पसंद का गीत अवश्य आपको सुनाएंगे।

कश्मीर जिसे हम भारत का दिल कहते हैं और कश्मीर की वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि जब हम कभी जाते हैं वहाँ पर तो बहुत सारे वहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो भी बहुत काबिले तारीफ है, हमारे जहन में रहती है। और इसी तरह का कुछ मैसेज हमें दे रहे हैं, लिखते हैं, नमस्कार जी, विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, किवली गांव पुणे से ये मैसेज हमारे पास आया है। इसके अलावा हमारे पास जो अगला ईमेल है वो लिखते हैं आदरणीय प्रसारक जी, बलवीर गीता दत्त के, ये लिखते हैं कि बुलडाणा महाराष्ट्र से, कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। जी बिल्कुल, आपके पसंद का गीत हम ज़रूर सुनवाएंगे। इसके अलावा हमारे जो अगले सिद्धार्थ कोंडाने, जी हाँ, हमारी ही नाम राशि है, ये हमें लिखते हैं राहुल नगर अमरावती से, अर्चना प्रणय हिरामर शेंडी और प्रतिभा कोंडाने के साथ इन्होंने कहा है कि जो मेहमान होता है वो तो बड़ा ख़ास होता है। जी हाँ बिल्कुल, मेहमान बहुत ही ख़ास होता है और शायद हमारी जो मेहमान नवाजी है उसका भी जिक्र भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है। इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है मुल्लापुर दाखा से, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, ये लिखते हैं कि ओके, यहाँ पे लिखा है कि हम प्रोग्राम फरमाइशी है और आपका संदेश हमें बहुत अच्छा लग रहा है।

हम सबके नाम आप ज़रूर पढ़ें, तो राजेश, बिट्टू और संजीव जी, हमने आपके नाम को पढ़ दिया है। बिल्कुल, हमारे पास एक प्यारा सा मैसेज आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, ये लिखते हैं कि अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जहां उनका स्वागत पूरी गर्मजोश

0: जी हाँ, कहते हैं मेरे देश में पवन चले पुरवाई, तो पुरवाई तो चल ही रही है, क्योंकि अगर हम पूरे देश के मौसम को देखें तो कहीं कहीं बारिश का भी मौसम बन रहा है। और लिखते हैं कि मेरे देश को देखने सारी दुनिया ही, तो बिल्कुल दिल्ली में समय पूरी दुनिया है, वहाँ के दिग्गज नेता हैं हमारे देश में, वो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, मेज़बान है भारत इस समय ब्रिक्स जो समिट हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है। और हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि बिहारी कॉलोनी शादा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना डब्बू चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना केशु, ये कहते हैं कि भाई हमारा तो जो मेहमानों के स्वागत करने का तरीका है वो तो बहुत ही खास रहता है, और ख़ास तौर से जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो मेहमान नवाजी का जो करने का जो तरीका होता है वह और ज्यादा बढ़ जाता है, मेहमान तब बहुत अच्छे लगते हैं।
1: चम चम पायल बाजे रा...

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: जी हाँ श्रोताओं, आपके लगातार संदेश हमारे पास आ रहे हैं और हमारे अगले श्रोता हमें लिखते हैं कि अतिथि देवो भव सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही भारतीय संस्कृति की पहचान है। आपने एकदम सही बात आपने कही है और क्यों ना हो, क्योंकि हमारा देश अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। और हमारे अगले रोहिणी दिल्ली से सतप्रकाश सनोठिया हमें लिख रहे हैं कि चेहरे पर मुस्कान और दिल में आदर सज जाता है, चेहरे पर मुस्कान और दिल में आदर सज जाता है। जब कोई प्यारा मेहमान हमारे घर आता है, उनके कदमों की आहट से घर रौनक हो उठता है, हर एक कोना खुशियों के गीतों से गुनगुनाता है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर संदेश आपने हमें भेजा है। इसके अलावा लिखते हैं कि हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि सिद्धार्थ जी, लगता है आज आप नाराज हैं, हमने कई मैसेज किया आपने शामिल नहीं किया। तो बिल्कुल नाराजगी हो गई आपकी दूर। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला, गीतिका, भानु जी हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इन्हें आज की जो थीम है वो बहुत पसंद आ रही है। इसके अलावा हमारे साथ धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार जुड़ चुके हैं। लिखते हैं कि सिद्धार्थ जी, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं और बेहतरीन नकमे आप सुनवा रहे हैं। मेहमान नवाजी तो भारत देश में सदियों से रही है। मेहमान भगवान का रूप होते हैं, जाने कब भगवान मेहमान के रूप में आ जाएं, मेहमान का आदर करना चाहिए। तो बिल्कुल, आज भी छुट्टी का दिन है तो आज जो भी आपके पास आता है आप उससे बहुत अच्छे से मिलिए, मुस्कुरा कर मिलिए, उसका आदर सत्कार करिए, क्योंकि मेहमान अतिथि देवो भव होता है।

और दोस्तों लगातार आपके संदेश हमारे पास आ रहे हैं। और इस बीच गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से हमारे पास संदेश आया है दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। कहते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और जो थीम है वो भी आपको पसंद आ रही है, और कहते हैं कि हम अपने मेहमानों का बहुत ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि मेरे देश की धरती पर हर अतिथि का दिल से स्वागत हो, दूर दूर से लोग आएं, प्रेम और भाईचारे का संदेश लाएं, हमारी संस्कृति की यही पहचान रहे, अतिथि देवो भव, और हर आने वाला अपने मन की मिठास लेकर लौटे। बिल्कुल सही बात है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, ये आपका संदेश है। और लिखते हैं कि आपका हर पल खुशियों से भरा हो। बिल्कुल, हम सब की भी यही दुआ है कि आप इसी तरह से अच्छे से अपने मेहमानों का स्वागत करते रहिए, लोगों से मुस्कुरा कर मिलिए, अपने दिन को खास बनाइए। और हमारे आज जो अगले जिनका ईमेल हमें मिला है, हमारे श्रोता हैं लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी, ये रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं और इनको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। इसके अलावा हमें मैसेज कर रहे हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी कल्पित, बेबी करवित और हिमाक्ष, ये भी हमें लिखते हैं कार्यक्रम पसंद आ रहा है, थीम अच्छी है। इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से हमें ये लिखते हैं, आदरणीय सिद्धार्थ जी सादर प्रणाम, मेहमान आए भगवान आया। बिल्कुल सही बात है, आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। कोटि कोटि धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी दिन शुभ हो, हमारी भी यही कामना है। इसके अलावा लिखते हैं अगला संदेश अभय खीड़ा महाराष्ट्र से, प्रसारक महोदय किसी भी गीत में शामिल करें हिरामन, सारिका, सोनाली, आदर्श और पूरा खिलाड़ी परिवार। तो पूरा परिवार आपका हमारा कार्यक्रम सुन रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हमारे पास कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, इनका संदेश आया है। बिल्कुल, आपका संदेश हम शामिल कर चुके हैं। और इसके अलावा नबी हसन अब्बासी, शाहनाज, नवीद, सुहेल, अनम, रसीद, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर सबीहा का हमारा लिख रहे हैं कि मेहमान नवाजी में हमारा कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमें लगता है कि आपके संदेश से हमें ही नहीं पूरी और बाकी सबको भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो हम बात करते हैं जिस भारत की, वो भारत कुछ खास है।

जी हाँ, लव माई इंडिया, जहाँ पर मेहमान नवाजी अतिथि देवो भव होता है, देव के समान होता है। हमारे अगले जो लिस्टर हैं वह हमें लिखते हैं कि आरजे सिद्धार्थ, हमारा मेल शामिल नहीं होगा क्या? बिल्कुल, आपका मेल शामिल हो गया है। हमें लिखते हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानू और एलिजा नायाब और लड्डू। लिखते हैं कि आपका आना हमारे लिए खुशियों की सौगात है, आपके कदमों से हमारे घर की रौनक और भी खास है। बिल्कुल, तो ये आपके आप मेहमानों का स्वागत अगर कुछ इस तरीके से कहते हैं, ये करते हैं, तो ये तो बहुत ही खास बात है। और इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है मलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम, मुस्कान, मास्टर जीवीएम जैन का। और हमारे पास लगातार आपके संदेश आ रहे हैं। इसके अलावा गांव नधाना पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, सीता और गीता का संदेश हमें मिला है। हमें संदेश मिला है नीतू मल्होत्रा का, और ये लिखते हैं कि मेहमान आने से घर की रौनक बढ़ती है। सर, अपना तो यही मानना है। जी बिल्कुल सही मानना है आपका नीतू जी, और आपके साथ नरेश, लक्ष्य, लाडू, नानकचंद और शिवाजी कॉलोनी से पीयूष, कोयल और डुक्कू भी हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति का संदेश हमें मिला है। आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। इसके अलावा काली जाफराबाद से हमारे पास संदेश आया है सुधाकर, राजीव जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत, जगुताई कुमार, संचित देशमुख का। आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है जी, ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा हमारा अगला संदेश लिखते हैं सिद्धार्थ भाई, अतिथि सत्कार करना भी रब की इबादत करना ही होता है। बिल्कुल, अतिथि का सत्कार करना रब की इबादत करना होता है। बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि अतिथि जो है वो आपने लिखा है कि देव भव तो है ही है, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है, जो आने वालों को इतना सम्मान दिया जाता है, सजदा करते हैं हमारी संस्कृति को, करना भी चाहिए। सतीश जी, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने लिखा है। और इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है, लिखते हैं सिद्धार्थ भाई जी नमस्कार, भारतीय संस्कृति में बिल्कुल अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। हमारे घर कोई मेहमान आए तो उसका स्वागत केवल शब्दों से नहीं बल्कि सम्मान, प्रेम और आत्मीयता से करना चाहिए। मेहमान के आते ही मुस्कुराकर नमस्कार या अभिवादन करें, उन्हें सम्मान पूर्वक बैठने के लिए कहें, उनकी आत्मा और कुशलता कुशल क्षेम पहुंचे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत करें, बातचीत करें उनसे और ऐसा महसूस कराएं कि वो किसी पराए घर में नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए ही आए हैं। तो बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है हमारे सुनने वालों को, इसीलिए यही हमारे भारत की पहचान है। और इसके अलावा हमारे पास संदेश मधु किरण जी का आया है, और मधु किरण के साथ ही हमारे पास अगला संदेश, सिद्धार्थ जी नमस्कार, ये लिखते हैं भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल, ये लिखते हैं। बिल्कुल, आपका संदेश हम शामिल कर चुके हैं, और कई बार आप दोबारा संदेश भेजते हैं तो रिपीट हो जाता है, हमें पता नहीं लगता कि आपका संदेश हमने शामिल किया या नहीं। इसके अलावा मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा भी कार्यक्रम सुन रहे हैं।

जी हाँ श्रोताओं, बात हो रही है अतिथि देवो भवः की और हमारे पास लगातार संदेश आपके आ रहे हैं। हमारे अगले लिस्टनर लिखते हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल उषा टिल्लू और साथ में जुड़े हुए हैं कैथल हरियाणा से मधु नायक। आप लिखते हैं हमारा देश भारत की अतिथि देवो भवः मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। हाल ही में इस तरह का सफल आयोजन हमारे देश में ब्रिक्स समिट की बात करी है इन्होंने, बिल्कुल। और जिस तरह से पूरी दुनिया के लोग आए यहाँ पर, वो हमारे देश की परंपराओं से, हमारी संस्कृति से, हमारे देश की जो हेरिटेज है, सभी से बहुत ही इंस्पायर हुए और उन्होंने दिल खोल कर भारत की तारीफ की है। और इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है

दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का। जी हाँ। और इसके अलावा संदेश आया है, लिखते हैं प्रसारक महोदय जी, आपको दिल से आदाब, आपको भी आदाब। आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार सुरीला गीत सुनवा दे। फरमाइश करते हैं पाकीज़ा रोड श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा, मोहम्मद अल्तमश, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री जी। आपका संदेश हमने शामिल कर लिया। इसके अलावा सिद्धार्थ जी, हमारा संदेश शामिल हुआ, क्या हम सुन नहीं पाए? ओके, आपकी नेट प्रॉब्लम थी लेकिन अब आप सुन रहे हैं। हमें पता था आपका नेट नहीं चल रहा है, इसलिए हमने आपका संदेश, ये दिल से दिल का कनेक्शन है तो पता लग गया था, अब आपका नाम पढ़ दिया। आपने उम्मीद है कि सुन लिया होगा। ये हमें लिखने वाले हैं छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी जी, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। इसके अलावा हमें लिखते हैं, नमस्कार जी, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। कलानौर से नरेन शर्मा, किरण शर्मा, नैतिक और मयंक शर्मा। इसके अलावा जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकिस्टो, रोजी डिकिस्टो, पर डिकिस्टो, विलिस डिकिस्टो लिखा है कि अपनी पसंद का कोई भी प्यारा सा गीत सुनवा दीजिए। तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी ही पसंद का ये प्यारा सा गीत।

लगातार आपके ढेर सारे संदेश हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे अगले लिसनर लिखते हैं कि हमारे यहाँ आइए तो आपको पता चलेगा कि मेहमान नवाजी कैसी होती है। पूरा दस्तरखान सजा देते हैं यहाँ की मेहमान नवाजी, पूरे भारत में मशहूर है। क्या बात है, लगता है आपके पास आना ही पड़ेगा। मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अमान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, बिल्कुल आपकी मेहमान नवाजी ऐसे कैसे हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि आप किस तरह से अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, हमारे पुराने श्रोता हैं आप। और हमारे अगले श्रोता लिखते हैं सिद्धार्थ भाईचान, आदाब, आपको भी बहुत बहुत आदाब। मेहमान के आते ही प्रेम से अभिवादन किया जाता है, उन्हें सम्मान पूर्वक घर के अंदर बुलाया जाता है, बैठने के लिए आसन देना, आराम से बैठने के लिए कुर्सी या जगह दी जाती है, पानी और शरबत से सत्कार, चाय नाश्ते की खास व्यवस्था। क्या बात है, लिखते हैं कि बिहार में मेहमान आए और चाय नाश्ता ना हो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बिल्कुल वलीउल्लाह अंसारी और खादिजा बेगम हमें ये संदेश देते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। इसीलिए हमने गाना चलाया था कि आइए आपका इंतज़ार है। और इसके अलावा हमारे पास संदीप मक्कड़ जी का है और ज्योति मक्कड़ मन्नत आपके साथ ये सारे प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सभी श्रोता मिलकर। अभी हमारे पास जो अगला संदेश आया है मधु किरण जी का संदेश है। नमस्कार जी, अतिथि के आने पर सबसे ज़्यादा काम हम गृहिणियों को करना पड़ता है। हम हैं आकाशवाणी की पुरानी श्रोता बहने। बिल्कुल मधु जी, आपने मधु किरण बहुत अच्छी बात लिखी आपने, और सही बात है कि आप लोगों को काम ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। क्योंकि आप ना हो तो फिर कैसे मज़ा आएगा, कैसे आनंद उठाएंगे हम अच्छे अच्छे पकवानों का। इसके अलावा हमारे पास जो संदेश आया है वो लिखते हैं जी भागवत वर्मा, शांति, लीलावती, विनीता, रुद वर्मा, ये हमें दतरेंगी से लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो संदेश आया है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बिरडी से जी तामसे तेजस, जय और लामसे ने हमें संदेश भेजा है। इसके अलावा हमारे साथ पीटीआई से अनिल मोहन जी जुड़ गए हैं। ओके, पहाड़गंज सुरारी डांडा से आपके साथ उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक भी जुड़े हैं। शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए आप हमारा बधाई संदेश स्वीकार करें। हमने स्वीकार कर लिया, आप सुन रहे हैं, इसीलिए प्रस्तुति भी आपको अच्छी लग रही है।

और रोहिणी से हमें संदेश भेजा है रेणु गोयल ने। लिखती हैं कि भीलनी के अतिथि हुए राम, शबरी का जीवन धन्य हुआ, चक्कर खाए प्रेम के बेर, भक्त और भगवान का मिलन हुआ। कितनी अच्छी सी सुंदर सी बात आपने लिखी है। इसके अलावा हमारे अगले श्रोता लिखते हैं, आदाब, किसी भी गीत में शामिल करें। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमति डॉक्टर डब्लू अंसारी और आपके परिवार के पूरे सदस्य मिलकर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हमें भी अच्छा लग रहा है जब आप हमें आपके प्यारे प्यारे संदेश हमें मिलते हैं, तो हमारा तो आपको छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता है और ऐसा लगता है कि हम आपसे बातें करते रहें। लेकिन क्या करें, समय की मांग है कि हमें आपको छोड़कर जाना होगा, लेकिन आप कहीं जा नहीं रहे हैं। आप बने रहिए आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और

आपकी जो प्यारी प्यारी आज संदेशी कार्यक्रम में हमने शामिल किए, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे जुड़ते हैं, अपने दिल की बात, मन की बात हमसे करते हैं। और आज आपने जो मेहमान नवाजी के ऊपर, अतिथि देवो भव के ऊपर जो प्यारी प्यारी बातें हमसे की हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे दिल में जो भाव आ रहे हैं वो समझिए इस गीत के माध्यम से।

0: जी हाँ, ठहर जाइए ज़रा, ये शाम अभी ढली नहीं, दिल की बात अभी पूरी हुई नहीं।
1: मैं थोड़ी देर जीतो लूं नशे के।
0: और इसी के साथ अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ को दीजिए इजाजत।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री इस समय भागीदार देशों के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
1: क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है। फ्रेंड्स, भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कॉरपोरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
0: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, आज सम्मेलन के अंतिम दिन एजेंडे में क्या कुछ खास है?
2: देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आज सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साझेदार देशों के नेताओं का भारत मंडपम में गर्मजोशी से स्वागत किया और बाद में ग्रुप फोटो के लिए भी सभी एकत्रित हुए। इस सत्र के बाद दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिश्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। आपको बता दूं कि भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स तक रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों से

0: शुरू हुआ यह समूह अब कुल मिलाकर 21 देशों का हो गया है, जिसमें सदस्य और साझेदार देश शामिल हैं। और भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में जो है दोगुना ज्यादा बढ़ा है। ब्रिक्स समूह जो है भारत के लिए आर्थिक
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। कल सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रेंज स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। ये ओडिशा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। इन नेताओं में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलेना रायबाकिना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today welcomed leaders of BRICS partner countries on the second and last day of 18th BRICS summit at Bharat Mandapam in New Delhi. They include Prime Minister of Malaysia Anwar Ibrahim, Vietnamese Prime Minister Lee Min Hung, Foreign Minister of Saudi Arabia Faisal bin Farhan and UN Secretary General Antonio Guterres. After posing for family photos, the leaders are participating in the session based on resilience, innovation, cooperation and sustainability, shaping the future for inclusive global growth. And now, we go live to Prime Minister Narendra Modi's welcome remarks at Bharat Mandapam.
3: दूसरे दिन के सेशन की शुरुआत
2: The 10 partner countries of BRICS are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with President of Kazakhstan, Kasym Jomart Tokayev, President of Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr., President of Egypt Abdel Fattah el-Sisi, President of South Africa Cyril Ramaphosa and President of Burundi Evariste Ndayishimiye. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pahalgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration adopted unanimously at the opening day of the summit said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. The declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed and many more injured. The joint declaration also expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. Finance Minister Nirmala Sitharaman today met the Iranian Minister of Economic Affairs and Finance Sayed Ali Madinzadeh in New Delhi.

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमंजरी। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महेंद्र शर्मा का गाया राग शुद्ध सारंग। आपका साथ दे रहे हैं तबले पर बल्लो खान वारसी, हारमोनियम पर हैं ओम प्रकाश।

0: श्रोताओं, सुरमंजरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महेंद्र शर्मा का गाया राग शुद्ध सारंग। आपका साथ दे रहे थे तबले पर बल्लो खान वारसी और हारमोनियम पर ओम प्रकाश। इसी के साथ सुरमंजरी कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
2: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिसरप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
2: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
2: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
3: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया
1: जी।
3: इसमें ब्रिक्स

0: देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले 3 दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today said pandemics, climate disasters and supply chain disruption have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Addressing the open session of BRICS Summit at Bharat Mandapam in New Delhi, Mr. Modi said BRICS nations have therefore placed special emphasis on enhancing resilience among the grouping. In the session on resilience, innovation, cooperation and sustainability, Mr. Modi also emphasized on timely identification of challenges, preparation for them and taking immediate action. He said that a consensus has been reached on a BRICS integrated early warning system for the prevention of and response to infectious diseases. He added that early warning data integration guidelines have been formulated for disaster management.
3: Aaj ke interconnected world mein koi bhi sankat ek kshetr tak simit nahi rehta. Isliye humne BRICS samuh mein resilience badhane par vishesh bal diya hai. चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
2: Prime Minister Modi cautioned that weaponization of technology and critical minerals can become a hurdle for progress. He said BRICS nations have stressed on inclusivity in adoption of technology.
3: Technology aur critical minerals ka weaponization hamari saajha pragati mein badha ban sakta hai. Isliye humne technology ke adoption mein inclusivity par bal diya hai.
2: Mr. Modi said they have set up a BRICS Digital Center of Excellence for smart grids and energy storage, which will help make clean energy systems more reliable, efficient and accessible. Prime Minister said that the benefits of solutions developed within BRICS should be made adaptable and accessible to meet the needs of the Global South. Mr. Modi further stated that the BRICS Logistics Supply Chain Cooperation Framework will help make supply chains more reliable and resilient. Under the umbrella of innovation, the BRICS Incubator Network will connect startups and incubators. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with President of Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev, President of the Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr., President of Egypt, Abdel Fattah al-Sisi, President of South Africa Cyril

0: ग्रामीण बहनों का विशेष कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: आ गए हैं हम आपके द्वार लेकर आपके लिए गीत संगीत जानकारी का उपहार। स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। तो बहनों, आप सभी को हम दोनों की तरफ से राम राम।
0: देखो ऐसा है ना कमलेश, की जब हम आते हैं कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और बातें करते हैं तो ये रहता है कि हमारी बहुत सी बातें रहती है जो मन में रह जाती है। जब यहाँ पर हम बैठते हैं तो उन मन की बातों को हम अपनी बहनों तक पहुँचाते हैं और हमारी बहनें भी साझा करने की कोशिश करती हैं, हमें सुनती हैं, समय देती हैं अपने काम को निपटाने के साथ साथ।
1: मैं तो यही कहती हूँ कि वो भी हमारी बाट देखती हैं कि कब हमारा अपना प्यारा प्यारा ये कार्यक्रम आरंभ हो और हम सुने कि आज हमारी बहनें हमारे लिए जो उनका पितारा है, जो उनका गुलदस्ता है, उसमें क्या लेकर आई हैं।
0: वही है ना, जिज्ञासा होती है कि मिल जाए कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए बहुत ही कामगार साबित हो, तो ऐसी कोशिश हम करते हैं और जानकारी भी दिलाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आज की हम।
1: बिल्कुल, तो आज की जब हम बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी यमुना कि जब भी हम आपस में बात करें या हम कहीं पर जाएं या कोई हमारे घर आता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिना हम आपसी सहयोग के कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि ताली भी जो बजती है तो दो हाथ से ही बजती है, ठीक है ना, एक हाथ से तो ताली भी नहीं बजती। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि

0: बिना किसी सहयोग के, चाहे हम घर हो, परिवार हो, या देश हो, या विदेश हो, कहीं पर भी बिना सहयोग हम कुछ भी काम नहीं कर पाते। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो मनाया जाता है, और इसके मनाने के पीछे कारण भी यही होता है कि जो विकासशील जो देश है ना, उनके बीच में जो एक सहयोग बनेगा, आर्थिक है, सामाजिक है और राजनीतिक है, तो उससे जो है उनके जो भी प्रयास होंगे उनका जो पूरा असर है उन देशों पर पड़ता है।
1: बिल्कुल सही कहा कमलेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात हम कर रहे हैं, ये विकासशील देशों के बीच साझेदारी ही नहीं है बल्कि साझा प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। जब देश अपने ज्ञान, अनुभव, तकनीक और संसाधनों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो विकास की राह कमलेश अपने आप सरल और सशक्त बनती है। इसीलिए हमें सहयोग, समानता और एकजुटता की जो भावना होती है ना, कहा गया ना बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, तो वो चीज़ है, वो जो भावना हम बढ़ावा देते हैं इन सब चीज़ों पर ताकि एक न्यायपूर्ण और समृद्ध तरीके से हमारा जो ये देश जो है आगे बढ़ सके और बहुत ही समृद्धशाली बने एक तरीके से।
0: बिल्कुल। और कई बार ये भी होता है ना कि जो तकनीक दूसरे देश में है हो सकता है वो हमारे पास है, जो तकनीक हमारे पास है वो दूसरे देश में नहीं है, तो आपसे जो तकनीक का सहयोग होगा, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, उससे भी कितना फायदा होगा। तो उससे क्या होगा, जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं, जो उन देशों के बीच में आपसी जो सहयोग बनेगा, सामूहिक आत्मनिर्भरता बनेगी, वो जो है पूरे विश्व पटल पर एक अलग ही छाप छोड़ते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। अभी भी आप देख रही हो 11 से 13 सितंबर तक हमारे यहाँ ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है जिसमें कई देशों के लोग आए हैं और एक दूसरे से साझा कर रहे हैं अपनी कला, संस्कृति, ज्ञान, वैज्ञानिक की जो भी तरकीब है, तरीके हैं, वो सारी चीज़ें लेन देन हो रही है। तो जो एक उदाहरण की बात है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि ब्रिक्स सम्मेलन का जो दिन है हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी से जुड़ते हैं, कोई बात हम करते हैं, इस तरीके के सहयोग की बात होती है, तो सच कहें तो एक दूसरे की बाहर को प्यार को जब हम बांटते हैं तो उसकी बात ही कुछ
0: और मन प्रसन्न भी तो होता है ना। फिर लगता है कि क्यों ना हम भी झूमे, नाचे, गाएं और जो बाहर चल रही है उसका हम भी आनंद उठाएं।
1: बिल्कुल। और ये कहें

0: और जो हमारे पास से थोड़े बहुत पैसे होते हैं तो उनका हम क्या करते हैं? उनका पहले तो हम भी ऐसे ही करते थे कि कहीं ना कहीं जो थे ना आधे आधे करके पैसे रखते थे, 200-500 कहीं हो गए वो अलग से रख दिए, 500-1000 हो गए वो अलग से रख दिए। और ये आदत जो है ना यमुना अभी भी बनी हुई है। बेशक अब सब कहते हैं कि भी जो भी आपका पैसा है वो बैंक में जाके आपको जमा करना चाहिए, बैंक में कुछ ब्याज मिलेगा कुछ, जो आपका पैसा घर में रखा वो तो बढ़ेगा नहीं। कई बार मजाक भी करते ना, 100 रुपये का नोट 200 रुपये के तो होने जाएंगे, या जो आपने 500-500 के नोट रखे हैं उनको 3 की बजाय 4 तो होने जाएंगे।
1: देखो कमलेश, ऐसा है ना, कहने कहने जब ऐसी बातें आती है ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये तब कहा जाता है जब उस बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है कि
0: बिल्कुल
1: हमें कितने परसेंट मिलता है, कितने प्रतिशत हमें इस पे ब्याज मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपके पास पैसे हैं और आपको जानकारी नहीं है तो नज़दीकी बैंक में जाइए, वहाँ पे संपर्क कीजिए। सभी जगह बैंक खुल चुके हैं छोटे छोटे। घर में जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि भाई इतने पे इतने मिलता है तो कितने सेविंग में हमें कितना, बचत खाते में हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो जब आप एक बार जमा करेंगी इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा, तो आप क्या कहते हैं उत्साहित होंगे, भाई हाँ जमा करना चाहिए, अगर मुझे 500 रुपये पे इतना ब्याज मिला तो हमें तो 1000 पे इतना मिलेगा। तो धीरे धीरे करके आप स्टोर करने की कोशिश करना शुरू कर देंगी। लेकिन बहुत सी परेशानियां भी आती हैं जिसकी शिकायत भी करनी पड़ती है कहीं
0: ना
1: कहीं।
0: भाई देखो ना, कोई काम करता है आपके लिए तो कहीं ना कहीं आपको शिकायत हो ही जाएगी उनसे, अगर आपको उसकी अच्छी जानकारी नहीं है। लेकिन उसकी अच्छी जानकारी ना होने के बाद भी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी स्थिति जो शिकायत है वो सीधा जब हम बैंक में जाते हैं और बैंक में अपने जो बैंक शाखा का जो मैनेजर होता है या जो नोडल अधिकारी होता है उसको जो अपनी शिकायत है वो लिखित में देनी चाहिए, क्योंकि लिखित का उसके बाद हमें प्रमाण भी लेना है कि भाई हमने आपको शिकायत दी है, वो साइन करके और वापस ले लो, ताकि अगर आगे उस प्रक्रिया को बढ़ाना हो तो हमारे पास एक सबूत रहे। हमारी बहनें क्या करते हैं, कई बार भाई भी और कई बार पढ़े लिखे भी होते हैं, कहते हैं हाँ देकर तो आगे, अच्छा वापस लेकर भी आना था, उनसे ये भी लिखवाना था कि हाँ हमने आपको ये चीज़ दे दी है। तो कुछ बातें जो छोटी छोटी होती हैं वही आकर हम अपनी बहनों के साथ साझा करते हैं।
1: अब सबसे बड़ी बात है कि आप मान लीजिए आप 5000 रुपये आप जमा करने गए, तो आप बचत खाते जमा करने का जो है उसे आप फॉर्म भरेंगे, तो उसमें फॉर्म में दो तरीका होता है, एक तो वो अपने पास रख लेता है, एक आपको स्टैंप लगा के मोहर लगा के आपको वापस देता है। तो उसमें सही सही आप तारीख भरिए, अपना अमाउंट भरिए सही तरीके से, और जब वो लेने लगे आप तो एक स्लिप उससे जरूर अपनी वाली लीजिए, वो आपके पास सेफ रहेगा। कभी मान लीजिए हो सका कि नहीं जमा हो पा रहा है या कोई बात रही है या आपको लगे कि 5000 रुपया वहां पे पहुंचा नहीं कुछ ऐसा, तो आप उस स्लिप को लेकर के बैंक मैनेजर से संपर्क करेंगे और बताएंगे कैशियर से कि हमने आपके पास इतना पैसा जमा किया था, मेरे पास ये रिसीविंग है और वो जो है आप हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसमें क्या दिक्कत है। दूसरी बात, अगर आप ई बैंकिंग रखती हैं, कनेक्ट कर देते हैं आपके मोबाइल से, तो जब भी कोई निकासी होती है या जमा होता है तो सारा मैसेज आपके पास आता है, तो ये आप तुरंत नहीं जान जाएंगे, धीरे धीरे घर में जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं धीरे धीरे आपको बताएंगे, और आप भी थोड़ी कोशिश करेंगी तो ज़रूर आपको पता चलेगा हाँ हम इतना पैसा जमा करके आए हैं, इसका इतना ब्याज भी मिला, उसमें आ जाता है कि महीने का इतना ब्याज हुआ, साल भर का इतना ब्याज हुआ। तो है कोई चीज़, आप शिकायत तभी कर सकती हैं जब आप किसी पेपर को मजबूती से अपने पास रखेंगी। आप जो भी कर रही हैं उसका पेपर, उसका खाता, और उस पर प्रिंट जाके कराइए अपने पासबुक पे कि हाँ हमारा इतना हो गया, वहां प्रिंटिंग मशीन लगी रहती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं आपको गौर करना होगा, तभी आप शिकायत कर सकती हैं जब आपके पास पक्का सबूत होगा।
0: और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंकिंग लोकपाल और बैंक संबंधी जो शिकायतें हैं उनका समाधान कैसे निकाला जाता है, और उस समाधान में अगर कभी आपको भी उसका समाधान चाहिए तो आप भी कैसे ले सकती हैं। तो जब हमने नोडल अधिकारी को अपनी शिकायत दे दी है तो 30 दिनों के अंदर अंदर अगर समाधान आपको नहीं मिलता है तो

0: देखिए ऊपर भी उनके ऊपर है आरबीआई, तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के पास ऑनलाइन जो रसीद आपने वहां से ली थी तो वो भी अपने पास जरूर रखें ताकि उनको दिखाने के लिए आपको आसानी रहे।
1: बिल्कुल, जो बैंकिंग लोकपाल होता है ना कमलेश, वहां पर रहता है, उपस्थित रहता है शिकायत लेने के लिए। और खास करके ये जो बनाया गया है बैंकिंग लोकपाल व्यवस्था, ये ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करना, बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखना और ग्राहकों को जो चाहिए लेन देन का रिकॉर्ड

0: ही सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकिंग की पहचान है।
1: बिल्कुल। और जब बैंक संबंधी शिकायत की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो RBI CMS पोर्टल पर भी ऑनलाइन आप इसको दर्ज करा सकती हैं, और इसमें आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है, और ये जो शिकायत है वो 1 साल के भीतर भीतर होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो थोड़ा सा जागरूक रहिए और पैसे इकट्ठा करिए। लेकिन कमलेश एक बात कहूंगी, हाँ, पैसे ज्यादा इकट्ठा कर लेने पे लोगों में अभिमान भी आ जाता है।
1: अच्छा,
0: तो अभिमान लाना नहीं चाहिए, पैसे खूब इकट्ठा कीजिए, लेकिन उसमें से कुछ प्रतिशत अगर आपको लगता है किसी जरूरतमंद की हम सेवा कर सकते हैं तो जरूर उनकी सेवा करिए। और ये जो पैसा है ना, इस पे गुरूर करना ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: तभी तो कह गया है ना।

0: कोई भी नहीं करेगा पैसे पर गुरूर,
1: बिल्कुल नहीं करना है,
0: क्योंकि पैसे का जो गुरूर है वो तो देखो एक दिन कोई करता है, दूसरे दिन ही कहता है कि भाई जिसने इतना गुरूर करा वो तो फिर दोबारा से वापस जमीन पर आ गया है।
1: और बात यही कि जानकारी की बात आ गई है, क्योंकि विषय कुछ ऐसा होता है कि हमारी बहनों को कुछ परेशानियां भी होती हैं शारीरिक, तो उसका निदान भी हम यहीं पर खोजते हैं, यहीं पर बताते हैं उनको कि कैसे होगा। तो आज का हमारा कुछ बातचीत का ऐसा विषय है जिस पर बहनों के लिए जानना बहुत जरूरी है, महिलाओं में होने वाले जोड़ों का दर्द, कारण और उपचार। डॉक्टर पूजा सेठी जो कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञ हैं, तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर पूजा सेठी से कमलेश मुद्गल आपकी मतलब बातचीत।
0: आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर पूजा सेठी को, जो विभाग अध्यक्ष हैं भौतिक चिकित्सा विभाग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में। इनसे हम बातचीत करेंगे महिलाओं में होने वाले जोड़ों का दर्द, कारण और उपचार। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार।
0: हर कोई बहन यही चाहती है मैं स्वस्थ रहूं
2: जी।
0: लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द बनना आरंभ हो जाता है, तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो जोड़ों का दर्द है वो क्या है और कौन कौन से जोड़ हैं जो अधिक दुखते हैं।
2: देखिए, महिलाओं में जोड़ों का दर्द पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। उसके कई कारण हैं। एक है उनके शरीर की बनावट, जीवन शैली। ठीक है, ज्यादातर महिलाओं को काफी देर तक खड़ा होकर या बैठकर काम करना पड़ता है, तो जिस तरह की जीवन शैली है, जिस तरह का उनका हार्मोनल प्रोफाइल है। फिर महिलाओं के अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में, एडोलसेंट में अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनार्की के टाइम पे रजनवृत्ति जब शुरू होती है, और जब रजनवृत्ति होती है मीनोपॉज होता है, काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वो भी एक आम कारण है जिससे ज्यादातर 50 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं में हमें जोड़ों का दर्द देखने को मिलता है। ठीक है, जोड़ों के दर्द के प्रमुख कारण पहला तो है जैसे मैंने बताया हार्मोनल चेंजेस। जब आपकी रजनवृत्ति या मेनोपॉज हो गया, आपकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल काफी कम हो जाती है, तो उससे हड्डियों का घनत्व जिसे हम बोन डेंसिटी कहते हैं वो कम हो जाती है, जिससे टांगों में दर्द होना अमूमन है। उसके अलावा होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। महिलाएं परिवार का तो ध्यान रखती है, लेकिन खुद दूध लेना, टाइम पे कैल्शियम की गोली लेना, इसमें ध्यान नहीं रखती। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमें काफ में जैसे

0: कंडलों में दर्द होना, पैरों के तले में दर्द रहना महिलाओं में अमूम है। उसके अलावा काफी, जैसे ज्यादातर महिलाओं में बच्चा होने के बाद वजन बढ़ जाता है, तो एक बढ़ा हुआ वजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कमर दर्द और घुटनों के दर्द का। क्योंकि अगर आप 4 से 5 किलो भी वजन कम करेंगी तो आपका घुटनों 40 से 50 किलो वजन कम होगा और घुटनों का आपका डिजनरेशन होना या घिसना काफी हद तक कम हो सकेगा। चौथा हमारा कारण रहता है कि उम्र के साथ साथ जो डिजनरेशन होती है, आपकी जो है ग्रीस कम होती है, जिसको नॉर्मली भाषा में बताते हैं, एक्चुअली हमारी डीजनरेशन हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड कम होता है, इस वजह से हमारा जोड़ में जो लचीलापन है वो कम होता है, इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कारण है महिलाओं में रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के खुद ही कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और डैमेज करते हैं। इसमें ज्यादातर आपकी हाथों की उंगलियों में दर्द रहना, पैरों की उंगलियों में, घुटनों में, कंधों में, कोहनियों में दर्द रहना, इसमें ज्यादातर सुबह के टाइम पे जकड़न रहती है, जब भी आप उठते हैं तो सुबह उठा नहीं जाता, जकड़न होती, लेकिन जब 1-1.5 घंटा निकल जाता है, थोड़ा आप चल लेते हैं, अपनी दैनिक क्रियाएं करती हैं, उसके बाद महिलाओं में जकड़न कम होने लगती है।
1: जी, 50 के बाद तो देखो हर किसी को लगता है कि हमें इन बीमारियों से जूझना है, लेकिन आजकल जो मैं बच्चों का लाइफस्टाइल देख रही हूँ उसमें जो 30 साल की लड़कियां भी हैं, जो 30 साल से बस 2 या 3 साल ऊपर बढ़ी हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे जो जोड़ हैं उनमें दर्द होना आरंभ हो गया है और अभी वो माँ भी नहीं बनी है, तो उनमें क्या कारण हो सकता है?
0: देखिए, मैं ये कहूंगी कि सिर्फ जरूरी नहीं कि उम्र के साथ ही आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द होता है, आपकी जीवन शैली काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपको जोड़ों का दर्द होगा या नहीं। उससे बहुत, देखिए 5 मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। सबसे पहला तो है कि एक्सरसाइज रोज करना, ठीक है, जिससे आपके जोड़ों का लचीलापन बना रहे, जकड़न कम हो, आपको ताकि आपकी मांसपेशियां सशक्त रहें। तो एक्सरसाइज डेली, और इवन WHO भी कहता है कि आपको हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की एक्सरसाइज करनी जरूरी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक अच्छा स्वस्थ जीवन रहने के लिए। दूसरा है आपका हार्मोनल चेंजेस, तो हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से आपको अगर कभी भी ज्यादा कम या वेट गेन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है वजन, तो थायराइड या दूसरी तकलीफ हो सकती है, तो आपको एकदम से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तीसरा है आपका पोस्चर, कि किस तरह से हम बैठते हैं, खड़े होते हैं। अगर हम बहुत देर तक झुक के कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारी कमर में, गर्दन में काफी जोर पड़ता है। अगर हम चौकड़ी मार के काफी देर काम करते हैं उससे भी फर्क रहता है। महिलाएं काफी काफी घंटे रसोई में खड़े होकर कई कई घंटे काम करती रहती हैं, उस भी तो हमारा पोस्चर से बहुत इंपॉर्टेंट फर्क। आपका पोषण कैसा है, आप खाने में कैसा वो ले रही हैं, ठीक है, क्योंकि हरी सब्जियां, कैल्शियम, विटामिन डी, ज्यादातर हम धूप में नहीं जाते, तो धूप में ना जाना भी एक विटामिन, जबकि भारत जैसे देश में ट्रॉपिकल रीजन है, धूप इतनी अच्छी होती है, लेकिन हम धूप में नहीं जाते। ज्यादातर कामकाजी महिलाएं तो सुबह चली गई, शाम को आई, सुबह भी धूप नहीं मिलती, शाम को भी नहीं, और जो महिलाएं घर पे रहती हैं वो घर के कामों में इतनी जूझती रहती हैं कि धूप में कम से कम 15 से 20 मिनट की हमें धूप लगनी चाहिए। और जब मैं धूप में जाने का मतलब कह रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरी तरह से अपनी बॉडी को कवर कर लिया, क्योंकि फिर तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, धूप एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो धूप में जाना बहुत जरूरी है। और पांचवा कारण है आपका वजन ज्यादा होना, तो वजन जिसका ज्यादा होता है उसकी कमर पे और घुटनों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। तो अगर हम इन 5 चीजों का ध्यान रखें, अगर हम एक्सरसाइज करें, पोस्चर का ध्यान रखें, अपने आहार का ध्यान रखें, और हम विटामिन डी रेगुलरली धूप में जाके लें, तो हम काफी हद तक जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं।
1: धूप में जाने की जो आपने बात कही, वो सर्दियों में हम लोग सभी कोशिश करते हैं धूप में बैठा जाए, लेकिन गर्मी में धूप के बारे में सोचना वो तो एकदम मुश्किल सा लगता है कि कैसे हम धूप में थोड़ी देर के लिए बैठे।
0: गर्मियों में बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन अगर हम सर्दियों में ही बैठ के अपना वो पूरा कर लें, तो विटामिन डी ऐसा नहीं है कि जो आपके शरीर में है तो वो रहेगा, बिकॉज ऑयल बेस्ड विटामिन है वो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो आपकी सर्दियों में

0: है। डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर के पास तो तभी जाते हैं जब उठा नहीं जाएगा, बैठ नहीं जाएगा, कमर बिल्कुल चली जाएगी।
1: बिल्कुल
0: लेकिन मैं बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको लगे कि ये वाले लक्षण अब मुझ में धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं, तो उसी समय बिना डरे डॉक्टर के पास पहुंच जाए। तो ऐसे में आप हमारी बहनों को क्या सलाह देंगे?
1: देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि दर्द अगर एक दो दिन हुआ वो ठीक हो गया तो ठीक है, आप घर पे उसका उपचार कर लें, सिकाई कर लें। लेकिन जब आपको लग रहा है कि एक हफ्ते से ज्यादा दर्द है और वो आपके डेली गतिविधियों को या आपकी जीवन शैली को इफेक्ट कर रहा है कि आप अपने डेली के काम नहीं कर पा रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमें बस काफी मरीज फिजियोथेरेपी विभाग में आते हैं। फिजियोथेरेपी में हम कई तरह से उनका इलाज करते हैं। हम एक्सरसाइज यूज करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करते हैं, मैनुअल थेरेपी यूज करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास अलग अलग तरह की सिकाइयां होती हैं, जैसे शॉर्टवेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी, जिससे हम मसल्स का स्पैजम कम करते हैं। उसके अलावा जिनको टेंडिनाइटिस या जोड़ों जैसे मसल्स में स्वेलिंग होती है, तब हम लेजर अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करते हैं। सूजन के लिए हम क्रायोथेरेपी और IFT का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास अलग अलग तरह की रेडिएशन होती है जिससे हम दर्द और सूजन कम करते हैं। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं हमारी एक्सरसाइज थेरेपी। उसमें हम करते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस जिससे जोड़ों की गतिशीलता बनी रहे। फिर हम यूज करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जिससे जोड़ों का लचीलापन बना रहे। फिर हम करते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जिसे हम डंबल्स, थेराबैंड या वेट द्वारा करते हैं, जैसे कि आसपास की मांसपेशियां सशक्त रहें। खासकर ज्यादातर महिलाएं हमारे पास आती हैं घुटनों के दर्द से, ठीक है। तो अगर हम कॉर्डिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग अच्छे से करेंगे तो काफी हद तक जो है, अगर मसल स्ट्रांग रहेंगी, हमारी बोनी अलाइनमेंट ठीक

0: जड़ों का ख्याल रखना है। उसमें दो चीजें जरूरी है, एक तो एक्सरसाइज और दूसरा चौकड़ी मार के ना बैठना, पैरों के बाहर ना बैठना, सीढ़ियां बार बार नहीं चढ़ना उतरना। आपने जो भी काम करना है एक ऊंचे पटरे पे बैठ के करिए या कुर्सी पे बैठ के करिए। सीढ़ियां ज्यादा चढ़ना उतरना, अगर आपने घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है और एकदम आप सीढ़ियां चढ़ना उतरना शुरू करेंगे तो दर्द हमेशा बढ़ जाएगा। घुटनों के लिए आपको मेनली नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। साइकिलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि साइकिलिंग जब हम करते हैं तो घुटनों पे वजन नहीं आता शरीर का, पर एट द सेम टाइम आपकी जो मांसपेशियां उसमें स्ट्रेंथनिंग होती है। तो साइकिल खास करके जो एक्सरसाइज वाली साइकिल होती है जिसमें हम वजन या रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, तो रेजिस्टेंस वाली या एर्गोमेट्रिक साइकिल करनी बहुत लाभदायक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में। इसके अलावा हम उन्हें कॉर्डिसेप्स एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिसमें हम उन्हें बोलते हैं कि रेत या नमक की थैली अपने पैर के पास बांध लें और उसके बाद पलंग के कोने में बैठ जाए और पैर को सीधा उठाए। उससे भी आपकी कॉर्डिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है और आपके जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है आपको।
1: कई बार ये भी देखा गया है कि हमारी बहनों की उंगलियां जो है, खासतौर से जब सर्दियां आती हैं तो थोड़ी सूज जाती हैं, या जो घुटने हैं उनके ऊपर हल्की हल्की सूजन शुरू हो जाती है, तो क्या ये भी जोड़ों के दर्द का लक्षण?
0: ये भी जोड़ों के दर्द के लक्षण है बिल्कुल। अगर बिल्कुल डिस्टेंस वाले डीआईपी जॉइंट्स पे होती है तो ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। ऐसे मरीजों में आप देखेंगे कुछ ना, आपको जब हम मरीज को एग्जामिन करेंगे तो एक टाइट टाइट सी हमें नोड्यूल से या गांठे सी नजर आएंगी, ठीक है, तो इसको हम हर्बिडेंस नोड कहते हैं और ये ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस की और ये 60 साल से 70 साल की महिलाओं में, उससे कम की महिलाओं में नहीं देखी जाती। लेकिन अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपके एमसीपी जॉइंट्स और पीआईपी जॉइंट्स ज्यादा होंगे, इन्वॉल्व होंगे, उनमें सूजन रहेगी। तो जब महिला सुबह उठेंगी तो उनके हाथों में जकड़न होगी, सूजन होगी, लेकिन थोड़ा बहुत वो हिलाएंगी, थोड़ा गर्म पानी से सेक करेंगी, एक डेढ़ घंटा बीतेगा अपनी दिनचर्या के काम करेंगी तो उसमें आराम मिलेगा। तो अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उस समय आपको रूमेटोलॉजिस्ट या गठिया स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है, क्योंकि उसमें फिजियोथेरेपी के साथ साथ आपको दवाई भी लेनी जरूर पड़ेगी।
1: जी, कब उनको पता चले कि अब जो है गठिया की शुरुआत हो चुकी है और मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: आपके घुटने में या कमर में दर्द रह रहा है एक हफ्ते से ज्यादा, सूजन है, और अगर आपने कुछ दबाया और दबा के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत तेज दर्द हो रही है तो इसका मतलब ये इन्फ्लेमेशन की निशानियां हैं। इसका मतलब आपको अभी एक्टिव आर्थराइटिस है, इस समय आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है।
1: क्योंकि बहुत सी बहनों को जो है कमर दर्द बहुत बना रहता है, सिकाई कर लेती हैं या कुछ दवाइयां होती हैं, दवाइयों को लगा लिया फिर ठीक हो गई, ज्यादा कर उन्होंने कुछ दर्द निवारक दवाई खा ली और अपने आप को ठीक महसूस किया तो उसके बाद सोचती है कि अब तो मैं ठीक हूँ, तो क्या उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए, बिकॉज हम उन्हें अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे उनका लंबर लॉर्डोसिस मेंटेन रहेगा। अगर लंबर का कर्व मेंटेन रहेगा तो उनको बार बार ये जो दर्द की शिकायत है वो नहीं होगी, और अगर उनका वजन ज्यादा होता है तो हम उसके लिए एक्सरसाइज बताते हैं ताकि वजन कम हो और कमर पे जोर कम पड़े।
1: जी, ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और कौन कौन सी विधियां जिनके उपयोग से आप उनका इलाज करते हैं?
0: जस्ट एक्सरसाइज थेरेपी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करते हैं, इसके अलावा हम मैनुअल थेरेपी यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जैसे ISTM यूज हो, टूल हो गया, MFR रिलीज हो गई, आपकी मसल एनर्जी टेक्निक्स, जॉइंट के ग्लाइड्स, तो उससे हम जोड़ों को मोबिलाइज करते हैं, जहाँ पे जकड़न वाले पॉइंट्स हम आपके या जहाँ पे मांसपेशियों में बैंड बने हुए हैं उनको रिलीज करते हैं, जिससे जकड़न में कमी होती है और लचीलापन बढ़ता है आपकी कमर का।
1: डॉक्टर साहब, ये उपचार कितने दिनों तक चलता है?
0: देखिए, वो मरीज पे डिपेंड करता है वो कब हमारे पास आते हैं। जो ज्यादातर शुरुआती दौर में आ जाते हैं तो हम हफ्ता 10 दिन ये अपनी थेरेपी देते हैं, उसके बाद उनको घर पे करने वाली एक्सरसाइजेस बता दी जाती हैं। लेकिन कई मरीज हमारे पास काफी ज्यादा दर्द बढ़ा के आते हैं तो कई बार फिर 15 दिन से महीने तक हमें उनको हमारे पास भौतिक चिकित्सा के लिए रेगुलरली आना पड़ता है।
1: मैं तो यही चाहूंगा कि हमारी बहनें जो है हमेशा स्वस्थ रहें, और अगर हो भी जाता है तो तुरंत वो डॉक्टर के पास जाए। अब चलते चलते आप हमारी बहनों को ये बता दीजिए कि वो दिनचर्या के जब आरंभ करती हैं तो कैसे छोटी छोटी एक्सरसाइज वो कर ले जिससे कि जो दर्द है वो उनका उनसे दूर रहे।
0: सबसे पहले जब आप उठती हैं, ठीक है, लेटे लेटे ही अपने घुटने को मोड़कर दोनों हाथों से पकड़ के पेट की तरफ लगाइए, पहले एक घुटने को फिर दूसरे घुटने को 5-5 बार, फिर दोनों घुटनों को इकट्ठे पकड़ के पेट की तरफ लगाइए, तो इससे आपकी पूरी कमर की स्ट्रेच हो जाएगी। फिर जब आप उठती हैं तो ये ध्यान दें कि पहले हमेशा करवट लें और फिर उठ के बैठे, 30 सेकंड तक बैठ के फिर उठ के आप चलें और अपना जो भी अपने दिनचर्या का काम करना है वो करें। ये दो चीजें अगर आप फॉलो करेंगी तो काफी हद तक आप दर्द से बची रहेंगी।
1: जी, हमारी बहनें क्या खाएं जिससे कि उनको इन चीजों की कमी ना हो और सभी पोषक तत्व उन्हें मिलते चले जाए?
0: हरी सब्जियां, दूध का सेवन, पनीर, जब हम पनीर बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मलाई पनीर, तो उन मिल का बना हुआ पनीर, घर का बना हुआ पनीर, दही खाएं, ठीक है, मखाने, खजूर, ये सारी चीजें कैल्शियम और विटामिन डी रिच है। इसके अलावा प्रोटीन्स, खास करके जो मेनोपॉजल या एज की फीमेल्स है उनको प्रोटीन ज्यादा वगैरह खाना चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन खाती हैं तो बहुत अच्छा है, तो चिकन मीट वगैरह ले सकती हैं। अगर वेजिटेरियन है तो सोयाबीन और पनीर, छोले, राजमा, इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इनसे उनको आराम मिलेगा।
1: और जो विटामिन डी की दवाइयों की बात करते हैं तो डॉक्टर से पूछकर खाने चाहिए, क्योंकि आजकल ये भी देखा गया कि हमारी बहनें जो है वो विटामिन डी का पत्ता बाहर से मंगा लेती है और शुरू कर देती है, तो क्या वो ठीक है?
0: जी नहीं, बिकॉज विटामिन डी एक हमारा ऑयल सॉल्युबल विटामिन है, और अगर ये ज्यादा हो जाए तो इसे बॉडी से एक्सक्रीट

0: करना मुश्किल होता है और फिर किडनी की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो ये हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में ही खाना चाहिए।
1: तो पहले अपना कोई ब्लड टेस्ट करना आने के बाद ही हम
0: बाद ही विटामिन डी की शुरुआत करेंगे।
1: जी
0: बिल्कुल,
1: बहनों को यही कहेंगे कि हमारी बहनें खूब स्वस्थ रहें, घर के काम भी जो है वो भाग भाग कर करते रहे, क्योंकि उनके घुटनों में या जोड़ों में कहीं भी दर्द नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारी बहनों को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना है कमलेश, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी रही, हमारी बहनें इसका बहुत लाभ उठाएंगी। और जो जानकारी का विषय था, महिलाओं में होने वाले जोड़ों का दर्द, कारण और उपचार, डॉक्टर पूजा सेठी से कमलेश बहन मेरी बात कर रही थी। और जाहिर सी बात है, जब कोई जानकारी हमें मिलती है तो उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। और एक बात और है,
1: क्या बात है वो भी तो बता
2: दो, जो वजन है अपना ना उससे कम रखना चाहिए, तभी तो हम कह पाएंगे क्या,
3: पतली कमर लंबे बाल, हाय
2: मरी सिलासा।

0: कमलेश, समय समय पर कुछ हम योजनाओं की भी बात करते हैं जिससे बहनें लाभ उठाती हों। खास करके हम बात करें डिजिटल साक्षरता अभियान की, तो सबसे बड़ी बात है इसकी कि ज्ञान जागरूकता और सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, क्योंकि डिजिटल साक्षरता अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मदद करना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है और ये उद्देश्य भी है, ऐसा होना चाहिए।
1: बिल्कुल, और देखो हम स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट जैसे जो डिजिटल साधन है उनका हम सुरक्षित और सही उपयोग करें, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन लेन देन है उसमें हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, तो इसका जो प्रशिक्षण है और डिजिटल तकनीक से जोड़ना, ये इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
0: और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल तरीका जब आप अपनाते हैं तो इसकी सावधानियों पर विशेष गौर करें, कोई अनावश्यक लिंक था तो उसे आप ओपन ना करें, तो है ना, डिजिटल साक्षरता अभियान का बहुत ही लाभ है। आपको भी ध्यान देंगे तो जरूर इसका फायदा उठाएंगे। और सच ये है कि जब पढ़ने लिखने की बात आती है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले लोग पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, मौका नहीं मिलता था या मौका दिया नहीं जाता था, तो क्या करते थे, डाकिये के पास जाते थे कमलेश, और क्या कहते थे,
1: खत लिख दे सांवर।

0: और अब हम इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जब आपको जानकारी दे रहे हैं भारत की वीरांगना क्रम में अवंतीबाई लोधी के बारे में, जिनके साहस और देशभक्ति ने स्वतंत्रता के इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी थी।
1: बिल्कुल, और रानी अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश के रामगढ़ राज्य की वीर रानी थी। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध साहसपूर्वक संघर्ष किया और उनके नेतृत्व से देशभक्ति एवं स्वाभिमान की भावना जागृत हुई।
0: विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके साहस, आत्मसम्मान और देश प्रेम के उनके जीवन को हम सब नमन करते हैं।

0: कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बताना, जिनको सुनना बहुत जरूरी हो जाता है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे
0: दादा दादी नाना नानी की हम बात कर रहे हैं?
1: तो कहना ही क्या है भाई, जब भी मम्मी पापा डांटते हैं दादा और दादी की गोद में जाकर हम छुप जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे दोस्त की तरह से बन जाते हैं। और जब माँ बाप को डांट पड़ती है ना, है कितना अच्छा लगता है। बच्चे कहते हैं रोज तो हमें डांटते, आज देखो अब आपको भी डांट पड़ रही है।
0: तो इसलिए तो कहते हैं ना, कुछ माँ जैसी कुछ गुरु जैसी कहानियों में दुनिया समेट लेने वाली सुकून होती है तो उस दादी के पास होती है।
1: बिल्कुल।
0: और जेब में जब
1: टॉफियां हो, सिक्कों का खजाना हो, और अगर आपकी जिद मान ली जाए तो समझ लो वो नाना है।
0: नाना है। और नानी की बात कर ले, थोड़ी जादूगर सी, मन में पढ़ लेने वाली, मना करने भी थाली में और प्यार परोस देने वाली होती है नानी। और साथ साथ ये भी बात करें कि गणेश चतुर्थी की भी बात कर लेते हैं कमलेश।
1: और कल जो है वो गणेश उत्सव मनाया जाएगा, और कल ही जो है हरतालिका तीज भी मनाई जाएगी। यानी जो एक त्योहारों का सिलसिला है वो बिल्कुल आरंभ हो चुका है। और अगर हम बात करें तो कल हिंदी दिवस भी है। और अगर हम बात करें कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना, हम बात तो कर लेते हैं लेकिन कितने सकारात्मक अपनी जिंदगी में रहते हैं ये सोचने वाली बात है। तो इस पर भी एक दिन मनाया जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग डे, जो कि आज हम
0: मना रहे हैं। तो गणपति की आराधना करते हैं और उनके आने की खुशी में हम थोड़ा सा पहले से ही भक्ति भाव में डूब लेते हैं।

0: कार्यक्रम हमारा जारी है लेकिन अब अंत की तरफ है, कुल मिलाकर के समापन की तरफ है। और लेकिन आपको ये भी बता दें कि फार्म टू सिटी हमारा एक कार्यक्रम जाता है जो कि छत्तर फूल लगाएं बाग बगीचों की बात होती है, जो कि 13 सितंबर मतलब आज शाम 5:30 से 6 बजे आप सुन सकेंगी FM रेनबो पर।
1: और इसके साथ साथ हम ये भी बताते कि जो हमारा कार्यक्रम आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और बहनों ये तो आपका अपना स्वयं का कार्यक्रम है, तो ये जो कार्यक्रम है इसके प्रस्तुत करता है तुषार पाराशर और संयोजक है शिवनंदन लाल।
0: और फीडबैक भी बताना बहुत जरूरी है, आपका ईमेल का पता feedback@fnh@gmail.com। अगर आप पत्राचार करना चाहती हैं तो पत्र का पता आप लिख लें, कृषि एवं गृहकांश कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली, पिन कोड है 110001। और आपको बता दें कमलेश की शाम का भी एक प्रोग्राम और होता है हमारा इंद्रप्रस्थ से जाता है लोक रंजनी कार्यक्रम 5:10 से 5:20 तक और 5:30 तक, और साथ ही साथ हमारा 6:30 से 7 बजे तक कृषि जगत और ग्राम संसार कार्यक्रम भी जाता है, कुल मिलाकर 7:30 बजे तक। तो 6:30 से 7:30 का भी कार्यक्रम आप अवश्य सुनिएगा।
1: और इसके साथ ही जो है अब घड़ी हमें ये कह रही है कि अब हमने अपनी बहनों को राम राम भी कहना है।
0: बिल्कुल, बहनों को राम राम कहना है, अगले कार्यक्रम का हमारी बहनें इंतजार करें। तो अब चलते हैं, बहनों को कहते हैं बहनों
1: राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
2: इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
2: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
1: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
2: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर

0: के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
1: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले 3 दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दोपहर के 1:10 और 14 सेकंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इसर और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जहां हम याद करते हैं उस दौर को, उन कलाकारों को, उन गीतों को और उन कहानियों को जो हमारे दिल में आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। आज की फिल्म थोड़ी अलग है। इसमें है दोस्ती, प्यार, भाईचारा, अपराध की दुनिया, अन्याय के खिलाफ आवाज़ और एक ऐसे नौजवान की कहानी जो परिस्थितियों से हार कर भी जी रहा था, लेकिन एक दिन उसी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी फिल्म है वर्ष 1998 की फिल्म गुलाम। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे आमिर खान और रानी मुखर्जी और साथ में शरद सक्सेना, दीपक तिजोरी, रजित कपूर और अक्षय आनंद जैसे कलाकार। फिल्म का निर्देशन किया था विक्रम भट्ट ने, निर्माता थे मुकेश भट्ट और फिल्म के गीतों का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार जोड़ी जतिन ललित ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का प्यारा सा गीत जिसे गाया है कुमार सानू ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत प्रेम की उस मासूमियत को सामने लाता है जहां कभी कभी शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ आंखें ही बहुत कुछ कह जाती हैं। तो दोस्तों, संगीत से निकलकर चलते हैं कहानी की तरफ। मुंबई की गलियों में रहता है एक नौजवान सिद्धार्थ मराठे, प्यार से सब उसे कहते हैं सिद्धू। सिद्धू बॉक्सिंग करता है, उसमें दम है, जोश है, लेकिन जिंदगी को लेकर कोई खास दिशा नहीं है। दोस्तों के साथ घूमता है और सबसे बड़ी बात, वो अपने बड़े भाई जय के प्रभाव में है। जय एक ताकतवर गैंगस्टर रोनी सिंह के लिए काम करता है। रोनी सिंह का पूरे इलाके में दबदबा है और सिद्धू भी धीरे धीरे इसी दुनिया के करीब पहुंच जाता है।

लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आती है अलीशा। कहानी को देते हैं थोड़ा विराम और सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

गीत के बाद फिल्म गुलाम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अलीशा और सिद्धू की मुलाकातें बढ़ती हैं, दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उधर अलीशा का भाई हरी एक समाज सेवी है और वो रोनी के आतंक के खिलाफ आवाज उठा रहा है। हरी चाहता है कि लोग डरना छोड़ें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें, लेकिन रोनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्या है वो मोड़, ये जानेंगे इस प्यारे से गीत के बाद। इस गीत को आवाजें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अपने पसंदीदा इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।
1: Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज के इस प्रोग्राम एक ही

फिल्म से में मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इसर और हमारी आज की फिल्म है गुलाम। आपको ये फिल्म कैसी लगी इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ipradiodelhi@gmail.com। हमें आपके मेल्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सिद्धू और अलीशा की प्रेम कहानी फिल्म को एक भावनात्मक रंग देती है। एक तरफ सिद्धू है जो अपराध की दुनिया के बहुत करीब है और दूसरी तरफ अलीशा है जो चाहती है कि सिद्धू अपनी जिंदगी बदले। लेकिन तभी कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। सिद्धू अनजाने में हरी को ऐसी जगह पहुंचाता है जहां रोनी और उसके आदमी हरी का इंतजार कर रहे होते हैं। हरी की हत्या हो जाती है। सिद्धू को अपनी गलती का एहसास होता है लेकिन वो रोनी के खिलाफ गवाही देने से डरता है क्योंकि वो अपने भाई जय के प्रति वफादार और परिवार के रिश्तों में बंधा हुआ है। यही फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है और इसी भावनात्मक कहानी के बीच आता है एक और खूबसूरत गीत।

0: इस भावनात्मक गीत के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सिद्धू को धीरे धीरे एहसास होता है कि जिस रास्ते पर उसका भाई जय चल रहा है वो रास्ता सही नहीं है, और तभी उसकी जिंदगी में एक और बड़ा दुख आता है। रोनी उसके भाई जय की भी हत्या कर देता है। ये घटना सिद्धू को पूरी तरह बदल देती है। वो रोनी के खिलाफ अदालत में गवाही देता है। जो लोग इतने समय से चुप थे वो अब आवाज उठाने लगते हैं। रोनी और उसके साथी वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं और यही सिद्धू का सफर पूरा होता है, एक लापरवाह नौजवान से एक साहसी इंसान तक का। तो लेते हैं एक छोटा सा थोड़ा सा विराम देती हूँ मैं अपनी वाणी को, और यहाँ पर हम अपने श्रोताओं की मेल शामिल करना चाहूँगी। तो ये मेल हमें मिला है राधेश्याम देवांगन का। ये इन्होंने मेल हमें भेजा है भवरपुर बसना से। इनके साथ है चंपा, राधेश्याम और राजू देवांगन, इनके परिवार के अन्य सदस्य। इनको हमारी आज की फिल्म की कहानी और गीत पसंद आ रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगला मेल हमें मिला है बिट्टू गंगनेजा का, जलालाबाद वेस्ट से। एक और मेल हमें मिला है इशक मोहम्मद, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगोली से। अगला मेल है अनिल मोहन, राजकुमार डूडी, गांव फरासी जिला हिसार से। निसार अली, जगन साजन जंगरा, ये हमें मेल मिला है गांव नलोई, तहसील सिवानी मंडी, जिला हिसार हरियाणा से। इन सभी को हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगला मेल मैं लेना चाहूंगी फारूक अली खान का, और इनके साथ है भूषण खेड़ा। ये मेल हमें भेजा है फाजिलका पंजाब खेड़ा, और इन्होंने खेड़ा परिवार के सभी सदस्यों ने हमें यह मेल भेजा है। अगला मेल है पी एस नावकर जी का, शानदार प्रस्तुति के साथ बहुत ही बेहतरीन गीत, उम्दा जानकारी, आपका धन्यवाद। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद हमारा प्रोग्राम इतने ध्यान से सुनने के लिए। ये मेल हमें मिला है नरवेल महाराष्ट्र से, और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें यह मेल भेजा है। अगला मेल मैं शामिल करना चाहूंगी धर्मेंद्र छिप्पा जी का। एक और मेल हमें मिला है रोहित वशिष्ठ, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद। एक और मेल मैं लेना चाहूंगी उषा मोहन ने हमें ये मेल भेजा है पीटीआई संसद मार्ग से। आप हमारी बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुति के लिए, धन्यवाद, आपका तहे दिल से। तो आप हमें ऐसा ही मेल भेजते रहिए, हमारे आपकी मेल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आइए आपको मैं एक बहुत ही उम्दा जानकारी दे दूं कि इस फिल्म में एक सीन बहुत ही चर्चित सीन था। आमिर खान रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं और सामने से तेज ट्रेन आती है। ये दृश्य देखकर दर्शकों की सांसें थम जाती हैं, और सबसे रोमांचक बात यह है कि ये स्टंट आमिर खान ने खुद किया था। ट्रेन और आमिर खान के बीच का अंतर बेहद कम था, और ये सीन इतना प्रभावशाली रहा कि 40वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे बेस्ट सीन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, और इसके साथ इन्हें और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले। तो चलते चलते इस फिल्म का बहुत ही फेमस गाना मैं आपको बहुत ही चर्चित गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगी। आमिर खान और अलका याग्निक की आवाज में।
1: ए, क्या बोलती तू

0: गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या।
1: दोस्तों, गुलाम फिल्म सिर्फ दर्शकों को पसंद ही नहीं आई बल्कि पुरस्कारों में भी इसकी अच्छी उपस्थिति रही। 40वें फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म को 6 नॉमिनेशंस मिले। इसमें शामिल थे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट विलन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और बेस्ट सीन ऑफ द ईयर। तो इसी के साथ अपनी दोस्त नंदा इसर को अनुमति दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
2: क्या बोलती तू?
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
3: आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं यादविंदर सिंह तुम्हें सुनो बुलेटिन दिया खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं चुनौतियां दी समय सिर पछाण करन, उन्हां लई पहलां तों तैयार रहण ते तुरंत कार्रवाई करन दी लोड़ ते जोर दित्ता है। ब्रिक्स देशां ने गल्लबात, सलाह मशवरे ते कूटनीतिक प्रक्रिया राहीं अंतरराष्ट्रीय विवादां नूं शांतमई ढंग नाल हल करन प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। विश्व सेहत संगठन WHO ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दौरान ब्रिक्स देशों वालों अपनाए गए नए दिल्ली ऐलाननामे की शलाघा की है। राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन NHRC कल तो विकासशील देशों लई मनुखी अधिकार बारे 6 दिनों के समर्था निर्माण प्रोग्राम की शुरुआत करेगा। औरतों ने 2020 एशिया कप क्रिकेट फाइनल च अज रात 8 बजे भारत का मुकाबला श्रीलंका न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कहा है कि महामारियां, जलवायु आफतां अते सप्लाई लड़ी च विघन ने यह साबित कर दिता है कि अज भी आपस च जुड़ी हुई दुनिया विच कोई भी संकट सिर्फ एक खत्ते तक सीमित नहीं रहिंदा। नई दिल्ली के भारत मंडपम च ब्रिक्स शिखर सम्मेलन च अज दूजे ते आखरी दिन स्वागत में संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि इसे लई ब्रिक्स देशों ने समूह के अंदर लचकीलापन अते संकटों नाल निजुटण दी समर्था नूं वधाउण ते खास जोर दिता है। लचकीलापन, नवीनता, सहयोग ते स्थिरता लई निर्माण विषय ते एक समागम च प्रधानमंत्री ने चुनौतियां दी समें सिर पछाण करन, उन्हां लई पहलां तों तैयारी करन अते तुरंत कार्रवाई करन दी लोड़ ते जोर दिता। उन्हां दस्सिआ कि छोट दीआं बीमारियां दी रोकथाम ते प्रबंधन लई ब्रिक्स एकीकृत शुरुआती चेतावनी प्रणाली उत्ते सहमति बन गई है। श्री मोदी ने कहा कि आफत प्रबंध लई शुरुआती चेतावनी डाटा एकीकरण दिशा निर्देश भी तैयार कर लिए गए ने।
4: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रेजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
3: प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि तकनालोजी और महत्वपूर्ण खनिजा के हथियारों की तरह वरतों तरक्की एक महत्वपूर्ण रुकावट पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नवी तकनालोजियों को अपनाने समावेश उत्ते खास जोर दिता है। इस तो अलावा ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की असल जरूरतों मुताबिक AI, जियो पोलिटिकल तकनालोजी और डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचे को ढाल के किसानों के लिए नवे मौके पैदा करेगा।
4: ब्रिक्स नेटवर्क और डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के करप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए एक ब्रिक्स एमएस

पोर्टल स्थापित करने की पहल करने की तजवीज भी रखी गई है। ब्रिक्स देशों ने गलबात सलाह मशवरे के कूटनीतिक यत्नों राही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति ढंग नाल हल करने प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। इन्होंने पश्चिमी एशिया च वधदे तनाव ते चिंता प्रगटाई और वक्त व संजम वर्तन के नाल नाल अजिहियां कार्रवाइयां तों बचन का सद्दा दिता है जो हालात होर बिगाड़ सकदियां हन। विश्व सेहत संगठन WHO ने ब्रिक्स सम्मेलन 2026 दौरान ब्रिक्स देशों वालों अपनाए गए नई दिल्ली ऐलाननामे की शलाघा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विश्व सेहत संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस ने समझौते की विश्वव्यापी सेहत कवरेज प्रति वचनबद्धता, सेहत प्रणालियों मजबूत करना, विज्ञानियों के खोजों रोगाणुओं और उन्होंने जेनेटिक डेटा तक पहुंच कर सफल सिक्के की शलाघा की। श्री घेब्रेयेसस ने तपतिक को खत्म कर सेहत कार्यबल को मजबूत कर डिजिटल सेहत और रवायती दवाइयों एकीकृत कर सारे लिए सेहत संभाल प्रदान करने ब्रिक्स देशों के यत्नों की शलाघा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में ईरान के आर्थिक मामलों बारे मंत्री सैयद अली मदनीजादे नाल मुलाकात की। मुलाकात दौरान श्रीमती सीतारमन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की शमूलियत और वित्तीय मामलों नाल संबंधित विचार वटांदरे च उसारे योगदान लिए ईरान का धन्यवाद किया। खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR_RNU_जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR_जलंधर और यूट्यूब पर साडा चैनल है @AIR_जलंधर। राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमिशन NHRC वालों कल तो विकासशील देशों लिए मनुखी अधिकारों बारे 6 दिन के समर्थन निर्माण प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग ITAC तहत और विदेश मंत्रालय के सहयोग नाल करवाए जा रहे इस प्रोग्राम में वख वख देशों के मनुखी अधिकार संस्थानों के सीनियर अधिकारी हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम 19 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्घाटन NHRC के चेयरमैन जस्टिस वी सुब्रमणियन करेंगे। कमिशन ने कहा है कि प्रोग्राम का उद्देश्य मनुखी अधिकार संस्थावां की समर्थता मजबूत करना और बेहतर कार्य प्रणालियों संबंधी तजर्बे सांझे करना है। खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल देश भर लखपति दीदियां स्वय सहायता समूह औरतां और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभपात्रियों वर्चुअली गलबात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि इन औरतों ने लखपति बनके मजबूतीकरण की मिसाल कायम की है। श्री चौहान ने उन्होंने सख्त मेहनत और आत्मविश्वास उत्ते खुशी प्रगटाई। श्री चौहान ने कहा कि सरकार इन औरतों को करोड़पति देवियां बनाने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज आजादी संग्रामी जितेंद्र नाथ दास की बरसी मौके उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि जितेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही बरतानवी हुकूमत विरुद्ध संघर्ष का राह चुन लिया। उन्होंने जेल तकलीफा भी हौसला खत्म नहीं कर सकिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जेल में आजादी संग्रामियों नाल कीते जांदे आम मनुखी विहार के विरोध में कीती गई भुख हड़ताल देशभक्ति बराबरी की विलखण मिसाल रही है। अमरीका ने नेपाल में हर पीड़ित की पछाण करने में मदद करने के लिए 10 लाख डॉलर की वाधू राशि मंजूर की है। इस प्रवानगी नाल नेपाल में आफत राहत लिए अमरीकी विदेश विभाग की सहायता 50 लाख डॉलर तो वध हो गई है। नई फंडिंग नेपाल पुलिस में फोरेंसिक सहायता प्रदान करेगी। विदेश विभाग के अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स उत्ते कानून लागू करने वाले मामले के ब्यूरो ने नेपाल सरकार को पीड़ित की पछाण करने में मदद करने के लिए इस सहायता को मंजूरी दी है। अमरीकी अधिकारी डीएम ने विश्लेषण किटा समेत सब तो जरूरी वस्तुओं का मुलांकन करने लिए नेपाल पुलिस नाल रल के काम कर रहे हैं। यह सहायता हर पीड़ित लिए भोजन, सेहत संभाल और होर राहत उपायों का समर्थन करने लिए प्रदान की जा रही है। इस दौरान नेपाल च हड़ा कारण मरने वाले की गिनती 1386 हो गई है। औरतों के 2020 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल च अज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका नाल होगा। यह मैच भारतीय समय मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने सैमीफाइनल च बंगलादेश में 40 दौड़ा में हराया। 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम अपने सारे मैच जीत के ग्रुप ए में चोटी पर रही। खबर एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधन करदिया चुनौतियों की समय सिर पछाण कर उन्होंने पहले तो तैयार रहने और तुरंत

0: कार्रवाई करने की लोड़ से जोर दिता है। ब्रिक्स देशों ने गलबात सलाह मशवरे कोर्ट में तक लफड़ा रहे अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतमय ढंग से हल करने प्रति वचनबद्धता दोहराई है। विश्व सेहत संगठन WHO ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दौरान ब्रिक्स देशों वालों अपनाए गए नवी दिल्ली ऐलाननामे की शलाघा की है। राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन MHRC कल तो विकासशील देशों लिए मनुखी अधिकारों बारे 6 दिनों की समर्थन निर्माण प्रोग्राम की शुरुआत करेगा। औरतों के 2020 एशिया कप क्रिकेट फाइनल अज रात 8 बजे भारत का मुकाबला श्रीलंका होगा। बुलेटिन खत्म होता है। प्रादेशिक खबरों का अगला बुलेटिन शाम 6:20 का होगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के मुल्कों के एतमाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ तंबीह की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर कजाखिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और ब्रुंडी के सुदूर के साथ दो तरफा बातचीत करने वाले हैं। भारतीय रेलवेज में अगस्त के महीने में बारबरदारी के एतबार से सालाना बुनियाद पर 5.4% की शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। गुजरात के उकाई खित्ते में 11 इंच से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत के कई जुनूबी ज़िलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंडोनेशिया में 240 से ज़्यादा अफराद को ले जाने वाला एक बहरी जहाज़ उलट गया। तकरीबन 140 मुसाफिर और अमले के अहलकार लापता बताए गए हैं। और ख्वातीन क्रिकेट में आज दुबई में T20 एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी सतह पर वबाई बीमारियों, आबोहवा की तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात और सप्लाई निज़ाम में रुकावटों से ये जाहिर हो गया है कि एक दूसरे से मुंसलिक आज की दुनिया में कोई भी बुहरान किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं रहता। जनाब मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के खुले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ब्रिक्स मुल्कों ने इसीलिए ग्रुप के अंदर मजबूती बढ़ाए जाने पर खास जोर दिया है। मजबूती, इख्तरा, ताउन और पायदार तरक्की के मौजू पर इजलास में जनाब मोदी ने चैलेंजों की बरवक्त निशानदेही, इसके लिए तैयारी और फौरी कार्रवाई किए जाने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतादी बीमारियों की रोकथाम और इस सिलसिले में इकदाम करने के लिए ब्रिक्स के मरबूत पेश आगाही निज़ाम के बारे में इतफाक राय कायम हो गया है। जनाब मोदी ने कहा कि कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए पेश आगाही से मुतालिक डेटा को मरबूत करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत मुरतब किए गए हैं।
2: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इंफेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पांस के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
1: जनाब मोदी ने ये तंबीह की कि टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से तरक्की के रास्ते में रुकावट पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों ने टेक्नोलॉजी इख्तियार करने में सबकी शमूलियत पर जोर दिया है।
2: टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: जनाब मोदी ने कहा कि स्मार्ट ग्रिड और तवानाई के स्टोरेज के लिए उम्दा कारकर्दगी से मुतालिक एक ब्रिक्स डिजिटल सेंटर कायम किया गया है, जिससे माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के निज़ाम को और ज़्यादा भरोसेमंद, मौसर और ज़्यादा काबिल रसाई बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स ग्रुप में निकाले गए हल्के फ़ायदे ग्लोबल साउथ की ज़रूरियात पूरी करने की खातिर दस्तियाब कराए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि ब्रिक्स लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ताउन फ्रेमवर्क

0: से सप्लाई निजाम को और ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाने में मदद मिलेगी। इख्तरा के मरबूत निजाम के तहत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क स्टार्टअप इदारों और इंक्यूबेटर्स को बाहम मुंसलिक करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भी मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें कर रहे हैं। इनमें कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायफ, फिलीपींस के सदर फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा और ब्रुंडी के सदर वारिस्ट नदाई शिमिये शामिल हैं। जनाब मोदी नाइजीरिया के नायब सदर कासिम शेटिमा और युगांडा के नायब सदर जेसिका अलूपो के साथ भी दो तरफा बातचीत करने वाले हैं। ब्रिक्स रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर में अप्रैल 2025 के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में 26 अफराद मारे गए थे जबकि कई जख्मी हुए थे। एक मुश्तरका बयान में ब्रिक्स रहनुमाओं ने दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार करने की अपील की और हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का इरादा किया। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के पहले दिन इत्तेफाक़ी राय से मंजूर किए गए नई दिल्ली ऐलामिया में कहा गया है कि हर तरह की दहशतगर्दी मुजरिम माना अमल है और इसे किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता, खा इसका मकसद कुछ भी हो और खा किसी ने भी यह हरकत की हो। मुश्तरका ऐलामिया में मगरबी एशिया में लगातार कशीदगी बढ़ने पर भी तशवीश का इजहार किया गया है और जहां तक हो सके जब्त तहमुल बरतने की अपील की गई है और ऐसी कार्रवाई से गुरेज करने पर जोर दिया गया है जिससे हालात मजीद बिगड़ सकते हों। आलमी सेहत तंजीम WHO ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मुल्कों की जानिब से नई दिल्ली ऐलामिया मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम गेब्रेसिस ने सभी को सेहत से मुतालिक सहूलियात फराहम करने, मजबूत सेहत निज़ाम और पैथोजेन रसाई के बारे में मुज़ाकरात कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर होने के ताल्लुक से अहद की सताइश की है। जनाब गेब्रेसिस ने तपेदिक यानी TB के खात्मे, सेहत से मुतालिक अफरादी कुव्वत को मुस्तहकम बनाने, डिजिटल हेल्थ है और सभी के लिए सेहत की खातिर ब्रिक्स मुल्कों की कोशिशों को भी सराहा। WHO के डायरेक्टर जनरल ने सरबराह मीटिंग में गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तई तशक्कुर का इजहार भी किया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में ईरान के इक्तसादी और मालियाती उमूर के वज़ीर सैयद अली मदनी ज़ादे से मुलाकात की। मोहतरमा सीतारमन ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत और फाइनेंस ट्रैक में बातचीत में सरगर्मी से शिरकत के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रेलवेज में अगस्त के महीने में बारबरदारी के एतबार से सालाना बुनियाद पर 5.4% की शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। इस साल अगस्त के महीने में 13,79,00,000 टन सामान की बारबरदारी रिकॉर्ड की गई जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 13,09,00,000 टन थी। रेलवे की वजारत ने कहा है कि इससे भारतीय रेलवेज के बारबरदारी के कारोबार को लगातार तकवीत मिलने की अक्कासी होती है। वजारत ने कहा है कि पिछले महीने 5 नए गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल में कामकाज शुरू हो गया है। इस तरह 31 अगस्त तक मजमूई तौर पर 149 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल काम करने लगे थे। भारतीय मौसमियात महकमे ने गुजरात के कई हिस्सों खासतौर पर जनूबी खित्ते में इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मानसून की मूसलाधार बारिश फिर से होने से जिंदगी के मामूलात मुतासिर हुए हैं। रियासत के 193 ताल्लुकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। तापी ज़िले के उकाई खित्ते में सबसे ज़्यादा बारिश होने की इत्तला मिली है। वहाँ 11 इंच से ज़्यादा बारिश होने से पानी भर गया है। इंडोनेशिया में जावा के समुद्र में खराब मौसम के तनाजुर में 240 से ज्यादा अफराद को ले जाने वाला एक बहरी जहाज उलट गया। तकरीबन 140 मुसाफिर और अमले के अहलकार लापता बताए गए हैं। इमदादी कारकुनों के मुताबिक कम से कम 102 अफराद को बचाया गया है और तलाश की कार्रवाई जारी है। ख्वातीन के T20 एशिया कप क्रिकेट में के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है। मर्दों की क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के मुल्कों के एतमाद में इजाफा हुआ है। वजीर आजम ने टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ तंबीह की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और ब्रुंडी के सुदूर के साथ दो तरफा बातचीत करने वाले हैं। भारतीय रेलवेज में अगस्त के महीने में बारबरदारी के एतबार से सालाना बुनियाद पर 5.4% की शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। गुजरात के उकाई खित्ते में 11 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इंडोनेशिया में 240 से ज्यादा अफराद को ले जाने वाला एक बहरी जहाज उलट गया। और खवातीन क्रिकेट में आज दुबई में T20 एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister says trust of Global South nations grown in BRICS, warns against weaponization of technology and critical minerals. Prime Minister Modi holds bilateral meetings with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi on the sidelines of the BRICS summit. Indian Railways records 5.4% year-on-year growth in freight loading in August 2026. Gujarat's Ukai region records over 11 inches of rain, red alert issued across several southern districts of the state. In Indonesia, around 140 passengers and crew missing after ferry carrying more than 240 people overturned today. And in women's cricket, India to face defending champions Sri Lanka in the finals of the T20 Asia Cup in Dubai today. Prime Minister Narendra Modi today noted that the trust of the Global South nations in BRICS has grown because the voices are heard and the experiences are respected. He opined that the strength of BRICS lies in diversity and cooperation. Addressing the open session of the BRICS summit at Bharat Mandapam in New Delhi, Mr. Modi said pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Mr. Modi said BRICS nations have therefore placed special emphasis on enhancing resilience among the grouping.
2: Aaj ke interconnected world mein कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइंस तैयार की गई है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉशन दैट वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल मिनरल्स कैन बिकम अ हर्डल फॉर प्रोग्रेस। ही सेड ब्रिक्स नेशंस हैव स्ट्रेस्ड ऑन इंक्लूसिविटी इन अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: Prime Minister Modi further stated that an initiative has been proposed to establish the BRICS MSME Cooperation Portal to connect small enterprises with knowledge, finance and new markets. Mr. Modi said they have set up a BRICS Digital Center of Excellence for smart grids and energy storage, which will help make clean energy systems more reliable, efficient and accessible. Prime Minister said that the benefits of solutions developed within BRICS should be made adaptable and accessible to meet the needs of the Global South. Mr. Modi further stated that the BRICS Logistics Supply Chain Cooperation Framework will help make supply chains more reliable and resilient. Under the umbrella of innovation, the BRICS Incubator Network will connect startups and incubators. Prime Minister said India has proposed the BRICS Startup Innovation Fund to promote innovative and scalable solutions. He added that the BRICS Network on Digital Agriculture will create new opportunities for farmers. Through this initiative, AI, geospatial technology and digital public infrastructure will be aligned with the actual needs of farmers. Now we go over live to our correspondent Anupam, who is at the Bharat Mandapam. Anupam, how significant is the BRICS summit for India and how could the outcomes shape the country's global role and strategic priorities?
3: Yes, Shek, during the 2020 BRICS and the Delhi summit under the theme Building for Resilience, Innovation,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज के परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद है। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
0: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिये संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
0: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
0: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत

0: भी है।
1: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है। और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 के तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
3: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
2: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गयी। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी।

0: और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार, और कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार।

और आज के हमारे कलाकार हैं जाने माने सिंगर पार्श्व गायक विनोद राठौर, जो कि हिंदी सिनेमा में यानी बॉलीवुड में अपने बेहतरीन 90 के दशक के गीतों के लिए जाने जाते हैं।

दोस्तों, विनोद राठौर साहब ने रोमांटिक गानों से लेकर थिरकने वाले हाई एनर्जी तक के गानों में अपनी आवाज दी है और ऐसा ही एक गाना अभी आप सुन रहे हैं फिल्म दीवाना से।

दोस्तों, विनोद राठौर साहब का जन्म 12 सितंबर 1962 को हुआ था और उनके पिता जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित चतुर्भुज राठौर थे और 1990 के दशक के अलावा 2000 के शुरुआती वर्षों में भी विनोद राठौर साहब ने बॉलीवुड को कई सदाबहार और सुपरहिट गाने दिए हैं।

जी हाँ दोस्तों, उनकी आवाज का ऐसा अंदाज जो हम सभी के दिलों को छू जाता है। दरअसल उनकी आवाज की खासियत यही थी कि वो सिर्फ गाना गाते नहीं थे बल्कि गाने के किरदार को ही आवाज दे देते थे। दरअसल कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते, बस हमारी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन उन गानों की यादें और उनसे जुड़ी बातें हमेशा तरोताजा रहती है। तो दोस्तों एक ऐसा ही गाना और सुनवा रहे हैं विनोद राठौर साहब की आवाज में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ।

विनोद राठौर साहब के करियर की शुरुआत अप्रैल 1986 में हुई थी, जब उषा खन्ना ने एक कैसेट में उनकी आवाज सुनकर उन्हें फिल्म दो यार के लिए एक कव्वाली थी जिसके बोल थे, मेरे दिल में है अंधेरा कोई शमा तो जला दे, इस गाने का निमंत्रण दिया और इस गाने में उनके सह गायक थे मोहम्मद अजीज साहब।

दोस्तों, विनोद राठौर साहब को 1992 में असली सफलता मिली जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा, इस फिल्म के लिए रोमियो नाम मेरा ये गीत गाने का ऑफर दिया। और ये फिल्म तो उतना हिट नहीं हो पाई, लेकिन 1992 में रिलीज हुई ये इस फिल्म से विनोद राठौर साहब का गाना रोमियो नाम मेरा ये लोगों के जुबां पर चढ़ गया था। तो आइए आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं रूप की रानी चोरों का राजा, इस फिल्म से विनोद राठौर साहब की आवाज में ये प्यारा सा नगमा।

और इस फिल्म के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने उन्हें और भी कई फिल्मों के लिए बुलाया, जिसमें कि विनोद राठौर साहब का आत्मविश्वास और बढ़ गया। इसी बीच उन्होंने अनु मलिक, बप्पी लाहिड़ी और आनंद मिलिंद जैसे अन्य संगीतकारों के साथ भी काम किया।

साल 1993, ये वो दौर था जब विनोद राठौर साहब बहुत व्यस्त हो गए थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें फिल्म बेदर्दी, दिलबर और कई अन्य फिल्मों में गाने का मौका मिला और इस तरह से अनु मलिक ने 1993-94 के अंत तक नदीम श्रवण को भी पीछे छोड़ दिया था और विनोद राठौर साहब से बहुत सारी गाने गवाए, जिनमें से प्रमुख हैं ऐ मेरे हमसफर, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, छुपाना भी नहीं आता, जो गाना अभी मैंने आपको सुनाया, बाजीगर, लाडला, ऐलान, अग्नि साक्षी, मोहब्बत की आरजू, चाहूंगा मैं तुझे, गैम्बलर, परंपरा, द जेंटलमैन, जमाना दीवाना, श्रीमान आशिक, मैदाने जंग, पुलिस वाला गुंडा, हम सब चोर हैं, चाहत और ऐसी बहुत सी फिल्में आईं। इसके बाद गोविंदा की कई फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी, जिनमें से नाम है राजा बाबू, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, अखियों से गोली मारे और बनारसी बाबू।

दोस्तों, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। एक फिल्म आई थी संजय दत्त साहब की खलनायक, जो अपने जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी, और इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग को भी आवाज विनोद राठौर साहब ने दी थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें विनोद राठौर साहब ने अपनी सुरमई आवाज दी। उन्होंने लगभग 320 से ज्यादा फिल्मों में 3,500 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी। गोविंदा की बात हो या फिर शाहरुख खान की, सभी की आवाज बनने वाले विनोद राठौर साहब बेहद ही लोकप्रिय रहे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको शाहरुख खान स्टारर फिल्म दीवाना से एक ऐसा गाना सुनाते हैं जो विनोद राठौर साहब की आवाज में है, और सच में उनकी आवाज की दीवानगी देखी नहीं है कहीं।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। वेडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का मैसेज आया है और उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की तारीफ की है। बहुत बहुत धन्यवाद।

विनोद राठौर साहब के साथ आवाज दी है अलका याग्निक ने भी इस सुपर डुपर हिट फिल्म दीवाना से।

और दोस्तों महाराष्ट्र से दो मैसेज हमारे पास आए हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस न्यायकर निर्मला और विशाल का, और एक और मैसेज आया है मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले सोपान ताइडे आशीष मुन्हेकर, और इन्होंने लिखा है कि बहुत ही शानदार प्रस्तुति के साथ ही बेहतरीन दिल को छू जाने वाले गाने सुनने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

पहाड़गंज मुल्तानी ढाडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का भी संदेश आया है और उन्होंने लिखा है, नमस्कार जी, शानदार प्रस्तुति के लिए हमारी बधाई स्वीकार करें, कार्यक्रम बेहद ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनोद राठौर साहब के पिता पंडित चतुर्भुज राठौर भी एक जाने माने शास्त्रीय संगीत के दिग्गज थे। विनोद ने अपने भाई रूप कुमार राठौर के साथ पिता से ही संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की थी। इसके बाद विनोद ने अपने भाई के साथ फिल्मों में संगीत देने का सपना देखा और आ गए माया नगरी मुंबई। यहां से शुरू हुआ उनके संघर्ष का सफर, जो कि चलते चलते संघर्ष से सफलता के सफर में बदल गया। और आपने देखा कि विनोद राठौर साहब ने सभी बड़े फिल्मी सितारों के लिए गाने गाए हैं, चाहे संजय दत्त हों, गोविंदा हों या फिर शाहरुख खान। तो अभी हमने आपको जो गाना सुनवाया है वो शाहरुख खान साहब की फिल्म का था, और अब आपको हमारे बॉलीवुड के राजा बाबू, हीरो नंबर वन यानी गोविंदा की फिल्म राजा बाबू से एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनवा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।

भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल ईशान और पूजा परिहार का संदेश आया है और इन्होंने लिखा है कि आज आप मशहूर पार्श्व गायक विनोद राठौर साहब के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं और साथ ही उनकी फिल्मों के गाने भी सुनवा रहे हैं जो हमें बेहद पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़े से और विनोद खड़े से का मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है कि यार आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम बेहद अच्छा लग रहा है। आप विनोद राठौर साहब के फिल्मी सफ़र, उनके सिंगिंग करियर और अन्य किस्से सुना रहे हैं, उनकी फिल्मों के गाने भी सुनवा रहे हैं तो हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम को सुनते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए।

जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवागोप, प्रेमगोप, कपिलगोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपांकर का भी संदेश हमें मिल चुका है।

गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगिल, दलजी सिंगिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह का भी मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है कि हमारे नाम को ज़रूर शामिल करें। तो जी कर लिया। आप हमारे इस कार्यक्रम को ऐसे ही सुनते रहिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी के साथ। और आज के हमारे कलाकार हैं जाने माने गायक विनोद राठौर साहब। उन्होंने गीत संगीत की दुनिया में बहुत सारे सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शक्तिमान के थीम गाने को भी विनोद राठौर साहब ने ही अपनी आवाज दी है। और इसके अलावा विनोद राठौर साहब के बारे में और भी कुछ बताएं, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं फिल्म मोहब्बत से विनोद राठौर साहब के आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: अरुणेश भाई नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल, मैं बिंदास हूँ, मस्त हूँ। उम्मीद है कि आप भी मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। और ये संदेश लिखा है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर ने।

दोस्तों, किशोर कुमार साहब से विनोद राठौर जी बेहद प्रभावित रहे हैं और किशोर कुमार साहब की विरासत के प्रति उन्होंने हमेशा सम्मान जताया है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूं कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो खंडवा मध्य प्रदेश में हो। आपको बता दें कि किशोर कुमार साहब का जन्म खंडवा में ही हुआ था और विनोद राठौर साहब को गायन के फील्ड में बहुत अच्छा योगदान देने के लिए किशोर गौरव सम्मान से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ आप अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत, फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम और हमारा ये चैनल आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। नमस्कार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनबे बारे हमारे सभी प्यारे भैया बहनान को चंपा बहन
1: और श्रुतिपुरी की
0: राधे राधे। बहन श्रुति देखो, बरसाने को जो विश्वविख्यात मेलो है राधाष्टमी को, ये बड़ो ऐतिहासिक मेलो है। हाँ। और ये ब्रज धारा में आए रहे हो।
1: हाँ बहन चंपा, ये ब्रज को लक्खी मेला है और प्रशासनिक स्तर पे यहाँ की तैयारी बड़े स्तर पर शुरू हो चुकी है।
0: बहन श्रुति सही कह रही हो, या मेले को ना प्रशासन के द्वारा जोन, सुपर जोन और सेक्टर अन में बांट के ना, जो श्रद्धालु उनकी अपार भीड़ आवे, मतलब कोई असुविधा ना हो, या के कहा जाए भी ना प्रशासन पूरी तरह से बड़ो चाक चौबंद रहे।
1: प्रशासन के द्वारा या मेले को राजकीय मेले को दर्जा मिल चुके है। और बहन चंपा, बरसाना एवे वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते भए शहर में प्रवेश के और निकास के अलग अलग द्वार बनाए गए हैं।
0: और जी श्रुति, प्रशासन के संग जो सेवायत गोस्वामी है ना, बेबिया मेले की जो परंपरागत तैयारी है ना, उनमें लगे भए हैं।
1: हाँ बहन, लगे चौना भए, वृषभानु की पौर पे महामंगल की बेला जो आ रही है।
0: तो आप जाओगी का?
1: और का, नहीं जाऊंगी का?
0: हाँ हाँ, नेग न्योछावन मिलेंगे, मुक्ता माणिक मोती मिलेंगे, धोती फरिया लूटेंगी।
1: हम तो खूब झोरी भर भर के लेके आवेंगे।
0: हाँ सही कह रही हो, तो बा में तो एक आध हमको भी दे दीजो।
1: हाँ बिल्कुल मिलेंगे।
0: बहन श्रुति, जो आप ये मंगल महाभिषेक की बोल रही हो ना, तो कीरत नंदिनी के जन्म पे ना देखो, या अभिषेक में घंटा घड़ियाल बजेंगे, मंगल शहनाई बजेंगी, उनके संग जो झांज ढप ढोल है, उनकी जो मंगल ध्वनि है ना, बाकी संग या मेले को ना आनंद कछु और होएगो।
1: और देखो, दूध दही इत्र शहद बूरो ते बूरा जो हो ना,
0: हाँ।
1: बात है वृषभानु नंदिनी को महाभिषेक होएगो।
0: फिर तो बहन श्रुति यही बात हुई, बरसाने बजी बधाई, कीरत ने कन्या जाई।

0: तो प्यारी भैया बहनाओं, ये राधा रानी को समर्पित ये मनभावन सा लोकगीत अभैया आप सुन रहे हते। मैं श्रुति, देखो कि ये मेलो ना अपने आप में इतना विलक्षण है कि या मेले थे ना जो बूढ़ी लीरान को महाम उत्सव है ब्रज धरा में, बाकी भी जो पारंपरिक शुरुआत है ना वो भी है जावे है।
1: हाँ, और देखो चंपा बहन, बूढ़ी लीला तो 10 दिना तक चले और अपार जन समूह बिनको देखवे आवे।
0: बहन श्रुति, हो वे ऐसो है कि राधाष्टमी पे जो श्रद्धालुअन को सैलाब बरसाने में आए तो वे ना फिर वह मौके छोड़ के जामे ना आए, सोचे कि अब जो अष्ट सखीन के यहाँ पे जो मनोहारी लीलान के जो आयोजन है उनको हम आनंद लें, जो भक्त हैं और श्रद्धालु हैं वे ना ब्रज धरा में कम से कम ऐसा हम देखें कि 10 दिन को प्रवास तो पूरा करें।
1: हाँ चंपा बहन जी, बूढ़ी लीलान को कछु पौराणिक उल्लेख भी तो मिले।
0: हाँ बहन श्रुति, आप बड़ी बढ़िया बात कर रही हो। देखो ऐसा मानो जाए कि करीबन 550 वर्ष पूर्व ना श्री नारायण भट्ट ने इन बूढ़ी लीलान की ना जो पारंपरिक शुरुआत है वो करी हती,
1: और बिनको कछु आलेख मिले।
0: अब बहन श्रुति, यो तो जितने वाणीकार और हमारे संत हुए हैं ना उनने अपने अपने मतानुसार जो भाव प्रवणता है, जो बाल क्रीड़ा है राधा रानी की, उनकी सखीन की, कन्हैया की और उनके सखान की, गोप और गोपीन की, तो उनकी जो लोक कल्याण के काज जो लीला वही है ना उनको सबको मंचन बड़े भाव्यल रूप में वहाँ होएगो।
1: देखो सांस्कृतिक धरातल पे इन पारंपरिक बूढ़ी लीलान को बड़ा महत्व है।
0: बहन श्रुति, अब देखो हम तो आपसे ये कह रहे हैं या महत्व पे तो आपने व्यापक चर्चा कर ली है,

0: अभी महामहोत्सव की जो बेला बरसाने में आ रही है, कछु ऐसे ही कार्यक्रम की ओर अपने भैया बहनान को ले चलें।
1: बिल्कुल हाँ, तो बहन चंपा ले चलो हमें और कछु काव्य पाठ सुनवाई दो।
0: अरे बहन श्रुति, ये तो आपने हमारे श्रोता भैया बहनान के मन की सी बात कह दी। तो आओ प्यारी भैया बहनाओं, जब राधाष्टमी आ रही है तो हम आपको सुनवाए रहे हैं राधा रानी महामहोत्सव पे आधारित ये काव्य पाठ कविवर गिरीश चंद जोशी जी ते।
2: सबरे भैयान को राधे राधे। जैसो कि अभी राधा रानी को जन्म दिवस आए रहे हुए, बाकी उपलक्ष्य में मैं आराधना करूं हूं श्री राधे की, जो वंदना आपको समर्पित है सुने। एक

हमें एहसान तुम्हारो श्री राधे, जे द्वार न जब तक छोड़े गो दरवान तुम्हारो श्री राधे, जे द्वार न जब तक छोड़े गो दरवान तुम्हारो श्री राधे। एक बेर दरस मिल जाए हमें एहसान तुम्हारो श्री राधे। और कहा का विलास है कि ब्रसभान सुता ब्रज ठकुरानी, शरणागत शरण तिहारी है, ब्रस

जब तक छोड़ेगो दरबान तुम्हारो श्री राधे, एक बेर दरस मिल जाए हमें एहसान तुम्हारो श्री राधे। और ब्रज की छटा कैसी कैसी, कहाँ का दर्शन पाना चाहूँ।

व्यापे पल पल और छिन छिन, जे व्यापे पल पल और छिन छिन, एक नाम तुम्हारो श्री राधे, गुणगान तुम्हारो श्री राधे, जे द्वार न जब तक छोड़े गौ दरबान तुम्हारो श्री राधे, एक बेर दर्श मिल जाए हमें एहसान तुम्हारो श्री राधे, एहसान तुम्हारो श्री राधे। तो यह वंदना को अंतिम क्षण कि ब्रज राज कन्हैया मुरली धर, जापे दुनिया बलिहारी है,

है अभिलाष गिरीश बचा ली जो, अभिलाष गिरीश बचा ली जो, कछु मानु हमारो श्री राधे। अभिलाष गिरीश बचा ली जो, कछु मानु हमारो श्री राधे, कछु मानु हमारो श्री राधे। एक बेर दरस मिल जाए हमें एहसान तुम्हारो श्री राधे, एक बेर दरस मिल जाए हमें एहसान तुम्हारो श्री राधे। श्रोताओं, यही के संग संग में आपको कछु राधा जी के श्री चरणन में कवित समर्पित करूं, तो आनंद ले कि कैसी कैसी भावनाएं मन में उमड़ उमड़ के आ रही हैं। अब जोर के राधा जी को जन्म है और राधा जी बरसाने से लेकर के पूरे ब्रज राजमंडल का विश्व तक प्रसिद्ध हैं और जिनकी जितनी महिमा बखान करी जाए शायद कम रहेगी। तो सुने कि ही एक आनंद लोक बास है ब्रजेश्वरी, प्रीत को अनंत रूप नाम एक राधिका। ही एक अनंत लोक वास है ब्रजेश्वरी, प्रीत को अनंत रूप नाम एक राधिका। जीवन के आठों याम बस एक तेरो नाम, ही एक हुलास।

है नाम एक राधिका, जीवन के आठों याम बस एक तेरो नाम ही एक हुलास को है नाम एक राधिका।

राधिका युगल छवि कबासुरु में गिरीश भयो। युगल छवि कबासुरु में गिरीश भयो। हे गए स्वरूप दो श्याम एक राधिका। हे गए स्वरूप दो श्याम एक राधिका। और एक कविता और आपके समक्ष है, सुने। दर्शन आसुलिए युगनु प्रतीक्षा करी के। दर्शन आसुलिए युगनु प्रतीक्षा करी। आज शुभ घड़ी बड़े भागनु सो आई रे। राधा जी को जन्म है, बघड़ी की महिमा है। के दर्शन आसुलिए युगनु प्रतीक्षा करी। आज शुभ घड़ी बड़े भागनु सो आई रे। राधे राधे रोज होए ब्रज की गली नुमाही। पीछे पीछे जाके डोले कृष्ण कन्हाई रे। जो चारों धाम सो बड़ो बन्यो है आज ब्रज धाम। के चारों धाम सो बड़ो बन्यो है आज ब्रज धाम। द्वार द्वार धेरी धेरी लाड़ी लूज आई रे। ओ याचक गिरीश आज धन्य धन्य है गयो। याचक गिरीश आज धन्य धन्य है गयो। श्रवणन धुन जही राधे राधे पाई रे। श्रवणन धुन जही राधे राधे आई रे। एक मुक्तक यही धरातल पे आपको समर्पित कर रहा हूँ। सिगरे धामन सोना रोज ब्रज धाम है। कि ब्रज की महिमा कैसी है। सिगरे

है ब्रज में कहावत, के कन्हैया तो छोटो है, हमारी राधा रानी बड़ी मानी जाए। तो यही पंक्ति पे आप वो विचार करो, व क्षण व छवि को निहारते रहो कि

है राधा जी को जन्म और राधा जी के नाम की बधाई ना हो, ऐसा कैसे है सके। तो एक गीत के टाइम में आपको राधा जी की प्रशंसा, उनके स्वरूप को दर्शन कराए रहूं, तो छोटी सी कलम के द्वारा अगर आप तक पहुंचे बड़ो आनंद ले। बस भानु सुता घर आई रे, चलो डारे हिंडोला। बस भानु

0: राधे राधे श्रोताओ, राधाष्टमी के उपलक्ष्य पे आप सबन को राधा रानी के जन्म दिवस की या पावन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं। और आप या आनंद को लेवे के ताई हमारे ब्रजमंडल बरसाने में जरूर पधारो, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाए। राधे राधे।
1: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप काव्य पाठ सुन रहे हैं, गिरीश चंद्र जोशी पेते।
2: तो बहन श्रुति, देखो ये जो हमारी ब्रजभानु नंदिनी है ना, बरसाने वाली राधा रानी, इनको जो ये जन्मोत्सव की बेला है आए रही है ना, या को तो जितनो आनंद है ना, या को वर्णन ना शब्दन की परिधि ते बाहर है।
1: ये तो अनुभव करवे की बात है, क्योंकि जो जिवा होए ना बाकी आंखें ना आए हुए हैं, और जो आंखें हैं इनकी जिवा ना आए, तो ऐसा है कि जो अनुभूति है जाए ना या आनंद की, वो वर्णनीय ना है। यही लिए तो कहो गयो है कि वृषभानु की लाडली ब्रज की राज दुलार,
2: कान्हा विशेष नवावत है ऐसो राज तिहार। जो ये भादों को महीना चल रहे हो तो भादों मास के जो ये उत्सव है ना, ये मानव जीवन में अपने आप में ही नई ऊर्जा को संचार करे हैं। अगर हम ब्रज की बात करें तो देखो, ब्रज के लोकमानस में ब्रजराज कृष्ण ने भी तो नटराज बन के ऐसे ही खेल खेल में बाल क्रीड़ा ने कर करके सबके मन को मोह हो। मेरी अखियन के भूषण गिरिधारी, बलवली जाऊं छबीली छब पे, अति आनंद सुतकाय।

0: तो प्यारी भैया बहनाओं, ये राधा रानी को समर्पित, ब्रज की लीलान को समर्पित ये मनभावन सा लोकगीत अभी आप सुन रहे हते। और बहन श्रुति, ये ब्रज वसुधा बरसाना की जो भूमि है ना, वो है ही ऐसी। या वक्त तो बरसाने में ना राधाष्टमी को जो मेलो है, बाकी तैयारी है ना बहुत ही बड़े स्तर पे चल रही है। पूरे ब्रजमंडल में ना राधाष्टमी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के संग मनेगो। बरसाना धाम में राजा ब्रजवाहन की पौर पे लाडली जी के मंदिर में सुबह 4 बजे राधा रानी को जन्म हुएगो। और जो प्राकट्योत्सव है ना, यहाँ पे जो पारंपरिक कार्यक्रम है, तो उनके संग जन्म के पद हैं, उनको जो समाज गायन है वो भी संयुक्त रूप से हुएगो। और जो ये भादों को महीना चल रहे हो है ना, यहाँ की तो इतने ऐतिहासिक कथानक है, इतनी लोक गाथा है ना, जिनकी जितनी बात करो उतनी ही कम है।
1: और देखो बहन, याई में एक मोरा कथा हुआ है, तुमने सुनी है मोरा कथा?
0: हाँ बहन, मैंने बिल्कुल सुनी है। राजा की रानी पानी भरवे को जावे, तो मोर के रूप में ना वाए कुआ के पाट पे अपनो पति मिले, तो वो जाको भी एक लोक लाज के काज है, वो मोरा बाते कुहू कुहू के बात करे है। तो वो मोरा ते कभी अपनी सास को डर दिखावे, कभी जेठानी को, कभी नंद को, तो इतनो अच्छा या को वर्णन है।
1: हाँ बहन चंपा, मोरा सास है अपनी मैया बतावे और नंद है अपनी बहन बतावे।
0: हाँ बहन श्रुति, आप सही कह रही हो। और फिर जब मोरा की और रानी की जो बातचीत हो गए ना, जब वो पनिहारी के रूप में रानी अपनी सास के पास घर लौट के जामे और यह सबरे वृत्तांत को कह सुनामे कि आज कुआ के पाट पे एक मोरा मिलो बात, ये बातचीत भाई, तो बेके वही तो तुम्हारे पति है हैं। तो देखो कितनी जो भावना,
1: मनोरम, हाँ, कितनी मनोरम और कितनी भावुक कथा है मोरा कथा।
0: हाँ, कितनी जाते कहवे ना, बड़ी हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी बात है कि ब्रज धरा ने ना अपने आप में, ब्रज संस्कृति ने अपने आप में ना इन सब भावन को भी आत्मसात करो है।
1: हाँ बहन चंपा, भैया बहनाओं, कहवे को तो बहुत बातें और सुनवे को बहुत बातें हैं, पर हमारो तो चौकी राधाष्टमी आई बेवारी है। हमारो आपते करबद्ध यही निवेदन है कि आप ब्रज धरा में पधारो, राधे रानी के दर्शन करो और अपने आप को अभिभूत करो।
0: और या जन्मोत्सव की बेला को या मंगल आनंद को, आनंद आप लियो।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर देखो समय देख लियो और घड़ी कह रही है कि अब अपने श्रोतान से विदा ले जाए। तो आज का ब्रज माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुए है। मोए श्रुतिपुरी है
0: और मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को अनुमति दो। नमस्कार।
1: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: बीके तोमर।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रिज माधुरी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार मित्रों, आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम हिंदी से जुड़ते नन्हे प्रवासी स्वर। आज हमारी स्टूडियो में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भले ही सात समंदर पार यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, लेकिन उनके मन में हिंदी की मिठास और भारत के प्रति अपनापन आज भी उतना ही गहरा है। यूके हिंदी समिति के विभिन्न केंद्रों में हिंदी का अध्ययन कर रहे ये बच्चे इन दिनों भारत आए हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे इन हिंदी प्रेमियों का। तो चलिए अब हमारे दोस्तों से संवाद करेंगे सुहानी।
1: तो चलिए स्टूडियो में उपस्थित हमारे नन्हे मुन्ने साथी अब हमें अपना परिचय देंगे और मैं तो बहुत उत्सुक हूँ उनके बारे में जानने में, उनकी रुचियाँ जानने में और भारत में अनुभव कैसा रहा उसके बारे में जानने में। क्यों यश?
2: बिल्कुल सुहानी, मैं भी जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ।
1: बिल्कुल, तो चलिए हम शुरू करते हैं आप सभी के नाम से।
3: नमस्ते, मेरा नाम सिमरन खत्री है, मैं लंदन से हूँ और मैं महाविद्यालय में पढ़ती हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम हेमान्या कमठान है, मैं यूके में मैनचेस्टर शहर से हूँ।
5: नमस्ते, मेरा नाम तविशा है।
6: नमस्ते, मेरा नाम इरा है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
7: नमस्ते, मेरा नाम पार्थ वशिष्ठ है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं लीड में रहता हूँ जो उत्तर इंग्लैंड में है।
8: नमस्ते, मेरा नाम अक्षय चावल है और मैं लिवरपूल से हूँ।
9: नमस्ते, मेरा नाम स्वस्तिक है और मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में रहता हूँ।
1: यूके से आए हमारे इन सभी साथियों का भारत में और आकाशवाणी दिल्ली के हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो चलो यश, अब हम इनसे और प्रश्न पूछते हैं। तो मेरा प्रश्न है हेमान्या से। हेमान्या, आप कितने समय से हिंदी सीख रही हैं?
4: जी, मैं हिंदी लगभग 7 से 8 वर्षों से सीख रही हूँ यूके हिंदी समिति के साथ।
1: मेरा अगला प्रश्न है अक्षत से। तो अक्षत, आपको हिंदी सीखने में कठिनाइयाँ कहाँ पे आती है और हिंदी सीखने का सबसे रोचक हिस्सा आपके लिए क्या रहा है अभी तक?
8: मुझको बोलना बहुत हार्ड लगता है और मेरा लिखना थोड़ा भी कमजोर है।
1: अब नई भाषा सीखेंगे तो शुरुआत में कठिनाइयाँ तो आएगी ही, लेकिन हम ये जरूर कामना करेंगे कि आप कुछ समय बाद हिंदी बहुत खूबसूरत तरीके से बोलने लगेंगे। तो चलिए अब हम आगे अपने दोस्तों की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है कि आप भारत में अभी तक कहाँ कहाँ घूमे हैं, और ये प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी तविशा से।
5: ये हमारा दूसरा दिन है दिल्ली में। आज दोपहर को हम रेलगाड़ी लेके हम भोपाल जाने वाले हैं। उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं वहाँ जाने के लिए, वहाँ घूमने के लिए। ये मेरी दूसरी यात्रा है। मैं पिछली बार भी आई थी यूके हिंदी समिति के साथ और वहाँ हम दिल्ली भी आए थे और उत्तराखंड भी गए थे, हल्द्वानी, नैनीताल, कुसानी। वो भी बहुत खूबसूरत जगह थे और मैं आशा करती हूँ कि जहाँ हम आगे चलेंगे वहाँ भी हम खूबसूरत यादें बनाएंगे।
2: अब मेरा सवाल जो है वो बतौर हिंदी सिनेमा प्रेमी मैं खुद भी ये जानना चाहता हूँ कि आप ब्रिटेन में किस तरीके का सिनेमा, भारत से जुड़ा सिनेमा, या कौन सा ऐसा अभिनेता है जिसे आप पसंद करते हैं, जिसके डायलॉग आपको अच्छे लगते हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा इरा से।
6: ब्रिटेन में मैं हिंदी फिल्में देखती हूँ। मेरा फेवरेट है ओम शांति ओम, और जब वो आते हैं सिनेमा में तो मैं और मेरी मम्मा और मेरे पापा हम सब जाते हैं।
1: इरा, यह तो बहुत अच्छी बात है।

0: चलिए अब हमें यह तो पता है कि किसी भी भाषा सीखने के लिए हम बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम साहित्य पढ़ते हैं, हम संगीत सुनते हैं, हम फिल्में देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, है ना। तो मेरा अगला प्रश्न है सिमरन से। तो सिमरन, क्या आपने हिंदी साहित्य अभी तक पढ़ा है? और अगर पढ़ा है तो हिंदी साहित्य में आपको कौन से साहित्यकार अच्छे लगते हैं?
1: जी, जब मैं हिंदी सीख रही थी तो हमें हमारे परीक्षा के लिए कुछ किताबें और कुछ कविताएं पढ़नी थी, पर अभी तक जो मैंने साहित्य पढ़ा है उसमें से मेरे मनपसंद कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, क्योंकि पिछली बार मैं जब इंडिया ट्रिप पे आई थी यूके हिंदी समिति के साथ, तो हमें उनके घर जाने का भी अवसर मिला था और वहां पर मैंने उनकी काफी सारी कविताएं पढ़ी, तो वो मेरे मनपसंद कवि हैं और उनकी कविताएं मुझे बहुत प्रभावित करती हैं।
0: तो अभी आपने उल्लेख किया कि आपको मैथिली शरण जी का कार्य बहुत पसंद है, तो आपको उनकी कौन सी कविताएं पसंद है, उनके कौन से कार्य पसंद है, क्या आप थोड़ा इस बारे में हमें और बता सकते हैं?
1: जी, उनकी एक कविता ऐसी है जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। उस कविता का नाम है नर हो ना निराश करो मन को, और ये कविता मुझे इसलिए प्रभावित करती है क्योंकि ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कविता है जो हम सबको ये याद दिलाती है कि कभी भी हार मत मानो, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो।
2: पार्थ, आप बताना चाहें हिंदी को किस तरीके से आप अपने जीवन में लाते हैं?
3: मैं तो बहुत सारी हिंदी फिल्में देख सकता हूँ सब टाइटल्स के बिना, और कुछ हिंदी पुस्तकें भी पढ़ सकता हूँ और अच्छे से और जल्दी जल्दी से, और मैं समझ भी सकता हूँ कि क्या लिख रहे हैं।
2: कुछ कुछ ऐसा हिंदी का आप बताना चाहें?
3: जब मैंने कभी खुशी कभी गम देख लिया तो फिर मैंने देखा और फिर मैंने सब कुछ समझ में आया था क्योंकि मैंने सब टाइटल्स के बिना देख लिया।
2: कोई डायलॉग?
3: कोई डायलॉग नहीं, बट जब तीनों के तीनों वापस लौट कर आए और जब मैं लौट कर आया तो फिर वही मोमेंट मुझे पसंद है।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पार्ट।
0: तो चलिए, मेरा प्रश्न है पार्ट से। तो पार्ट, क्या आप हमें बताएंगे कि भारतीय संस्कृति में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है?
3: बहुत सारी भारतीय त्योहारों सेलिब्रेट करने में, वही सब मैं पसंद करता हूँ।
0: तो आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है पार्ट?
3: होली है, क्योंकि मैं पैदा हुआ था होली पर।
0: अरे वाह।

0: पता है यश, बहुत देर से मुझ में इतनी उत्सुकता है ना कि मैं हमारी दोस्त तविशा से पूछूं कि तविशा, क्या आपको अपने नाम का हिंदी में अर्थ पता है? क्योंकि मुझे आपका नाम बहुत ही पसंद आया।
1: हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम का अर्थ कैपेबल है।
0: अरे वाह, आपको अपने नाम का मतलब भी पता है, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रही हूँ हमारी एक दोस्त है आर्या, वो बहुत देर से चुप बैठी है। तो अगला प्रश्न मेरा आर्या से है कि आर्या, आप बताइए कि आप यूके और भारत दोनों देशों के प्रतिनिधित्व है ना, आप दोनों देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है यूके और भारत में सेम है या यूके और भारत में अलग अलग है?
1: यूके में गाना अलग है और भारत में हिंदी गाने होते हैं और यूके में अंग्रेजी गाने होते हैं।
2: सुहानी, मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे लोग गानों की बात कर रहे हैं, हम बहुत देर से सवाल जवाब कर रहे हैं, और मैंने ये भी सुना था कि जब हमने बात करनी शुरू करी थी तो कुछ लोग डरे हुए थे कि किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम शायद से थोड़े एक दूसरे के साथ मिलजुल गए हैं, तो मैं आपकी गानों की पसंद जानना चाहता हूं कि आप कौन सा गाना सुनते हैं, भारतीय गाना जो हम आपके लिए यहाँ पे, आप बता सकते हैं स्वास्तिक या आप बता सकते हैं पार्थ?
3: मैं बहुत सारे बॉलीवुड गाना सुनता हूँ, जैसे कि अरिजीत सिंह और दिलजीत दोसांझ को सुनता हूँ।
2: कोई गाना?
3: आज से तेरी।
2: अरे मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक जो है एक इनिशिएटिव ले, एक गाना गाने की पहल करे, तो आप कोई गाना जो बॉलीवुड का हो और आप में से कोई गाना चाहे, आप गाना चाहेंगे तविशा?
1: हाँ जी बिल्कुल।
2: और और कोई इरा, आप भी गाना चाहेंगे?
1: हाँ
2: तो
1: जी।
2: आप शुरू करिए गाना।
1: बिल्कुल, मुझे संगीत में बहुत रुचि है, मैं गाती भी हूँ और सितार भी बजाती हूँ। एक गाना गाऊंगी गाइड फिल्म से जिसका नाम है पिया तो से।

0: बेहद ही खूबसूरत तरीके से आपने इस गाने को गाया और बहुत ही अच्छा गाया आपने। ईरा, आप भी कोई गाना आप गाना चाहें?
1: आज मैं एक गाना सुनाऊंगी जिसका नाम है तेरी।

0: बहुत ही अच्छा गाया और आप सभी ने साथ भी बहुत अच्छा दिया इरा के साथ।
1: अलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे

0: तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले सप्ताह आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे रेडियो किड्स पर, मुझे यानी सुहानी को
1: और मुझे यश को
0: दीजिए इजाजत और हम अपना माइक्रोफोन हैंड ओवर करते हैं हमारी दोस्त शिखा और निखिल को।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी और यश। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना कि दूरी चाहे कितनी भी हो, भाषा दिलों को जोड़ने का काम करती है। यूनाइटेड किंगडम में जन्मे और पले बड़े इन बच्चों ने हिंदी कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हिंदी की यात्रा भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, वह दुनिया के अनेक देशों में नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ रही है। हम इन सभी बच्चों और उनके शिक्षकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 4 बजे आप सुन सकते हैं स्वांग, जिसमें किस्सा होगा राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती का। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी आप सुन सकते हैं 5:10 पर। हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, इस का प्रसारण किया जाएगा 5:30 बजे। और ग्राम संसार, इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। इसके अलावा खेती किसानी पर आधारित कार्यक्रम कृषि जगत, इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 7:05 पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम स्वांग।
1: नमस्कार, आज का कार्यक्रम लोक संगीत स्वांग और कलाकार हैं केशव कुमार, बबीता उर्फ पूनम त्यागी। कथानक है राजा हरिश्चंद्र रानी।

महान व्यक्तित्व का जिक्र करते हैं जिन्हें कहते थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। प्यारे श्रोताओं, जब राजा हरिश्चंद्र ने 99 यज्ञ कर लिए, 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ की, अब तो इंद्र के अखाड़े में सभी बैठे हुए हैं और सभी सोच रहे हैं कि मृत्युलोक में एक ऐसा सत्यवादी है कि एक रोज वो इंद्र के आसन को छीन लेगा। प्यारे साथियों, ऋषि विश्वामित्र कहने लगे, मृत्युलोक में ऐसा सत्यवादी कौन है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अब तो परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं, स्वप्न में आते हैं राजा हरिश्चंद्र के और स्वप्न में ही 3 वचन भरवा लेते हैं। तीनों वचनों में राजपाट सब कुछ मांगने के बाद तीसरे वचन में 2.5 भार सोने की हां करा लेते हैं। साथियों, सुबह होते ही दरबार में एक साधु आते हैं, राजपाट की चाबी मांगते हैं। चाबी तो हरिश्चंद्र ने दे दी, साथ में कहा कि महाराज अभी तो 2.5 भार सोना और बाकी है। कि महाराज उसे कहां से दूंगा, कि तुम्हारे शरीर को बेच करके उसे पूरा करूंगा। काशी के बाजार में लेकर के विश्वामित्र पहुंच जाते हैं, गलियारों में आवाज लगाते हैं, लेकिन मोल लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक कालिया नाम के व्यक्ति ने तीनों का 2.5 भार सोने में मोल लगा दिया, लेकिन 1 भार सोने में राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 1.5 भार सोने में रामलाल पंडित ने रानी तारावती और रोहित को खरीद लिया। काम क्या था दोस्तों, वर्णा नदी से जल लेकर के आना काम था दोनों का। अब तो साथियों 30 रोज हो गए थे, जर्जर शरीर हो रहा था, हरिया का शरीर बेदम सा हो रहा था, भारी घड़ा था, घड़े को नहीं उठा पा रहा था। दूर को नजर करता है उसकी अर्धांगनी, उसके 7 फेरों की गुनेगार नजर आ जाती है। सोच रहा है आज तो 30 रोज बाद रानी तारावती से मुलाकात भी हो जाएगी और यहां घड़े को उठवाने वाला कोई नहीं है, कम से कम सहारा देकर यही मेरे घड़े को उठवा देगी। समय की कैसी विडंबना है, जिन्होंने 7 जीने मरने के कसमें वादे किए थे, आज तो घड़ा उठवाने से भी इनकार कर गई। दोनों का समाज हो रहा है, भला किस

0: महारानी तारा, महारानी तारा मैं इंतजार कर रहा था कोई मुसाफिर यहाँ आए और मेरे घड़े को उठवा दे, लेकिन आज तो परमात्मा ने कैसी कृपा की है आपको यहाँ भेज दिया। इस बहाने से आज मुलाकात भी हमारी तुम्हारी 30 रोज बाद हो रही है और मेरे घड़े को सहारा देकर के मेरे सिर तक पहुंचवा दीजिए महारानी, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी।
1: स्वामी मैं आपके घड़े को हाथ तो नहीं लगा सकती, लेकिन आपको मैं एक विधि जरूर बता सकती हूँ ताकि आपका घड़ा आपके सर तक पहुँच जाए।
0: मेरी बात सुन लीजिए महारानी तारा,

0: रही तारा
1: जी,
0: मेरे घड़े को हाथ लगाने से आपकी काया पवित्र हो जाएगी, लेकिन महारानी इस शरीर को तो आप इस वरना के जल में धोकर भी साफ कर सकती हो।
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं आपके घड़े को हाथ

0: जी स्वामी।
1: इस घड़े में वजन ज्यादा होने के कारण इसे नहीं उठा पा रहा, मेरा जर्जर शरीर है।
2: थोड़ा सहारा दे दे, तेरा बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। मेरी बात को जरा

0: स्नाना में बहुत सा जल है, अपने शरीर को धो करके चाहे स्नान करके पवित्र कर सकती हो। मेरी बात को जरा गौर से सुन करके।
1: सही कह रही है स्वामी, लेकिन जहाँ आप रहते हैं और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ दोनों जगह में फर्क है। मेरा ब्राह्मण के घर तेरा है और मैं आपके घरे को नहीं नवा सकती।
0: मरी बात सुनकर

महाराणी तारा, ये निधि का विदा है। जीव अमृत लोक में परमात्मा भेजता है तो उसके कर्मों को भी साथ साथ भेजता है। सत्य असत्य जीवन मानी लाभ हानि यश अपयश ये विधाता के हाथ में होता है, मनुष्य मात्र के हाथ में बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बात गौर से सुने जरा।

0: इस तरह से प्यारे साथियों, रानी मदनावत के समझाने और कहने पर तरकीब बता दी कि जल के अंदर गोता मार के जब गले के पर अपर जल आ जाए तो डुबकी लगा देना, घड़ा स्वेते ही तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। जर्जर हालत थी प्यारे साथियों, बहुत जर्जर हालत थोड़ी, जैसे ही हरिचंद घड़े को लेकर के चलता है ठोकर के लग के घड़ा गिर जाता और फूट जाता है। अब तो कालिया जो सामने खड़ा देख रहा था, देख करके हरिया को, और क्या कह रहा है, दोनों का संवाद किस तरह से बोला,
1: हरिया
0: कहिए मालिक,
1: तूने इस घड़े को फोड़ दिया है, तुझे पता है मेरा तूने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है।
0: मालिक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कमजोर शरीर था, घड़े में ज्यादा वजन था,

0: मैं लत बचा कर चल रहा था, ठोकर लग गई मालिक, गिर गया, इसलिए घड़ा फूट गया मालिक, मुझसे गलती तो हुई है।
1: हरिया, ये रोज की लापरवाही तेरी ठीक नहीं है, अपने काम को जिम्मेदारी से इंसान को करना चाहिए।
0: आप कह दीजिए मालिक क्या कहना चाहते हैं, मैं सुनूंगा।
1: जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए मालिक।

0: अगर सच्ची बात बता दूंगा तो तुम फिर मारोगे, इसलिए अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा सत्य और धर्म घटता है। मेरी बात को जरा गौर से सुनना।
1: हरिया हरिया, ना करो मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। जिसका नमक खाता है उसके साथ गद्दारी करनी ठीक नहीं होती। हरिया
0: मेरी बात तो सुन लीजिए मालिक, मैं पूरी बात कहना चाहता हूँ।

0: छिपाई थी कि मैंने 30 रोज से अन्न नहीं खाया है।
1: हरिया हरिया, आपने 30 रोज से अन्न नहीं खाया?
0: नहीं मालिक।
1: आपके लिए तो मैंने सेठ जी की दुकान को बाकायदा तेरे लिए उस सेठ जी से कहा था कि भाई हरिया के लिए इस दुकान को बिल्कुल फ्री कर दे, जो कुछ खाना है हरिया के लिए इसे छूट दे दे।
0: मालिक मैं उसके बाद इस दिन आपके साथ गया था, उसके बाद उस दुकान पर गया ही नहीं हूँ।
1: उसके उसके बाद तू गया नहीं?
0: हाँ, पूछ सकते हैं सेठ से जाकर के।
1: हरिया मुझसे तो बहुत भारी भूल हुई है और जो मैंने तेरे लात मारी है इसका मुझे बहुत दुख है।
0: मेरी बात सुन लीजिए मालिक,

इस तरह से प्रचता हूं, हरिया का काम बदल दिया कि आज से तुम मरद घाट पर कर ले लेना, जो भी वहां मुर्दा जलाने आए उसे सवार पर कफन लेना है। प्यारे साथियों, समय की कैसी विडंबना है, होली का त्योहार आ जाता है, अब तो रामलाल की पूजा के लिए फूल तोड़ते रोहित को ऋषि विश्वामित्र ने सर्प बनकर के डस लिया। वो बच्चा बाग में हाय हाय चिल्ला रहा है और कह रहा है कि कोई मेरी आवाज को सुनता हो तो काशी के अंदर रामलाल के यहाँ मेरी दुखियारी माँ रहती है, जरा उससे मैं खबर पहुंचा दो कि तेरे लाडले को सर्प ने डस लिया है। किस तरह से बच्चा हाय हाय करके चिल्ला रहा है, आइए सुनते हैं बाकी वाला किस तरह से क्या लिख दिया।

0: ये क्या हो गया?
1: अरे बेटा क्या हुआ तेरे को?
0: भाई देखो मेरे क्या हो गया।
1: अरे तेरे मुंह में झाग।
0: हाँ भाई मेरे को नाक ने डस लिया। भाई
1: बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ।
0: हाँ और मेरी माँ से एक बात कह देना।
1: क्या कहते हैं? तेरी माँ भी है?
0: हाँ
1: यहीं पर रहती है?
0: यहाँ पे ही रहती है,
1: काशी शहर में।
0: जी
1: क्या कहूँ बेटे।

0: तेरी माँ कहाँ रहती है बेटे?
1: रामलाल पंडित के यहाँ रहती है जी।
0: तेरी माता का क्या नाम है?
1: तारावती।
0: ठीक है, मैं जाता हूँ।
1: ठीक है,
0: अभी लाता हूँ तेरी माँ को बुला कर। अरे भाइयों, यहाँ रामलाल पंडित का घर कहाँ है?
2: रामलाल पंडित का घर?
0: हाँ हाँ,
2: वो सामने है।
0: सामने है?
2: क्या काम है?
0: मुझे एक उनके यहाँ तारा नाम की कोई रहती है।
2: हाँ हाँ हाँ, रहती है, उनकी नौकरानी है।
0: ये घर सामने है, रामलाल
2: ये सामने रामलाल का घर है।
0: बहन तारावती।
3: हाँ जी, मेरा नाम तारा है।
0: आपका ही नाम तारा है?
3: क्या बात हुई है?
0: आपके कोई लड़का है?
3: मेरा बेटा है।
0: बेटा है?
3: हाँ जी, रोहतास, और उसका नाम है।
0: वो बाग में गया था?
3: वो बाग में मैंने फूल तोड़ने के लिए भेजा था।
0: हाँ।
3: उसने कोई खता की है, उससे कोई गलती हो गई है।
0: नहीं।
3: जो आप इतने उतावले से होकर यहाँ तक आए हैं।
0: हाँ।
3: बताइएगा अगर मेरे बेटे से कोई गलती हुई है।
0: नहीं बहन, उसने कोई गलती नहीं की।
3: फिर क्या?
0: लेकिन वो बेहोश है।
3: बेहोश?
0: हाँ, चल के देखिए।
3: बेहोश?
0: हाँ।
3: मेरे बेटे को क्या हुआ है?
0: हाँ, ये देखिए।
3: रोहतास, हाय मेरे लाल, मेरे चंदा, तुझे क्या हुआ है मेरे बच्चा? अरे आंखें खोल मेरे जिगर के टुकड़े, तुझे क्या हुआ है रोहतास? रोहतास मेरे बच्चे, मेरे बछड़े, आंख खोल, क्योंकि मेरे जीने का एकमात्र तू ही सहारा है। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे लाल को क्या हुआ है जो ये बोलता भी नहीं? इसके मुख से नीले नीले झाग क्यों निकल रहे हैं, आपको क्या पता है?
0: देखिए बेटी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। वो कहा है किसी ने के सूरज का प्रकाश हुए भी हटता घोर अंधेरा ना, पैदा सो न पैद जगत में सदा रहे घर डेरा ना, और जीते जी की मेर तेर मरे पीछे मिंट बसेरा ना, यो सूक्ष्म जीव निकल जाएगा फिर कोई तेरा कोई मेरा ना।
3: अरे भैया, मुझे ये तो बताओ कि मेरे जिगर के टुकड़े को हुआ क्या है?
0: मेरी बात सुनिए, हिल लिखी देखिए।
3: मुझे बताओ, मैं किसी डॉक्टर के लिए
0: मेरी बात समझिए बेटी, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ।

0: प्रेम पतंग के कागज गड़के डोरी हाथ रही कोन्या, इसके जात जमात रही कोन्या, यो तेरा बेटा और तू इसकी मात रही कोन्या। और गुरु मंगल चंद भी चुप हो गया, जब बस की बात रही कोन्या। कहे चंद्रलाल तेह शंकर दास दूर हो गया, और जिसने बेटा कहा करे थी यो रोहतास दूर हो गया।
1: मैं अपने बेटे को लेकर के कहा जाऊं मुझे भागन के पास, तो इसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे भी नहीं है।
0: देखिए ये बाग में केले के पत्ते हैं, इसको केले के पत्ते में लपेट कर लेके जाओ, और ये सामने शमशान भूमि है वहां ले जाओ बेटी, जाइए। केले के पत्तों में लाश लपेट देती है और वो दुखियारी लेकर के अपने बेटे को चलती है, और क्या कहती है,

0: मुर्दा जलाने वाली औरत
1: कौन हो तुम जो बिना महसूल दिए यह मुर्दा जलाने की हिम्मत कर रही हो?
2: स्वामी, मैं आपकी तारा हूँ। आप अपनी तारा को नहीं पहचानते?
1: कौन तारा, किसकी तारा, कैसी तारा?
2: पूरी संसार ने, पूरी दुनिया ने मुझे जानने से इनकार कर दिया। आज ये अभागन अपने पति के पास कुछ फरियाद लेकर के आई है। आप भी पहचानने से इनकार कर रही हैं स्वामी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, याद आया,
0: मुझे याद आया, अच्छी तरह से याद आया। तुम वो मिश्रानी तारा हो जो वर्णा नदी पर मुझे घड़ा उठवाने से भी मना कर गई थी कि मैं अभी अपवित्र हो जाऊंगी। वो मिश्रानी तारा हो, मैं समझ गया।
2: महाराज, मेरी मजबूरी थी, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। आज आपका इकलौता बेटा रोहतास, मेरे ख्याल से आप उसे भी आज पहचानने से इनकार करेंगे।
1: आपको काशी के नियमों का मालूम है क्या?
0: मेरे मालिक का हुक्म है आदेश से कि यहाँ मुर्दा जलाने से पहले 1,250 रुपये और कफन देना पड़ता है। क्या तेरे पास है वो?
2: मेरे पास नहीं है महाराज, मुझे भागन के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है महाराज, कहाँ से लाऊं मैं?
0: नहीं है तो उठाइए इस लाश को और ले जाइए शमशान से बाहर। मैं बिना महसूल के यहाँ मुर्दे को नहीं जलने दूंगा।
2: महाराज, ऐसा घोर अनर्थ ना कीजिएगा, इतने बेदर्द ना बनिएगा। आज अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रहे हो, आपका एकलौता जीने का सारा।
0: मेरी बात को सुन।

0: अपने मालिक कालिया का नौकर हूँ। उसके में मेरे अन्नदाता है, वो मेरे विधाता है, वही मेरी माँ और वही मेरा बाप है। उसके अलावा भाई दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर मैंने अपनी मालिक के साथ में छल कर दिया, पुत्र और पत्नी के मुंह में आकर के बिना महसूल मुर्दे को जलने दिया, तो मैं ऋणी हो जाऊंगा कालिया का। उस ऋण को चुकाने के लिए फिर मुझे आवागमन में भटकना होगा। मुझे मुक्त हो जाने दे, मेरी बात को
1: थोड़ी दया दिखाइए,
0: मेरी बात को सुन ले और ध्यान से।

0: लाल की लाश को लेकर शमशान में नहीं आता, कहीं दरिया के किनारे कहीं बिहार जंगल में रख करके इसका अंतिम क्रियाक्रम कर देती, आज अपने पति का सतभंग करने के लिए क्यों आ गई?
1: महाराज, सतभंग करने के लिए नहीं आई हूँ, अगर बेटे का फर्ज पूरा नहीं कर सकता

राजपाट धन दौलत शोहरत सब कुछ छोड़ दिया, आज आपने पहचानने से क्या अपने बेटे को ही लात मार दी। कम से कम एक फर्ज तो निभा दीजिएगा महाराज।

0: ए दुखियारी औरत, क्या तेरे पास देने के लिए कुछ है जो मैं अपने मालिक को बता दूं कि मैं ये कर लेकर के आया हूँ?
1: मेरे पास कुछ भी नहीं है स्वामी, केवल मेरा आधा सा चीर है, वो कंठी है, इसे ही ले जाएगा और मेरे बेटे की लाश को जलाने
0: देख दुखिया रे। तो मैं आप मुझे कंठी और चीर देना चाहती तो दे दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं अपने मालिक से पूछ करके आऊंगा, अगर उन्होंने कर स्वीकार कर लिया तो मुर्दे को जलने दूंगा, वरना नहीं जलने दूंगा।
1: ये कंठी चीर है स्वामी, इसे ले जाइएगा और मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने दीजिएगा स्वामी, करने दीजिएगा।
0: तो मैं अपने मालिक से पूछ करके आता हूँ, तब तक कि आप यहीं रहिए, अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो जला लेना मुर्दे की लाश को, वरना मत जलाना। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनकर बैठ जाइए और मैं जाता हूँ स्वामी के पास।

0: आइए हरिया आइए।
1: मालिक के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो।
0: प्रणाम हरिया। कहिए आज आपका कैसे आना हुआ?
2: मालिक आप अपने शमशान के नियमों को बदल डालिए, ये बड़े बेदर्दी के नियम है, बहुत ही कठिन नियम है मालिक।
0: बड़े कठिन नियम है
2: मालिक, मुझसे नहीं होता ऐसा, देखा नहीं जाता मालिक।
0: ऐसा तो कोई भी नियम मेरे मुरद घाट में कठिन नहीं है, केवल सवा रूपा मैंने मुरद घाट का कर कर रखा है, इससे कम कैसे करूं हरिया।
2: मालिक आज एक खियारी अपने लाडले की लाश को लेकर के आई थी, उसके पास मरघट का कर चुकाने के लिए सवा रूपये नहीं था, उसने ये आधा चीर और ये कंठी अपने गले की सुहाग की निशानी दी है, अगर आप स्वीकार करें तो मैं उसकी मूर्ति की लाश को जलाने दूं।
0: क्या सवा रुपया उस दुखिया के पास नहीं था? ये कंठी और चीर लेकर तू मेरे पास आया है हरिया, कि यहाँ बड़े बड़े सेठ रहते हैं इस काशी में, पर ऐसी दुखिया भागन कौन है जिसके पास सवा रुपया भी नहीं है कर देने के लिए हरिया।
2: मेरी बात सुन लीजिए मालिक, और इस नियमों को बदलने की कोशिश करना, मेरी बात ध्यान से सुनो जरा।
0: कह दो जरा।
3: अभी हम सुन रहे थे लोक संगीत विधा स्वांग, किस्सा हरीशचंद तारामती भागे।
4: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों बाद आप समाचार सुनेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है, और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के लिए सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
6: हम आशा करते हैं इस समिट से, उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें

0: सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है।
0: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोगाइफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री पिछले दो दिन से दुनिया भर के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। वे आज दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था तथा वित्त मंत्री जमशीद कुचकरोफ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचार साझा किए। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में आयोजित 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल गया है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का बाजार मात्रा के लिहाज से वर्तमान हीरा बाजार से लगभग 50 गुना बड़ा होने की उम्मीद है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 140 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन में खेले गए फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया। वहीं दुबई में महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला आज 8 बजे मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions, and the discussions over the past 2 days have further strengthened this conviction. He said this during his concluding remarks at the BRICS session on resilience, innovation, cooperation and sustainability at the Bharat Mandapam in New Delhi. Mr. Modi hoped that the New Delhi Declaration adopted at BRICS summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. He stressed on the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
0: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन

0: लोक रंजनी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। अश्विनी
1: जी,
0: भाई आज के कार्यक्रम में हम कुछ लोकगीत लेकर आए हैं आज के जो हमारे श्रोता हैं उनके मनोरंजन के लिए, और हर बार की तरह एक विविधता के साथ हम अपनी संस्कृति को जोड़ते हुए लोकगीतों को शामिल करते हैं।

0: बिल्कुल, देखिए कैसे है ना, लोकगीत जो लोकगीतों है ना, जो सबसे बड़ी खूबसूरत इनकी यही है कि ना ही इनमें बनावट होती है, जो महसूस किया जा सकता है, और वहीं वहीं प्रति और खुशियों जो खुशी है, और जो बिछड़न के गीत हैं या विदाई के गीत हैं, या कुछ ऐसे ऐसे गीत हैं जो जो सिर्फ हमें पुरानी यादों की तरफ ले चलते हैं। जरंगा भाई, जैसे लगता है कि शहरों की दौड़ती भागती, जब हम थकान महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मन की दोबारा वहीं लौट चलते हैं जहाँ
1: हाँ,
0: पर।
1: ये विभिन्न मौके
0: जी
1: हैं जहाँ पर हमारी संस्कृति की झलक उसमें दिखाई देती है, और जो हम महसूस करते हैं अपनी संस्कृति में उसका वर्णन इन लोकगीतों में होता
0: बिल्कुल
1: है।
0: जी
1: और महिलाएं जो हैं सजने संवरने में तो हमारे बड़े अलग ही स्किल होती है।
0: बिल्कुल
1: जब ये अपने सजने संवरने की बात करते हैं तो वो भी लोकगीतों में शामिल होती है। और क्या कह रही हैं प्रियंका शर्मा?
0: तो आइए सुन लेते हैं।

0: भाई देखिए, प्रियंका शर्मा ने हरियाणा के जो मार्केट है ना, कहाँ पे क्या मिलेगा
1: बिल्कुल
0: वो भी सुझा दिया कि भाई देर ना लगे और छाट के चीज ले आए। तो हमारे संस्कृति में, हमारे पूरे देश के अंदर देखो, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ों के लिए हमारा देश है,
1: मशहूर
0: प्रसिद्ध
1: है
0: है।
1: जी।
0: और हरियाणा के कई इलाकों का जैसे ने जिक्र किया, तो ये हमारी संस्कृति में एक अनोखी चीज़ है कि खाना हमारा अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, लेकिन अनेकता के साथ एकता हमारे देश में बनी हुई है।
1: बिल्कुल
0: और जो हमारे अलग अलग मौसम की बात करते हैं, मौसम का प्रभाव भी देखने को मिलता है, उसमें त्यौहार हमारे अलग अलग आते हैं। तो
1: तो अगला जो गीत है हेमलता की आवाज में सुन लेते हैं, ये लोकगीत, तो इसमें भी कुछ ना कुछ हमें
0: मौसम से जुड़ करके बात की जा
1: जी
0: रही है।

0: भाई हम देख रहे हैं जगह जगह बारिश का तो मौसम
1: बिल्कुल
0: बना हुआ है।
1: बारिश भी हो रही है नैना
0: हाँ,
1: भाई।
0: बहुत जगह हो रही
1: जी
0: है।
1: जी
0: और ये जैसे कि बारिश का इन्होंने जिक्र इसमें किया है, सावन का महीने में तो बहुत बारिश होती है, लेकिन
1: जी
0: आजकल इस मौसम में भी काफ़ी
1: लगातार जी
0: बदलाव आ रहा है। तो अब जो एक अगला लोकगीत हम सुनेंगे वो सुनेंगे सविता शर्मा की आवाज़ में, क्योंकि कई बार नोक झोंक जो होती है ना वो भी एक अलग ही मिठास पैदा करती है रिश्तों
1: बिल्कुल
0: में।
1: रिश्तों में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो कुछ ऐसा ही बता रही हैं ये सविता शर्मा कि किस तरह से इनकी आपस में बिगड़ी है भाई, क्या नोक झोंक हुई है मतलब, और उस नोक
1: सविता
0: झोंक से क्या कुछ आपस में जिक्र हो रहा है। तो सुनते हैं सविता शर्मा
1: शर्मा
0: को।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। मैं हूं आपके साथ सिमन सारवान और मेरे साथ हैं
3: अभिषेक कपिल
2: जी। तो आज हम बात करेंगे कई रोमांचक खिलाड़ी और खेलों के बारे में। सबसे पहले बात होगी विमेंस T20 एशिया कप, जो कि जिसका फाइनल होने जा रहा है, उस पर बात होगी। साथ ही साथ मेंस क्रिकेट की भी बात करते चलेंगे। एशियन गेम्स की स्पेशल सीरीज तक आपको लेकर जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे शूटिंग, टेकबॉल और टाइकोंडो की। US ओपन में भी मेंस और वुमेन्स के गेम पर हम आपको वहां तक लेके चलेंगे। साथ ही साथ तीरंदाजी को भी कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, तीरंदाजी यानी आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स पर भी हम सबकी नजरें होंगी और आपको वहां तक हम जरूर लेते चलेंगे। जूनियर एशिया हॉकी कप के बारे में भी बात होगी, साथ ही साथ PSA कतर क्लासिक्स पर भी बात होगी और फुटबॉल यानी सुब्रतो कप U17 पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं विमेंस क्रिकेट की, जहां T20 एशिया कप का प्रीव्यू यानी मैच होने वाला है। बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैचेस की, जिसमें क्या क्या उम्मीदें हैं और कैसे इंडिया जीत सकती है ये मैच या फिर ये श्रीलंका मैच लेकर जाती है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। महिला एशिया कप का खिताबी मुकाबला आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा।

0: दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में अजय रही हैं और अब नजरें ट्रॉफी पर हैं। भारत के पास जहां पिछली बार की हार का हिसाब बराबर करने का मौका है, वहीं श्रीलंका लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम करना चाहेगा। मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत इस टूर्नामेंट में अब तक नहीं हारा है। टीम ने ग्रुप स्टेज में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान को हराया। इसके बाद सेमीफाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरी ओर श्रीलंका भी टूर्नामेंट में अजय रहा है। पिछले एशिया कप फाइनल में भी दोनों टीमें आमने सामने थी, जहां श्रीलंका ने खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में भारत के पास इस बार ट्रॉफी जीतकर उस हार का बदला लेने का मौका होगा। ये महिला एशिया कप का 10वां फाइनल होगा और भारत हर बार फाइनल में पहुंचा है। टीम 4 बार वनडे और अब 6ठी बार T20 फॉर्मेट का फाइनल खेलेगी। वनडे फॉर्मेट के चारों फाइनल भारत ने जीते हैं। T20 में टीम 2012, 2016 और 2022 में चैंपियन बनी है, जबकि 2018 और 2024 में रनर अप रही थी। T20 में दोनों टीमों के बीच कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं। भारत ने 25 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 5 मैचों में सफलता मिली है, एक मैच बेनतीजा रहा है। हालिया रिकॉर्ड भी भारत के पक्ष में है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले 10 में से 9 मुकाबले जीते हैं। भारत की बल्लेबाजी में शेफाली वर्मा शानदार फॉर्म में है। वही इस एशिया कप की टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने 4 मैचों में 169.69 की स्ट्राइक रेट से 168 रन बनाए हैं। उनकी ओपनिंग पार्टनर स्मृति मंधाना भी 168 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा टूर्नामेंट की सबसे सफल गेंदबाज है। उन्होंने 4 मैचों में 3.52 की इकोनॉमी से 11 विकेट लिए हैं। श्री चरणी ने भी 4 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं। भारतीय दल की कप्तान ने मैच को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
1: एज अ कैप्टन आई एम रियली हैप्पी द वे यू नो आवर बैटिंग यूनिट केम अप ऑन दिस डिफिकल्ट सिचुएशंस बट स्टिल वी मैनेजिंग टू गेट रन्स ऑन द बोर्ड एंड व्हेनेवर यू नो वी आर बॉलिंग आवर बॉलर्स आर कमिंग अप विद सम रियली सॉलिड परफॉर्मेंसेस सो आई थिंक या ओवरऑल रियली हैप्पी द वे वी हैव प्लेड सो फार एंड होपफुली विल कम अप विद सम सॉलिड परफॉर्मेंसेस द लास्ट टाइम व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका दे केम अप विद सम रियली सॉलिड plans and solid performances. I think T20 is all about, you know, on given day, who is gonna now, you know, play best cricket, they're gonna win. There is no doubt about me. Any team is stronger, any team is, you know, lesser than anyone. So I think it's all about, you know, playing good cricket on an important day and, you know, both the teams are looking to play, you know, their best cricket and hopefully, you know, we'll come up with some solid performances.
0: अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंकाई टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू से ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद होगी। उन्होंने 4 मैचों में 4.06 की इकोनॉमी से 11 विकेट लिए हैं। इंडोनेशिया के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 5 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे, जो महिला एशिया कप के टूर्नामेंट में किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने मैच को लेकर कहा,
2: एज अ कैप्टन आई एम रियली हैप्पी द वे द यंगस्टर्स प्ले स्पेशली मिडल ऑर्डर्स हर्षिता एंड अदर्स लाइक कविशा सीनियर प्लेयर नीलाक्षी द वे दे बैटेड इन द मिडल ओवर्स दे एब्सॉर्ब द प्रेशर गेम एवरी टाइम इन द मिडल रियली गुड साइंस बट द थिंग इज वी नीड टू इम्प्रूव अवर बैटिंग एज अ टॉप 3 And yeah, no, if we can execute our plans, I mean, we can change the results. But the thing is, this format is very open for the both teams. So a particular day who will play best cricket and do less mistakes, that team will win.
0: दुबई की धीमी पिच पर इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहा है। ऐसे में टॉस की भी अहम भूमिका हो सकती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी चुन सकती है, क्योंकि अब तक 14 में से 9 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो अब इंतजार है इस मुकाबले का, जहां भारत के सामने श्रीलंका की चुनौती होगी और दांव पर होगी महिला एशिया कप की ट्रॉफी। भारत अपने शानदार रिकॉर्ड और मौजूदा फॉर्म के साथ मैदान पर उतरेगा, जबकि श्रीलंका पिछले फाइनल की जीत को दोहराना चाहेगा। दुबई में रात 8 बजे से होने वाले इस मुकाबले पर सभी की नजरें होंगी। क्या भारत इस बार श्रीलंका को हराकर एशिया कप अपने नाम करेगा, या श्रीलंका की टीम एक बार फिर चैंपियन बनेगी? फाइनल का फैसला आज होगा। अब बात पुरुष क्रिकेट की, बात करते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के पहले T20 की और सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि आज अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा, वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन। मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
4: Both of us, Gotibaya and I, we have been in this

0: scenario where we need to know the players, how they can deliver for the team, and the more matches we win, the more we would be getting to know each other closely. And I've worked with him in the past in KKR, so I definitely know how his mind works and how his approach is going to be.
1: भारत की ओपनिंग जोड़ी को लेकर भले ही सस्पेंस बरकरार हो, इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि जसप्रीत बुमराह आज T20 फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं। दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच और कंडीशन कैसे होंगे, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है, इन सभी सवालों के जवाब आगे मिलेंगे। सबसे पहले दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। अफगानिस्तान ने कभी इंटरनेशनल मैच में भारत को नहीं हराया है। दोनों के बीच अब तक 2 टेस्ट, 7 वनडे और 9 T20 मैच खेले गए हैं। तीनों फॉर्मेट मिलाकर दोनों टीमों के बीच कुल 18 मैच हुए हैं। इनमें से 15 भारत ने जीते हैं, 2 मैच टाई रहे हैं और 1 बेनतीजा समाप्त हुआ है। ईशान किशन साल 2026 में भारत के सबसे सफल T20 बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने 23 मैचों में 176.90 की स्ट्राइक रेट से 812 रन बनाए हैं। इस दौरान 103 रन उनका बेस्ट स्कोर रहा है। गेंदबाज में हर्षदीप सिंह ने इस साल 19 मुकाबलों में 25 विकेट हासिल किए हैं। वे टीम के टॉप विकेट देकर हैं और 51 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है। अफगानिस्तान को अपने ओपनर इब्राहिम जादरान से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वे इस साल 7 मैचों में 307 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर हैं। वहीं गेंदबाजी में टीम को स्पिनर राशिद खान से उम्मीदें होंगी। उनके साथ अजमतुल्ला उमरजई देंगे जो इस साल टीम के टॉप विकेट टेकर रहे हैं। उन्होंने 6 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के मुफीद मानी जाती है। छोटी बाउंड्री के कारण ज्यादा चौके छक्के लगने की उम्मीद है। मैच के बढ़ने के साथ साथ स्पिनरों को भी थोड़ी मदद मिल सकती है। और साथियों, अब वक्त हो चला है हमारी एशियन गेम्स पर आधारित स्पेशल सीरीज का, तो आइए सुनते हैं उस पर ये एक विशेष रिपोर्ट।

0: एशिया कप के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक एशियन गेम्स 2026 इस बार जापान के आइची नागोया में आयोजित होने जा रहा है। अलग अलग खेलों में एशिया के बेहतरीन खिलाड़ी आमने सामने होंगे और भारतीय दल की नजरें भी अपने पिछले प्रदर्शन को और बेहतर करने पर होंगी। अब आइची नागोया में एक बार फिर शूटिंग में भारत को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बार भारत ने राइफल, पिस्टल और शॉटगन को मिलाकर 30 सदस्यीय शूटिंग टीम चुनी है। टीम में 15 पुरुष और 15 महिला निशानेबाज हैं।
1: इस टीम की सबसे बड़ी स्टार है दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर। मनु 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में भारत की चुनौती पेश करेंगी। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु के साथ सुरुचि और ईशा सिंह होंगी, वहीं 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में मनु के साथ ईशा सिंह और अनुभवी राही सरनोबत शामिल हैं। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में केदार लिंग बी, उच्चाग गनवे, कमलजीत और आकाश भारद्वाज हैं। खास बात यह है कि तीनों ही अपना पहला एशियन गेम्स खेलेंगे। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिल भानवाला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राइफल की बात करें तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम में पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों और रुद्रांश पाटिल हैं। वहीं महिला टीम में एला वेनिल वलारीवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद शामिल हैं। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस में पुरुषों की टीम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, तोमर, नीरज कुमार और रुद्रांश पाटिल हैं। महिलाओं में आशी चौंकसे, विदर्शा के विनोद और तिलोत्तमा सेन भारत की चुनौती पेश करेंगी। मिक्स टीम इवेंट में भारत के पास मजबूत जोड़ियां हैं। 10 मीटर एयर राइफल में पार्थ माने और एलावेनिल वलारिवन, जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग उच्चागनवे और सुरुचि की जोड़ी मैदान में उतरेगी। शॉटगन में भी भारत के अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलन रखा है। पुरुषों के ट्रैप में कायनान चेन्नई, एहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज, जबकि स्कीट में अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेज सिंह गिल और मिराज अहमद खान शामिल हैं। महिलाओं के ट्रैप में नीरू मनीषा कीर और आशिमा अहलावत, जबकि स्कीट में परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान भारत की चुनौती पेश करेंगी। ट्रैप और स्कीट के मिक्स टीम इवेंट में भी भारत के पास पदक की उम्मीदें हैं।
0: अब बात करते हैं भारतीय शूटिंग के पिछले एशियन गेम्स के अनुभव की। होंगझोउ एशियन गेम्स 2023 में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। भारत

0: शूटिंग में 22 पदक जीते थे, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। ये प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले भारत ने 2006 दोहा एशियन गेम्स में 14 पदक जीते थे, जबकि जकार्ता पालेमबंग 2018 में भारत के खाते में 9 पदक आए थे। हांगझोउ में भारतीय शूटिंग टीम ने न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ाई बल्कि कई युवा खिलाड़ियों ने भी बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाई। हालांकि इस बार हांगझोउ के उस 22 सदस्यीय मेडल विनिंग स्क्वाड के सिर्फ 6 खिलाड़ी मौजूदा राइफल और पिस्टल कॉन्टिंजेंट में है। इसमें रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, आशी चौक से मनु भाकर, ईशा सिंह और अनिश भानवाला शामिल हैं। पुरुषों की पूरी 10 मीटर एयर पिस्टल टीम के अलावा राइफल में नीरज कुमार और तिलोत्तमा सेन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। युवा पिस्टल शूटर सुरुचि भी पहली बार एशियन गेम्स में उतरेंगी, इसीलिए आईजी नागोया का अभियान भारतीय शूटिंग की अगली पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।
1: अब बात तैयारी की। एशियन गेम्स से पहले भारतीय निशानेबाजों का फोकस अपनी तकनीक को बेहतर करने के साथ साथ कंपटीशन के दबाव के लिए खुद को तैयार करने पर है। भोपाल के एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी में भारतीय शूटिंग टीम का अंतिम प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप में 18 निशानेबाज, 9 पुरुष और 9 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मनु भाकर, ईशा सिंह और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जैसे प्रमुख खिलाड़ी भी शामिल हैं। कैंप में खिलाड़ियों की शूटिंग स्किल्स के साथ फिटनेस, रिकवरी और मेंटल स्ट्रेंथ पर भी काम किया जा रहा है। 10, 25 और 50 मीटर की आधुनिक रेंजेस पर उन्हें कॉम्पिटिशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा NRAI ने दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में भी फाइनल प्रिपरेशन की योजना बनाई है। भारतीय टीम का फोकस सिर्फ एक मजबूत टीम तैयार करने पर नहीं है बल्कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने की रणनीति पर भी रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्या भारत हांगझोउ के 22 पदकों वाले प्रदर्शन को दोहरा पाएगा। इस बार टीम में अनुभवी नामों के साथ कई नए चेहरे हैं। जहां भारतीय टीम को अनुभव के दम पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, वहीं युवा निशानेबाज अपने पहले एशियन गेम्स में खुद को साबित करना चाहेंगे। अब देखना होगा कि जापान की शूटिंग रेंज पर भारतीय निशानेबाज कितनी सटीकता से निशाना साधते हैं और क्या ये हांगझोउ की सफलता को आईची नागोया में भी दोहरा पाते हैं।
0: शूटिंग के बाद अब बात एक ऐसे खेल की जो इस बार पहली बार एशियन गेम्स में मेडल स्पोर्ट के तौर पर शामिल हो रहा है। टेक बॉल एक कर्व टेबल पर फुटबॉल से खेला जाता है। मुकाबला बेस्ट ऑफ 3 सेट का होता है और एक सेट जीतने के लिए 12 पॉइंट्स हासिल करने होते हैं। ये सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स तीनों कैटेगरी में खेला जाता है और खिलाड़ी गेंद को हाथ या आर्म से नहीं खेल सकते। भारत में टेक बॉल की शुरुआत करीब 2018 और 19 के आसपास हुई थी। कोविड के कारण खेल को शुरुआती दौर में झटका लगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग शहरों में इस खेल ने तेजी से अपनी जगह बनाई है। अब एशियन गेम्स में टेक बॉल को शामिल किए जाने के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों के पास इस स्पोर्ट को बड़े मंच पर पहचान दिलाने का मौका है।
1: आईची नागोया एशियन गेम्स में भारत की ओर से अनस बैग, डेक्लन गोंजाल्वेज और क्विंसी डिसूजा चुनौती पेश करेंगे। क्विंसी डिसूजा वुमेन्स सिंगल में खेलेंगी और मिक्स्ड डबल में अनस बैग के साथ जोड़ी बनाएंगी। वहीं मेंस डबल में अनस और डेक्लन गोंजाल्वेस की जोड़ी उतरेगी। इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पदक दिला चुकी है। 2024 वर्ल्ड टेक बॉल चैंपियनशिप में अनस और डेक्लन ने वियतनाम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन गेम्स में टेक बॉल के मुकाबले 17 से 20 सितंबर के बीच होने की उम्मीद है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये सिर्फ पदक जीतने का मौका नहीं बल्कि देश में इस पर स्पोर्ट्स को ज्यादा पहचान दिलाने का भी बड़ा मंच है। तीनों खिलाड़ी फिलहाल मुंबई में एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनका लक्ष्य जापान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना और भारतीय खेल प्रेमियों को टेकबॉल से और ज्यादा परिचित कराना है। आईची नागोया में ये भारत के लिए एक नई शुरुआत होगी। जहां एक तरफ अनुभवी खिलाड़ी पदक के लिए उतरेंगे, वहीं टेकबॉल जैसे नए खेल में भारतीय खिलाड़ी देश को एक नई स्पोर्टिंग पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे।

बात करते हैं ताइक्वांडो की, जहां आईटी नगोया एशियन गेम्स में भारत एक छोटे लेकिन प्रतिभाशाली दल के साथ चुनौती पेश करेगा। इस बार भारत की ओर से 3 महिला खिलाड़ी मैदान में उतरेंगी। रूपा बयोर वुमेन्स इंडिविजुअल पोमसे में हिस्सा लेंगी, जबकि कशिश मलिक

0: विमेन्स 57 केजी क्यूरोगी में और ज्योति यादव विमेन्स 67 केजी से ज्यादा क्यूरोगी कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत की मौजूदा टीम में खास नजर रूपा बयोर और कशिश मलिक पर होंगी। दोनों ने हाल के एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए ऐतिहासिक पदक जीते हैं, जिससे भारतीय टैकोंडो में एक नई उम्मीद जगी है। रूपा बयोर पिछले कुछ वर्षों में भारत की प्रमुख पोम्से खिलाड़ियों में उभरी हैं। वो टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप यानी TAGG का हिस्सा रही हैं। इस साल उन्होंने बेंगलुरु में हुए नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 9th एशियन टैकोंडो पोम्से चैंपियनशिप्स के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है। हाल में एक इंटरनेशनल टैकोंडो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने एशियन गेम से पहले अपनी तैयारी और मजबूत की है। वहीं कशिश मलिक ने 2026 एशियन टैकोंडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनका ये प्रदर्शन खास इसलिए भी है क्योंकि क्यूरोगी में भारत को एशियन लेवल पर मजबूत देशों से कड़ी चुनौती मिलती है।
1: पिछले एशियन गेम्स में भारत का टैकोंडो दल काफी छोटा था। हांगझोउ एशियन गेम्स में शिवांश त्यागी और मार्गरेट मारिया भारत के सिर्फ दो प्रतिनिधि थे। दोनों ही अपने अपने वेट कैटेगरीज में राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ सके थे। अब आईची नागोया में भारत की कोशिश इस प्रदर्शन से आगे निकलने की होगी। इस बार भी स्क्वाड छोटा है, लेकिन हालिया इंटरनेशनल रिजल्ट्स ने उम्मीद जरूर बढ़ाई है। इस साल जनवरी में जयपुर के SMS इंडोर स्टेडियम में हुए इंडियन टैकोंडो ओपन सिलेक्शन ट्रायल्स के साथ एशियन गेम्स के लिए नेशनल सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत हुई थी। इसके बाद खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेकर अपनी तैयारी को परखा है। आईची नागोया में भारतीय खिलाड़ियों के सामने साउथ कोरिया, ईरान और चाइना जैसे टैकोंडो की मजबूत एशियन टीम्स होंगी। ऐसे में चुनौती आसान नहीं होगी, लेकिन हाल के एशियन चैंपियनशिप में मिले मेडल्स ये दिखाते हैं कि भारतीय खिलाड़ी टॉप एशियन कॉम्पिटिशन के खिलाफ मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं।
0: तो आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारत की उम्मीदें कई खेलों और कई नए नए प्रतिभाओं से जुड़ी हैं। शूटिंग में अनुभवी सितारों और युवा निशानेबाजों की मजबूत टीम है। टैगबॉल में भारत पहली बार मेडल स्पोर्ट के रूप में अपनी चुनौती पेश करेगा, जबकि टैकोंडो में युवा खिलाड़ी बड़े एशियाई मुकाबले के लिए तैयार हैं। तीनों खेलों में चुनौतियां अलग हैं, मुकाबला कड़ा है, लेकिन लक्ष्य एक ही, देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना और तिरंगे का मान बढ़ाना। एशियन गेम 2026 के लिए हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं।

0: अब आपको ले चलते हैं यूएस ओपन 2026 की ओर, जहां हम आपको सुनाते हैं विमेंस यूएस ओपन और मेंस यूएस ओपन के मैच की ये रिपोर्ट।
1: न्यूयॉर्क के आर्थर ईश स्टेडियम में टेनिस का रोमांच अपने चरम पर पहुंचा, जहां यूएस ओपन 2026 के महिला सिंगल्स फाइनल में कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना ने इतिहास रच दिया। रायबाकिना ने दो बार की मौजूदा चैंपियन और दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी आयरना सबालेंका को 3 सेट के रोमांचक मुकाबले में 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर पहली बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया।
2: Elena Rybakina is the new world number one and the new U.S. Open champion. First Wimbledon, then the Australian this year, and now a U.S. Open champion for the first time.
1: आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल में दुनिया की दूसरी वरीयता प्राप्त एलिना रायबाकिना ने शुरुआत से ही आक्रामक और नियंत्रित टेनिस का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहला सेट 6-4 से अपने नाम किया, लेकिन सबालेंका ने जोरदार वापसी की। दूसरे सेट में बेलारूस की इस खिलाड़ी ने रायबाकिना को कड़ी चुनौती दी और 7-5 से सेट जीतकर मुकाबले को निर्णायक तीसरे सेट तक पहुंचा दिया। तीसरे सेट में रायबाकिना ने अपनी सर्विस और पावरफुल ग्राउंड स्ट्रोक्स के दम पर बनाए रखा। उन्होंने सबालेंका की सर्विस तोड़ी और 6-2 से सेट जीतते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ 27 वर्षीय रायबाकिना ने अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इससे पहले वे 2022 में विंबलडन और इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन की चैंपियन बनी थी, यानी 2026 में ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। रायबाकिना के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि यूएस ओपन में उनका पिछला रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली नहीं था। न्यूयॉर्क में अपने पहले 6 दौरों में वो कभी तीसरे दौर से आगे नहीं बढ़ सकी थी। 2025 में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4थे दौर तक पहुंचा था, लेकिन 2026 में उन्होंने इस रिकॉर्ड को पूरी तरह बदल दिया।

0: ये सुनते हैं राय बाकिना ने अपनी जीत पर क्या कहा।
1: I just won this beautiful title. I still can't believe, and it was such an amazing atmosphere here in New York. And I just want to say thank you for all the support. And yeah, it's just amazing, and I can't find the words. Thank you so much again for all the love and support.
0: फाइनल से पहले ही राय बाकिना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। सेमीफाइनल में पहुंचते ही उन्होंने पहली बार विश्व की नंबर एक महिला खिलाड़ी बनने की जगह पक्की कर ली थी। वह WTA इतिहास में दुनिया की नंबर एक रैंकिंग हासिल करने वाली 30वीं महिला खिलाड़ी बनी। इसके बाद आयरना सबालेंका का लगातार 99वें सप्ताह तक नंबर एक रहने का सिलसिला भी समाप्त हो गया। वहीं आयरना सबालेंका का लगातार तीसरा US ओपन खिताब जीतने से चूक गई। अगर वे जीत जाती तो ओपन एरा में क्रिस एवर्ट और सेरेना विलियम्स के बाद लगातार तीसरी US ओपन खिताब जीतने वाली तीसरी महिला बनती। इसके अलावा ये उनका US ओपन में लगातार चौथा फाइनल था। सबालेंका ने अपनी हार के बाद कहा कि
1: थैंक यू फॉर सपोर्ट थ्रूआउट 2 weeks. It was amazing playing in front of you all, and obviously I'm disappointed, but I want to congratulate Elena on an incredible year, on incredible results.
0: राय बाकिना और सबालेंका के बीच ये मुकाबला इस साल का एक और बड़ा अध्याय था। दोनों खिलाड़ी 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में भी आमने सामने थी, जहां राय बाकिना ने जीत हासिल की थी। इसी तरह एक ही साल के दो हार्ड कोर्ट ग्रैंड स्लैम के फाइनल में आमने सामने आने वाली ये जोड़ी 1994 के बाद पहली महिला जोड़ी बनी। इस तरह न्यूयॉर्क में एलिना राय बाकिना ने सिर्फ अपना पहला US ओपन खिताब ही नहीं जीता, बल्कि दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी के रूप में अपने नए युग की शुरुआत भी की। 2026 का US ओपन उनके करियर में एक ऐसे पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क की चुनौती को पार कर टेनिस की दुनिया पर अपनी जगह का ऐलान किया।
2: और अब बात मैन सिंगल्स की। US ओपन 2026 के मैन सिंगल्स खिताब के लिए आज दुनिया की नजरें टिकी हैं। फाइनल में आमने सामने होंगे अमेरिका के बेन शेल्टन और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव। एक तरफ घरेलू दर्शकों के सामने पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे हैं शेल्टन, तो दूसरी ओर दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी ज्वेरेव अपने दूसरे मेजर खिताब की तलाश में हैं। 23 वर्षीय बेन शेल्टन के लिए ये फाइनल बेहद अहम है। 8वीं रैंक प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में हमवतन फ्रांसिस टियाफो को 4 सेटों में हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई। जीत के बाद शेल्टन ने कहा,
3: Every time that we get to take this court together, Arthur Ashe, and play each other is super special, but this is where we want to be at the tail end of this tournament. This is both of our favorite tournament in the world, our favorite court in the world, and to be able to light it up in front of you guys.
2: इससे पहले क्वार्टर फाइनल में शेल्टन ने गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज को 5 सेट के मैराथन मुकाबले में हराया था। ये मैच 4 घंटे 28 मिनट तक चला और US ओपन इतिहास में सबसे देर से खत्म होने वाला मुकाबला बना। शेल्टन अब एंडी रॉडिक के बाद किसी ग्रैंड स्लैम का सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले अमेरिकी बनने से सिर्फ एक जीत दूर हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती बेहद बड़ी है। दुनिया के नंबर एक अलेक्जेंडर ज्वेरेव इस साल शानदार फॉर्म में है। जर्मन खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब अपने नाम किया और एक ही साल में 2 ग्रैंड स्लैम जीतने का मौका उनके सामने है। सेमीफाइनल में ज्वेरेव ने रूस के करेन खाचानोव को सीधे सेटों में हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। जीत के बाद ज्वेरेव ने कहा कि
3: I think it's going to be incredibly special. Especially these two guys, Francis and Ben, they're the crowd favorites here in New York. I cannot make the American dream come true on Sunday.
2: ज्वेरेव का अनुभव और रिकॉर्ड भी शेल्टन के खिलाफ उनके पक्ष में है। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक 5 मुकाबले हुए हैं और हर बार ज्वेरेव ने जीत हासिल की है। हालांकि दोनों पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में आमने सामने होंगे।
0: अब आगे बढ़ते हैं मेक्सिको आर्चरी वर्ल्ड कप की ओर। मेक्सिको के सोल्टिलो में जारी 2026 ह्यूंडई आर्ची वर्ल्ड कप फाइनल अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। इस साल की प्रतियोगिता खास है क्योंकि ये आर्ची वर्ल्ड कप का 20वां संस्करण है। दुनिया के 32 चुनिंदा तीरंदाज 4 वर्गों रिकर्व पुरुष, रिकर्व महिला, कंपाउंड पुरुष और कंपाउंड महिला में विश्व कप जीतने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। भारत के लिए खास उम्मीद धीरज बोम्बादेवर से है। अंतालिया के चैंपियन धीरज के सामने अब तुर्की के बरकिम तुमेर की चुनौती है। अगर धीरज लगातार 3 मुकाबले जीतते हैं तो वे पहली बार ह्यूंडई आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन बन सकते हैं। इसके साथ ही कल कंपाउंड वर्ग में दो नए रिकॉर्ड बने। कंपाउंड पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के निको

0: ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल का खिताब अपने नाम किया। वहीं कंपाउंड महिला वर्ग में अमेरिका की एलेक्सिस रुइज ने मेजबान मेक्सिको की डेफने किंतवेरो की बेहद करीबी फाइनल में 145-144 से हराकर खिताब जीता।
1: और अब बात करते हैं जूनियर एशिया कप हॉकी की, जिसमें इंडिया ने चाइना को हराकर अब ये मैच जीत लिया है। तो सुनते हैं इस पर रिपोर्ट।
0: भारतीय हॉकी की जूनियर वुमेन्स टीम ने एक बार फिर एशिया में अपना परचम लहरा दिया है। चीन के मोकी में खेले गए AHF जूनियर महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ भारत ने लगातार तीसरी बार जूनियर महिला एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एशियाई जूनियर हॉकी में उसका दबदबा कायम है। खिताबी मुकाबले में भारत के सामने मेजबान चीन की चुनौती थी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा रहा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही शानदार संयम और मजबूत खेल दिखाया। भारत को मैच का निर्णायक गोल 17वें मिनट में मिला। सानिका चंद्रकांत माने ने शानदार फिनिश करते हुए भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद चीन ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन के हर हमले को नाकाम किया। भारतीय गोलकीपर और डिफेंस ने आखिरी सिटी तक अपनी एक गोल की बढ़त को बरकरार रखा। आखिरकार भारत ने चीन को 1-0 से हराकर AHF जूनियर महिला एशिया कप 2026 खिताब जीत लिया। भारत का इस टूर्नामेंट में सफर भी बेहद प्रभावशाली रहा। पूल चरण में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1, मलेशिया को 11-1 और जापान को 7-0 से हराया। मेजबान चीन के खिलाफ पूल मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 19-0 की बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इस मुकाबले में सुप्रिया ने शानदार हैट्रिक लगाई थी और अब फाइनल में चीन के खिलाफ 1-0 की जीत ने भारतीय टीम के शानदार अभियान पर मुहर लगा दी। इस जीत की सबसे बड़ी खासियत है जूनियर महिला एशिया कप में भारत की हैट्रिक, यानी भारत ने लगातार तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। वही पुरुष वर्ग में भारतीय पुरुष टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 से मात दी।
1: और अब बात करते हैं PSA स्क्वैश कतर क्लासिक्स की, जिसमें PSA स्क्वैश टूर के मुकाबले में भारत के अनाहत सिंह को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे दौर के मुकाबले में अनाहत सिंह को टीने गिलिस ने 3-2 से हराया। 58 मिनट तक चले इस मुकाबले में गिलिस ने पहला गेम 11-4 से अपने नाम किया। अनाहत ने वापसी करते हुए दूसरा गेम 11-8 से जीता। तीसरे गेम में गिलिस ने 11-9 से बढ़त बनाई। अनाहत ने चौथे गेम में शानदार वापसी की और 11-4 से जीत दर्ज करके मुकाबला 2-2 के बराबर किया। लेकिन निर्णायक पांचवें गेम में गिलिस ने 11-3 से जीत हासिल करके इस तरह अनाहत सिंह को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। तो ये था आज के कार्यक्रम में, बस इतना ही। मुझे यानी सिमरन को और मेरे साथी अभिषेक कपिल को दीजिए अनुमति। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर हैं शाहनवाज खान। नमस्कार।
2: अभी आप खेल खिलाड़ी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है, बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है, और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
4: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
3: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन

0: के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज, बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है, जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही। चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया, जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions, and the discussions over the past 2 days have further strengthened this conviction. He said this during his concluding remarks at the BRICS session on resilience, innovation, cooperation and sustainability at the Bharat Mandapam in New Delhi. Mr. Modi hoped that the New Delhi declaration adopted at BRICS summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. He stressed on the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
2: Saying that BRICS is poised to enter its third decade, Mr. Modi asserted that the world now expects concrete results from the grouping and not just ideas and commitments. He expressed confidence that BRICS will certainly live up to these expectations through collective efforts. Prime Minister extended his best wishes to China as the next chair of BRICS. Earlier, addressing the open session of BRICS summit, Prime Minister Modi said pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with world leaders on the sidelines of the BRICS Summit 2026. He met President of Kazakhstan, Kasym Zomart Tokayev, and reviewed the progress in bilateral relations. The two leaders reviewed cooperation in a range of areas, including politics, trade, defense and security, connectivity, energy, critical minerals, emerging technologies and creative economy, and people-to-people ties. The Prime Minister also held a meeting with Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi. In a social media post, Mr. Modi said the two leaders discussed various issues, particularly regional developments and the India-Egypt partnership, which has been growing significantly in recent time. Mr. Modi also held talks with Philippines President Ferdinand R. Marcos Jr. He welcomed the Philippines' participation in the BRICS summit as the current ASEAN chair. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. The two leaders exchanged views on regional and global developments and discussed ways to further advance bilateral cooperation between India and Saudi Arabia. Finance Minister Nirmala Sitharaman met Uzbekistan's Deputy Prime Minister and Minister of Economy and Finance Jamshid Kochkarov in New Delhi on the sidelines of the BRICS summit. In a social media post, Ms. Sitharaman said, during the meeting, both sides discussed strengthening bilateral economic and financial cooperation and exchanged views on areas of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said that the nature of the diamond trade is changing with the emergence of lab-grown diamonds. He said that the lab-grown diamonds market in terms of volume is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. In hockey, India's women's team has won the Junior Asia Cup title for the third consecutive time. The defending champions defeated China 1-0 in the final at Moshi in China this afternoon. Sanika Chandrakant Mane scored the only goal of the match in the 17th minute to help India secure the victory. With this triumph, India completed a hat-trick of Junior Asia Cup titles, having also won the championship in 2023 and 24. In men's cricket, India will begin the three-match 2020 international series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi this evening. The match will start at 7 p.m. Indian time. And in the Women's T20 Asia Cup cricket final, India will face defending champion Sri Lanka in Dubai today. India are the most successful team in Women's Asia Cup history with 7 titles. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल।
4: इस अंक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ब्रिक्स WBA वुमेन लेड डेवलपमेंट समिट और इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026 के संदर्भ में आयोजित पूर्वलोकन कार्यक्रम 9 सितंबर बुधवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ब्रिक्स देशों से आमंत्रित महिला उद्योगपतियों, प्रशासकों, नीति निर्धारकों ने भाग लिया। इस आयोजन का शुभारंभ आमंत्रित कलाकारों द्वारा बांसुरी वादन से हुआ।

श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झाह। आदौ मुख्याः वार्ताः। ब्रिक्स संघः न तावत् केवलं राष्ट्राणां परिगणित समुदायमात्रः अपितु वैश्विक विषमतानां परिहाराय एका अनन्यथा सिद्धा समाधान पारिस्थितिकी प्रणाली वर्तते इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवदिल्ली घोषणा पत्रं ब्रिक्स देशानां भावी सहयोगस्य अबाधित मार्गदर्शकम् इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य आह्वानं प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्र उत्पादन श्रृंखला भारतस्य प्रभुत्वे एव अवचिन्ना तिष्ठेत्। अपि च दुबई नगरे निवर्त्यमानायाः T20 एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः चरमे सोपाने अद्य भारतं श्रीलंका दलेन सह पक्ष प्रतिपक्ष भावेन सम्मुखी भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् ब्रिक्स न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां किञ्चन पारिस्थितिकी तंत्रमस्ति। विगत

प्रामाण्य पुरस्सरम अभिहितम यद उभौ पक्षौ बहुविध क्षेत्रेषु स्वकीयां संधिम पुनरपि समुनिष्यतः तेन राष्ट्रपति प्रबोव इत्यस्य सहज सौहार्दम आशावाद्योन्मेषश्च भूरिशः प्रशंसितः। अपरञ्च प्रधानमन्त्रिणा फिलीपींस देशस्य राष्ट्रपतिना फर्डिनेंड आर मार्कोस इत्यनेन सह उच्चस्तरीय संभाषणं समाचरितम्। आसियान अध्यक्ष रूपेण फिलीपींस देशस्य ब्रिक्स सम्मेलने उपाधिरहितां सहभागितां सह सहर्षम् अन्वमोदत। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगे व्याप्तिज्ञानेन साधितां सम्पूर्तिं प्रति पूर्णं संतोषं प्रकटितवन्तौ। तथा ही प्रतिरक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश अंतरिक्ष रेल शिक्षा पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी जनसंपर्क क्षेत्रेषु च कूटनीतिक संबंधानां अनन्यथा सिद्धत्वं सुदृढीकर्तुम् अंगीकारं प्रापतुः। रत्नाभूषण क्षेत्रे स्वावलंबनस्य आह्वानं कुर्वन् गृहमंत्री अमित शाहः मुंबईयां उपस्थापयत् यत् प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्रा पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण श्रृंखला पूर्णतया भारते एव नियंत्रणीया। मंत्रिणा उद्घोषितं यत् भारतस्य पार्श्वे अस्मिन् नवसरे विजय प्राप्त्यै पूर्णा क्षमता वर्तते। समारोहे राज्यस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे च उपस्थितौ आस्ताम्। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां अंतरराष्ट्रीय स्वीकृतिम् उद्घोषयन् आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव प्रावोचत यद् ब्रिक्स घोषणापत्रे TCIM इत्यस्य समावेशः भारतस्य महती संपूर्तिः अस्ति। मंत्रिणा प्रतिपादितं यद् वैज्ञानिक अनुसंधानैः गुणवत्ता नियंत्रणैः च आयुर्वेद पद्धतिं विश्वस्तरे प्रतिष्ठापयितुं प्रशासनं अनवरतं प्रयतते। महिलानां 20-20 एशिया चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमे चक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य प्रतिस्पर्धा श्रीलंका दलेन। उभयपि दले भारतं श्रीलंका

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय 6:30 हुए हैं शाम के। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: अश्वनी भाई
1: जी।
0: भाई मौसम में बदलाव बड़ा चल रहा है। एक
1: जी
0: तो ध्यान रखना है सभी भाइयों को कि मौसम के बदलाव से होने वाली बीमारियों से बचें,
1: जी
0: और साथ साथ जो खेती किसानी के काम है उसमें भी पहले से ही जैसे कि पूर्वानुमान मौसम का बताया जाता है उसके अनुरूप अपने कृषि की योजनाएं बनाएं, और जो मौसम का मिजाज जिस तरह का रहना है उसी तरह से अपनी सारी योजनाएं कृषि की बनाएं।
1: बिल्कुल
0: तो ये कुछ जरूरी बात है। और आज तो जो भाइयों के बहुत सारे संदेश आए हैं फरमाइश के लिए,
1: जी
0: तो पहले हम भाइयों की फरमाइश लेंगे, और सबसे पहले सुनवाएंगे भाइयों की फरमाइश पर नरदेव बेनीवाल की आवाज़ में रागणी। और इसके लिए जो हमारे पास फरमाइश आई है ये है छत्तीसगढ़ बालोद से देव शंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया और इनका परिवार। यह अनारकली बाजार जगराऊं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और इनका परिवार। ये हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, आजाद नगर हरिद्वार उत्तराखंड से, गांव ढाणी, लाल खां अनोहर से जावेद खान, अरमान खान और इनका परिवार। ये हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और इनका परिवार। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार।

0: जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया और इनका परिवार। दादरी गेट भिवानी से पुराने श्रोता हैं हमारे, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, ये हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से पुराने श्रोता हैं ये भी, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना और इनका परिवार। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र और इनका परिवार। ये हैं डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये और अनिस्का, इनका परिवार। रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनका परिवार। वर्निंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती और इनका परिवार।
1: और गांव फरासी जिला हिसार से ये पत्र मिला है जिन्होंने सुनना चाहा है, नरदेव बेनीवाल को, राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी और उनका पूरा परिवार। ये है नरवेला महाराज से पत्र इन्होंने लिखा है, पीएस नेहवाकर, निर्मला नेहवाकर, उनका पूरा परिवार। और ये कमलापुर महाराज से एक पत्र और लिखते हैं, नारायण झालेसो और उनका पूरा परिवार। वहीं पर एक नूर महल महल सोल सीतामणि बिहार से पत्र में लिखते हैं, ये है फतेह जहां नाज, रियाज अताज नहाज और उनका पूरा परिवार। और पाटन टोली केरल से ये परवीन जी हैं और उनका पूरा परिवार। और नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाम मंजिल महलौल सीतामणि से अकरम हुसैन, बेगम वसीम अकरम, रुबीना वसीम, अरजीम उनका पूरा परिवार। विक्रम और इनका ये है, गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कंडवासरा, सचिन कंडवासरा, योगेश कंडवासरा उनका पूरा परिवार।
0: और अश्विनी भाई ये बता दें, ताराचंद के किस्से की रागणी है, जिस समय चंद्रगुप्त धर्म मालिकी को टापू पे छोड़ के घबरा जाता है कि भाई शादी कर ली थी, घर पे कैसे बताएगा, बच्चा था, घबरा गया और उसे वहीं पे छोड़ के एक चिट्ठी लिख के चला गया और उसमें सारा हवाला उसने लिख दिया कि मैं कौन था, कैसे था और वहां से चला गया। तो वो जो चिट्ठी लिख के छोड़ के जाता है
1: जी,
0: उस मौके की रागनी है। सुनते हैं नवदेव बेनीवाल की आवाज में।

0: अश्विनी भाई,
1: जी
0: ये भाई सुन रहे थे नरदेव बेनीवाल को। और भाइयों की जो अगली पसंद है वो है भुलन त्यागी की आवाज़ में रागनी सुनने के लिए। और जो फरमाइश हमारे पास हैं ये है, बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अर्जु नारंग, मोहित नारंग और इनका परिवार। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और इनका परिवार। ये हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग और इनका परिवार। गांव लोहड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत और भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन। ये हैं करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, करण बत्ता, हार्दिक बत्ता। और यह दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और इनका परिवार। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और इनका परिवार। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी वंश और इनका परिवार। ये हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और इनका परिवार। और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता।

0: नागौर।
1: और ये पत्र मिला है, इन्होंने भूलन त्यागी को सुनना चाहा है। ये बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवगन, कौशल्या देवगन उनका पूरा परिवार, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल उनका पूरा परिवार। और ये पत्र हमें मिला है, ये मेरठ मेरठ के अंचल पत्र में लिखते हैं। ये कविता गौड़ और इनका पूरा परिवार। और यहाँ पर है एक कुमाल रोड, हर गोविंद नगर, नवा शहर पंजाब से है। सुंदर साहू, अनीता साहू, रोहित, रितेश, शिखा और उनका पूरा परिवार। और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से ये पत्र में मिला है, जिन्होंने सुनना चाहे बुलंद त्यागी को, सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर और उनका पूरा परिवार। और यहीं पर एक और पत्र मिला है, ये है ये भाटापारा छत्तीसगढ़ से है, दतरंगी से पत्र मिला है। ये हीरा मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा और उनका पूरा परिवार। और ये है जटवाड़ा गाजियाबाद से है, शीशपाल अकेला। और पुराना तालाब डमरऊ से पत्र मिला है, वलीलुल्लाह अंसारी, आजमनाज अंसारी। और जेल रोड बक्सर से पत्र मिला है, राज अंसारी और उनका पूरा परिवार।
0: तो सुन लेते हैं भूलन त्यागी को इन सभी की पसंद पर।

0: भूलन त्यागी के बाद अब भाइयों ने पसंद किया है एक दो गाना सफदरजंग राणा और सरोज कपूर की आवाज़ में। ऊपरकोट मोहल्ला चाखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन अब्बासी और इनका परिवार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर जिंदा, जसवीर जस्सी और इनका परिवार, छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू, और ये हैं हितेंद्र दास आसम से लिख रहे हैं, और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और इनका परिवार, गांव चोलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, शाहूनगर यवतमाल से राहु मनवर, सरला मनवर और इनका परिवार, ये हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, और रजौनी जिला महोबा बुलंदेलखंड से उदयभान पाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल और इनका परिवार, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी और इनका परिवार, ओल्ड लिसनर्स ग्रुप रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर और इनका परिवार, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन टिल्लू, और कैथल हरियाणा से मधु नायक।
1: और ये पत्र मिला है जिन्होंने सुनना चाहा है
0: राणा
1: को, और ये है जगदीश चंडालिया, राजीव चंडालिया, सतीश चंडालिया, ऋतिक चंडालिया और उनका पूरा परिवार।
0: तो सुनते हैं ये दो गाना इनकी पसंद पर।
2: मेरे घड़वा तेरा।

0: सफदरजंग राणा और सरोज कपूर के बाद अब भैया की पसंद है नीलम चौधरी को सुनने के लिए। ये पत्र है सूप जिला बागपत से रमेश कुमार, सुरेश कुमार, कृष्ण कुमार, मदन मोहन, अश्विनी, आशीष, अभिषेक, सतीन, लक्ष्य, नेहा, निकिता और श्रेयांश। ये हैं गांव बधेव जिला शामली से डॉक्टर सहेंद्र पाल शर्मा, हरेंद्र शर्मा, बबीता शर्मा और आशुतोष शर्मा। गांव रठोड़ा जिला बागपत से पुष्पेंद्र शर्मा, रीता शर्मा, अनमोल और खुशी शर्मा। और
1: ये पत्र मिला है कस्बा ज़िला अम्बाला से, ये रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और उनका पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ से पत्र मिला है, ये है बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रंजल, समीक्षा बेबी और उनका पूरा परिवार। और जलालाबाद वेस्ट से ये पत्र मिला है, जिन्होंने सुनना चाहा है नीलम चौधरी को, सुरेश गगनेचा, पूनम गगनेचा, विशाल गगनेचा, उनका पूरा परिवार।
0: और बाकी नाम हम कृषि जगत में ले लेंगे, सुन लेते हैं ये
1: नीलम चौधरी की आवाज़।

0: और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजने को है। आइए अब से कुछ देर में प्रसारित होंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह में मजबूती और लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटों ने यह दिखा दिया है कि आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट realities, but together we rise through cooperation and blossom for humanity.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और बरुंडे के राष्ट्रपतियों और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला आज रात 8 बजे मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: अश्वनी भाई
2: जी
0: भाई, देखिए जो हमारे किसान भाई हैं,
2: जी
0: खेती किसानी करते हैं, उसमें एक खास तौर पर जो पिछले काफी दिनों से समस्या देखने को मिल रही है कि कुछ भाई पराली का सही से निपटारा नहीं कर पाते हैं, जबकि उसके बहुत सारे उपयोग हैं, उपयोगी चीज है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: जी
0: एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने किसान भाई अपने पशुओं को
2: जी
0: पराली चारे के रूप में खिला सकते हैं, दूसरे चारे के साथ में। इसके अलावा आप कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आपकी भूमि में बढ़ेगी और उर्वरता भी बढ़ेगी। इसके साथ बायोगैस जिन्होंने लगाया है उसमें भी बायोगैस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उद्योगों में बायो ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप मल्चिंग के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन में मिट्टी के अंदर जो नमी है वो उड़ेना, इससे बचाव के लिए आप लाइन से लाइन के बीच में जो फसलें बोई हैं उनमें मल्च के रूप में इसे डालकर के नमी को उड़ने से बचा सकते हैं। इसके अलावा कई चीज़ें हैं, गत्ता कार्डबोर्ड इनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसके जलाने को से बचाएं, इसको अगर जलाएंगे तो उससे प्रदूषण आपका बढ़ेगा, जिससे और जो हमारे वायुमंडल में जो गैसेस हैं वो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाएंगी। वो ये सबसे ज़रूरी है कि बिल्कुल भी पराली को जलाना नहीं है।
1: और बिल्कुल साथ साथ में देखिए, साथ साथ में ये भी है कि पराली को अगर नहीं जलाएंगे तो कहीं पर किसानों के यहाँ के लिए लाभदायक ही है। अगर मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसका उपयोग कर सकते
0: भाई
1: हैं। और
0: मशरूम उत्पादन के लिए खास तौर पर जो उसकी झोपड़ी बनाई जाती है
1: जी,
0: उसमें सबसे बढ़िया जो मटेरियल है उससे अगर कहेंगे तो पराली से ही अगर आप बनाएं तो बहुत अच्छा है। उसके ऊपर फिर पन्नी लगा देते हैं जिससे कि जो अंदर का तापमान हमको चाहिए, सूटेबल तापमान हमें मिल जाता है। और बहुत अच्छे से इसका प्रयोग आप पुराने समय से करते आए हैं, मशरूम के अंदर आपने सही कहा, इसका बेहतर उपयोग हो सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ साथ में कंपोस्ट और जैविक खेती के में भी इसका भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे जैविक अवशेषों में से मिलाकर कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है और खेतों में डालते हैं। जैसे जैविक खेती की तरफ भी हम लोग उसको उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उर्वरक ना डालकर हम जैविक, क्योंकि लगातार हम अपने कार्यक्रम में बोलते ही रहते हैं कि जैविक खेती की तरफ किसानों को मुड़ना चाहिए, जिससे एक एक अच्छा उत्पाद हमें मिले, जिससे वो उत्पाद अच्छा भी होगा और साथ साथ में कहीं पर वो महंगा भी मिलेगा। क्योंकि जैविक जो आजकल हम लगातार बोल रहे हैं कि मंशा हमारी ये भी रहती है निरंकर भाई कि हम कि जैविक खेती की तरफ हम चलें, तो पराली भी कहीं ना कहीं उसका एक एक क्या बोलते हैं उसको, कि एक अच्छा साधन बन सकता है।
0: बिल्कुल सही बात कही। और जैविक खेती की आपने बात की तो जैविक खेती अगर आप करेंगे इस प्रयोग इसका तो जैविक खेती से बहुत सारे लाभ हैं। एक तो उर्वरा शक्ति आपकी बनी रहेगी, प्रदूषण वातावरण में नहीं होगा। दूसरे, जब आप जैव पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे उससे भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं,
1: जी
0: और नमी भी लंबे समय तक आप संचित रख सकते हैं। जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा अगर जैविक पदार्थ आपकी ज़मीन के अंदर है। दूसरी, जो उर्वरक हैं, रसायन हैं, उनका प्रयोग कम होगा तो आपकी आमदनी जो है बढ़ेगी, क्योंकि खर्चा कम आएगा।
1: बिल्कुल
0: जब आप उर्वरक खरीदते हैं उस पर खर्चा ज़्यादा आता है और कीट और बीमारियां भी फिर ज़्यादा लगती हैं। इसके साथ साथ जो आप उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उससे निकलने वाली गैसेज हमारे वातावरण को खराब करती हैं, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज का प्रभाव बढ़ता है और वातावरण हमारा प्रभावित होता है। ये आपके जेब के ऊपर भी भारी पड़ता है और पर्यावरण के लिए भी भारी पड़ता है। इसलिए जैविक खादों का इस्तेमाल बढ़ाएं, उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत कम करें, और इस तरह से एक संतुलन बना करके आप आमदनी भी बढ़ा सकते हैं और उत्पादन को गुणवत्तापूर्ण और अधिक उत्पादन आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल का आपको अच्छा मूल्य मिल पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख कर के हमारे किसान भाई अपनी खेती किसानी को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। और अब कहो तो एक सुन लेते हैं ये भजन, अच्छा सुभाष चंद्र लुसाना को सुनना चाहते हैं, तो ये उपदेश है तो सुनते हैं।

0: तो ये उपदेश भैया ने सुना सुभाष चंद्र लुसाना की आवाज़ में, और अश्वनी भाई जो ग्राम संसार में नाम रह गए थे उनको भी पढ़ देते हैं।
1: जी
0: ये हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी, और ये खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा। और ये भी बताते हैं, अब सुनेंगे सीसराम की आवाज़ में एक भजन, और ये है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश राजपाल, पंकज और इनका परिवार। ये है कोटवा नारायणपुरा बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और इनका परिवार, दुविहा नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। और ये है ग्राम पंजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंदोलिया, आदर्श सार्थक आलोक अलौकिक चंदो चंदसोलिया। और ये हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तन पुरी गिरी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश देवी, ट्विंकल और डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी। ये हैं धनोरी तेली वाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अवन बाबू।
1: ये भिलाई छत्तीसगढ़ से पत्र में भेजा है मुकेश वर्मा, गौरव वर्मा, गरिमा वर्मा और उनका पूरा परिवार। और ये है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और उनका पूरा परिवार। और ये पत्र हमें भेजा है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी का अशना। और ये है हरि हरिमन शिंदे और उनका पूरा परिवार। यहाँ पर एक और पत्र ले लेते हैं, ये है पाटन जिला, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पत्र हमें मिला है। ये बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, निधि वर्मा, उनका पूरा परिवार। और ये एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये गांव हांडीखेड़ा से पत्र मिला है राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा।
0: ये है पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर से संदीप मकड़, ज्योति मकड़ और इनका परिवार। ये गांव गाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और इनका परिवार। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह और इनका परिवार। ये हैं साले भाटा महासमुंद छत्तीसगढ़ से जीतू ध्रुव, केवल, किरण और इनका परिवार। जलालपुरा जिला सहारनपुर यूपी से स्वर्ण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति और इनका परिवार। गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़, शुभम, यश कुमार और इनका परिवार। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा और इनका परिवार। सारिमपुर बक्सर से राजा श्री अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इनका परिवार। और गांव बर्दुचैना भिवानी हरियाणा से हैं महिपाल, शोरान, नीरू और इनका परिवार।
1: और पत्र एक और शामिल कर लेते हैं, ये खेल बाज़ार पानीपत से पत्र मिला है नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और उनका पूरा परिवार।
0: संबलपुर काले कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। ये हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और इनका परिवार। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डेकस्ट्रो, रोजी डेकस्ट्रो, पर्ल डेकस्ट्रो और इनका परिवार। ये हैं सहारनपुर से सैयद मशरूर, शाइना हसन और इनका परिवार। और सहारनपुर से ये पत्र हो गया है, और अगला है चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव, प्रयाग, प्रियांशी, विवेक और इनका परिवार। ये हैं गांव गोविंदगढ़ मांझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू और इनका परिवार। गांव हंडीखेड़ा से राधे श्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा का।
1: जी ये पत्र मिला है, ये चौधरीवास से है राहुल, राजू अग्रवाल और केशव और प्रियांशी, विनोद और इनका पूरा परिवार। और ये गांव गोविंदगढ़ मांझीवाला कानपुर राजस्थान से पत्र मिला है राजू टुटुडेजा, खुशलदीप, उर्मिला, जीनू, मनु, शिव शेट्टी और इनका पूरा परिवार।
0: तो सुनते हैं श्री श्याम की आवाज में ये भजन।

0: तो अश्वनी, ये सुन
1: जी
0: रहे थे भजन शीश राम की आवाज में, और अब क्या सुनवा रहे हो?
1: अब राजेंद्र जाटव की आवाज़ में ये सुनाते हैं कि जिसकी भक्ति भगत करे।
0: बिल्कुल, तो सुनते
1: जी
2: और जिसकी भक्ति

और इसी के साथ ही हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और समय शाम के 7:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम।

0: तो अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में गजलें। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल से, और वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 7:45 पर प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीपा
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करेगा। दिल्ली में आबकारी विभाग ने अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 725 प्राथमिकी दर्ज की और 730 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
5: हम आशा करते हैं इस समिट से, उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल

0: में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। उन्होंने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह में मजबूती और लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों का लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन समाधानों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के हिसाब से ढाला जाना चाहिए और उन तक पहुंचाया जाना चाहिए।
0: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज, बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और बरुंड की राष्ट्रपतियों और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली ने सफलतापूर्वक एक ऐतिहासिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन से ने दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाया और वैश्विक मंच पर भारत के नेतृत्व और रणनीतिक स्वायत्तता को प्रदर्शित किया।
2: ब्रिक्स समिट 2026 भारत में दिल्ली में बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आए और सभी ने सहमति के साथ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे साइन किए। आज देश गर्व करता है इस समिट पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी का जो इस सफल आयोजन के सहभागी थे, चाहे वो हमारी फोर्सेस हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या दिल्ली की जनता, जिनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण आज रात 10 बजे तक राजधानी के 22 स्थानों पर यातायात परिवर्तित और लगभग 35 से अधिक मार्गों पर नियंत्रित किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, जनपद, अशोक रोड, बाराखंबा रोड और टॉलस्टॉय मार्ग सहित आसपास के अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। एकीकृत रक्षा स्टाफ आईडीएस मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान व राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है।

0: इस कार्यक्रम में जटिल मुद्दों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, युद्ध में तकनीकी परिवर्तन, रणनीतिक संचार और नागरिक सैन्य समझ बढ़ाने की आवश्यकता सहित कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन उस भरोसे का सबूत है जो दुनिया ने पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी पर जताया है और साथ ही उस विश्वास है जो 140 करोड़ नागरिक उन पर करते हैं। मीडिया से बातचीत में श्री इंद्राज ने कहा कि ये बैठक सभी भाग लेने वाले देशों के लिए व्यापार और तरक्की के नए रास्ते खोलेगी।
1: ये हमारे सौभाग्य वाली बात है कि अलग अलग देश के राष्ट्रपति यहाँ आए हैं और उन्होंने देश पर, जहाँ तक मैं 12 साल की बात करूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर जो विश्व ने भरोसा जताया है और 140 करोड़ देशवासियों का जो अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, उसके कारण से ब्रिक्स का ये महा आयोजन भी संपन्न होने जा रहा है। ऐसी मीटिंग जिसके कारण से नए रास्ते खुलेंगे, नया व्यापार खुलेगा, कहीं ना कहीं सभी देशों की प्रगति और तरक्की का एक नया रास्ता खुलेगा और वो दिल्ली के अंदर हो रहा है, भारतवर्ष के अंदर हो रहा है, ये भी सौभाग्य की बात है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2026 के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की शानदार बढ़त दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में कार्रवाई में बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अगस्त तक अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के मामले में लगभग 725 प्राथमिकी दर्ज कर 730 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अवैध शराब लेकर जा रहे 197 वाहनों को जब्त करने के साथ करीब 2,20,000 बोतल अवैध शराब भी बरामद की गई है। साथ ही लाइसेंस प्राप्त परिसरों में नियमों के उल्लंघन के मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग ने बताया कि राजधानी में आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रवर्तन विधियों को और बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अवैध शराब के कारोबार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप से।
0: पांडव नगर और मयूर विहार पुलिस स्टेशन में आज थाना दिवस जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान नागरिकों को अपनी शिकायत उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिला। वहीं पुलिस अधिकारियों ने आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सुना तथा शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज गुरुद्वारा सिंह सभा C4 जनकपुरी में नवनिर्मित दरबार हॉल का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। श्री सूद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान उन्होंने गुरु साहिब से सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की अरदास की। राजधानी के स्वरूप नगर की गली नंबर 2 में आज एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस फैक्ट्री में जूडो की ड्रेस और बॉक्सिंग ग्लव्स बनाए जाते थे। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार उन्हें इस घटना की सूचना 11:05 पर मिली। वहीं आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेज दी गई। आग की दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन घबराहट में सामने वाली इमारत में रहने वाले कुछ लोग अपने घरों से कूद गए, जिससे 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और वे खतरे से बाहर हैं। अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 4 ओवर में 2 विकेट पर 38 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। श्रृंखला के शेष 2 मैच मंगलवार और गुरुवार को इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही और शाम तक मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक फर्जी ऋण स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। इसमें 3,000 रुपए से अधिक की एग्रीमेंट फीस जमा करने पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए का ऋण मंजूर किए जाने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि मुद्रा योजना व्यक्तियों या सूक्ष्म उद्यमियों को सीधे ऋण उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि ये एक पुनर्वित्तीय एजेंसी है। इकाई ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसे निराधार दावों से बचने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करेगा। दिल्ली में आबकारी विभाग ने अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 725 प्राथमिकी दर्ज की और 730 लोगों को गिरफ्तार किया। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: Oh, lovely. Well done.
3: Business loan approved.
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
4: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
5: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
4: आप कौन?
6: RBI कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं सुषमा सिंह।
9: दोस्तों, इन दिनों प्रकृति और संस्कृति दोनों ही उल्लास के रंग में रंगे हुए हैं। बारिश के रिमझिम फुहारों के बीच जहां प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़े है, वहीं हमारे आंगन भी त्योहारों की रौनक से सजे रहे हैं। सच कहूं तो मौसम भी उत्सवमय है और मन भी। उमंग और उल्लास के इसी सुंदर वातावरण में आज की इस विशेष काव्य गोष्ठी में मैं सुषमा सिंह आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। हमारी आज की गोष्ठी के कविगण श्री शिव कुमार बिलगिरामी जी, श्रीमती अंजना जैन जी, श्री चंद्रस्वरूप बिसारिया जी हमारे बीच में हैं। हम इस गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए शब्दों और संवेदनाओं की इस जादुई यात्रा का शुभारंभ करते हैं। गोष्ठी का आगाज हम एक ऐसे प्रतिष्ठित हस्ताक्षर से कर रहे हैं जिनके कलम से गीत और गजल दोनों ही समान अधिकार के साथ प्रस्फुटित होते हैं। जी, श्री शिव कुमार बिलगिरामी जी, जो कि समकालीन उर्दू हिंदी साहित्य के एक बेहद चर्चित गीतकार और गजलकार हैं। आपकी रचनाओं में प्रेम की छुअन है, मानवीय संवेदनाओं की गहराई है, सामाजिक सरोकार है और राष्ट्र के प्रति अगाध समर्पण है। श्रोताओं, राष्ट्र प्रेम वह डोर है जो विविधताओं से भरे हमारे इस देश को एक मजबूत सूत्र में पिरोती है। जब यह भावना कविता का चोला पहनती है तो शब्दों में जैसे बिजलियां कौंध जाती हैं। इन्हीं ओजस्वी भावों को स्वर देने के लिए मैं श्री शिव कुमार बिलगिरामी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। शिव कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
10: बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, और हम अपने आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक राष्ट्र प्रेम का गीत पढ़ता हूँ।

0: बहुत
1: दें,
0: खूब।
1: कसम खाए न होने देंगे इसका मान कम। सभी मिलकर कहो जय हिंद वंदे मातरम।

0: बहुत सुंदर।
1: हमारे देश हित में हो हमारा हर कदम, सभी मिलकर कहो जय हिंद वंदे मातरम।

0: बहुत खूबसूरत,
1: हिंदी
0: बहुत खूबसूरत रचना
1: पर एक रचना है
0: जी,
1: वो प्रस्तुत करता हूँ।
0: स्वागत है आपका।
1: कोटिक हृदय वासिनी संस्कृत।

0: प्रचुर शब्द भंडारिण हिंदी छंद विधान बहुलता गुहितर भाव प्रकाशिनी हिंदी वाणी वाच सरलता
1: बहुत खूब
0: भारत भाषा कुल अधिनायक।

0: संस्कृत तनया हिंदी भाषा, हिंदी राष्ट्र चेतना जननी, जनगण मन की आशा। सत्य सनातन वाणी हिंदी, अधुनातन विषय प्रवक्ता, विज्ञान कला साहित्य सुभाषित, दर्शन धर्म निरुक्ता,
1: बहुत खूबसूरत।
0: बुद्धि विवेक विवर्धक हिंदी, सकल राष्ट्र

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना,
1: बहुत खूब। दोस्तों, श्रृंगार की रश्मियां बिखेरने के लिए मैं अनूठे भावों के साथ उनकी मधुर आवाज में आदरणीय अंजना जैन जी को आमंत्रित कर रही हूँ। अंजना जी, आमंत्रित हैं आप, स्वागत है आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। आज कविताओं के रंग बिरंगे रंग और रंग बिरंगे रस बिखरेंगे और आप सभी मुझे लगता है बहुत आनंद लेने वाले हैं। मैं चार पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा
1: जी। स्वागत है आपका।
0: हाँ, चूड़ी बिंदी पायल तुमसे साजन है, हर्ष तेरा मेरा कितना।

0: पायल तुमसे
1: वाह
0: साजन
1: वाह, बहुत
0: है।
1: अच्छा,
0: बहुत
1: बहुत
0: खूब,
1: अच्छा।
0: बहुत धन्यवाद। तो और भी लेके चलती हूँ कि जब आप प्रेम में डूबते हो, जब आपको प्रेम होता है तो कैसा एहसास होता है, तो उन्हीं एहसासों को व्यक्त करने जा रही हूँ इन चार पंक्तियों में। ध्यान दीजिएगा। प्रीत

0: ठहरो,
1: वाह
0: हाँ सोचते ही तुझे वक्त जाता ठहर। तो आगे भी लेके चलती हूँ कि कैसा प्रेम में कैसे कैसे एहसास और कैसी कैसी उपमाएं करने को दिल चाहता है। तो सुनिएगा। थी मैं कच्ची कली पांखुरी हो गई,
1: वाह।
0: कोई

0: गई,
1: तुमने
0: छू भर लिया बांसुरी हो गई।
2: बहुत शुक्रिया। और आगे लेके चलती हूँ कि कैसी कैसी कल्पनाएं आप करने को जी चाहता है आपका जब आप प्रेम में डूबे हुए होते हो। तो प्रेम में फिर लेके चलती हूँ, प्रेम के रस में डुबाने, सुनिएगा।

0: जब से तुझ से जुड़ा दिल का ये व्याकरण।
1: बहुत खूब।
0: बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब आप इश्क में होते हो ना, तो कैसे ख्याल आते हैं? रातों की नींद कहीं गायब होती है और दिन का सुकून कहीं जाता है, तो बैठे बैठे क्या आप अपना हाल कर लेते हैं? तो सुनिएगा, चार पंक्तियों के माध्यम से कहती हूँ, सुनिएगा।

0: साए बरसते रहे। तो ये हुई प्रेम की बात और श्रृंगार की बात। अब लेके चलती हूँ एक गजल के पास। ये क्या कहती हूँ मैं, और आप मेरे साथ जरूर गुनगुनाइएगा। क्या हुआ मेरे साथ सवेरे सवेरे, कोई याद आया सवेरे सवेरे, बहुत जी जलाया सवेरे सवेरे। तसव्वुर में जिसके कटी मेरी रातें, तसव्वुर में जिसके कटी मेरी रातें, उसी ने सताया सवेरे
1: सवेरे
0: सवेरे।
1: सवेरे वहाँ
0: जिसे मुस्कुराना सिखाया था मैंने, जिसे मुस्कुराना सिखाया था मैंने, उसी ने रुलाया सवेरे
1: सवेरे
0: सवेरे।
1: वहाँ
0: वो जिसके लिए रात की थी सुहागन, वो जिसके लिए रात की थी सुहागन, हुआ क्यों पराया सवेरे
1: ठीक
0: सवेरे। जिसे याद करके महकती थी हिचकी, जिसे याद करके

0: महकती थी हिचकी उसी ने भुलाया। सवेरे सवेरे जो माथे पे बोसे से मुझको सुलाता, जो माथे पे बोसे से मुझको सुलाता उसी ने जगाया। सवेरे सवेरे उसी की इनायत के जिंदा हूँ अब तक, उसी की इनायत के जिंदा हूँ अब तक उसी ने बताया। सवेरे सवेरे कोई याद आया, सवेरे सवेरे बहुत जी जलाया, सवेरे सवेरे।
1: वाह बहुत सुंदर, कोई याद आया सवेरे सवेरे, बहुत खूब, बहुत प्यारी प्यारी प्यार भरी रचनाएं आपकी, बहुत सुंदर। श्रोताओं यह काव्य गोष्ठी अब सचमुच अद्भुत हो गई है, भावनाओं कल्पनाओं और शब्दों की सरिता निरंतर प्रवाहित हो रही है। अब इस गोष्ठी को और भी ऊंचाइयां देने, कल्पनाओं को नई उड़ान प्रदान करने और अपनी सशक्त वाणी से इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ वो हैं कविता जगत के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर श्री चंद्र स्वरूप बिसारिया जी, जिन्होंने अपना लंबा समय साहित्य साधना को समर्पित किया है। मैं बेहद आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री चंद्र स्वरूप बिसारिया जी को कि वो अपनी रचनाओं से श्रोताओं को रूबरू कराएं। स्वागत है आपका बिसारिया जी।

0: बाय।
1: वाह, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। बहुत बहुत आभार चंद्र स्वरूप विसारिया जी। श्रोताओं, वक्त का परिंदा बड़ी तेजी से उड़ रहा है और हमारी आज की गोष्ठी अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। तो श्रोताओं, हमारी काव्य गोष्ठी अपने पूरे चरम आनंद पर पहुंच चुकी है। हमने यहाँ कविताओं के रंग बिरंगे रंग बिखेरे। अब बारी है उन्हें आमंत्रित करने की जिन्होंने हमारी कविताओं को आप तक पहुंचाया। तो अब मैं आपके बीच आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी संचालिका महोदया सुषमा सिंह जी को। वो आए और अपनी कविताओं के रंग आप सभी के बीच लेकर आए। स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजना जी। आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा पुनः अभिनंदन। साथियों, जब बात भावनाओं और प्रेम की चली है तो उस अलौकिक शाश्वत और निश्चल प्रेम का जिक्र कैसे ना हो जिसने प्रेम को इबादत का दर्जा दिया। जी हाँ, राधा और श्री कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण मेरे बहुत प्रिय हैं। चार पंक्तियों से उनका आवाहन करती हूँ, सुनिएगा। काश कुछ दुआएं मेरी काम आ जाएं, काश कुछ दुआएं मेरी काम आ जाएं, शबरी पुकारे जब जब प्रभु राम आ जाएं।
1: बहुत सुंदर।
2: दुर्योधनों की फौज कहीं जीत ना जाए, आवाज दे जो द्रौपदी घनश्याम आ
1: हाँ हाँ बहुत
2: जाए,
1: सुंदर।
2: आवाज दे जो द्रौपदी घनश्याम आ जाए। और आपके बीच एक छंद पढ़ना चाहूंगी, सुनिएगा।
0: स्वागत।
2: उद्धव जी ब्रिज में राधा जी और गोपियों को अध्यात्म का ज्ञान देने, उन्हें वैराग्य का मार्ग समझाने आते हैं, किंतु राधा रानी और गोपियों के निष्काम और अनन्य प्रेम के सामने उनका सारा रटा रटाया ज्ञान फीका पड़ जाता है। उन्हें अनुभव होता है कि जहाँ प्रेम है वहीं

नर ओढ़े एक दुल्हन सकुचाई सी, सजनी चढ़ी है डोली जैसे और बजी है शहनाई।

0: बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत।
1: श्रोताओं, इस प्रेम और काव्य के रंग में डूबी इस गोष्ठी को अब हम यहीं विराम देते हैं। हमारी इस गोष्ठी के कविगण श्री शिव कुमार बिलगरामी जी, श्रीमती अंजना जैन जी, श्री चंद्र स्वरूप बिसारिया जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और प्रेम, श्रृंगार, देशभक्ति और कृष्ण भक्ति की रस में डूबी हुई गोष्ठी का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। गोष्ठी का संचालन कर रही थी सुषमा सिंह। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था वंदना का और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने की सुना फिल्म दिल तो पागल से, और आवाज़ लता मंगेशकर की, साथ में उदित नारायण, और गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया उत्तम सिंह ने। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना, और वक्त रात्रि के 8:35 हो चुके हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इस अगले गीत को फिल्म यस बॉस से।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना फिल्म यस बॉस से, और साथ में आवाज़ थी अभिजीत की। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया जतिन ललित ने। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से, और कार्यक्रम में हूँ आपके साथ चेतना। आखिरी गीत है कार्यक्रम का, लेकिन हम आपसे मिलेंगे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फिलहाल इस गीत के साथ, आशा भोसले की आवाज़ के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। मिलेंगे 11:10 पर। अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से AIR लाइव 24/7 चैनल से। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से, उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
2: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन

0: संगठन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50

0: 1,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
2: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
1: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के

0: बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
1: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagements with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's teams clinch Junior Asia Cup titles at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champion Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. And now the news in detail. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction.
3: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
2: Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
3: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया New Delhi Declaration हमारे shared vision और future cooperation को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी outcomes को समयबद्ध action और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
2: Earlier, in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping, as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remained confined to one region in today's interconnected world. We have a report from our correspondent.
4: The two-day summit focused on resilience, innovation, cooperation and sustainability with more than 50 practical outcomes. The summit deliberated on major global and regional issues including global governance reform, international

0: Para badminton Tokyo Paralympic gold medalist Pramod Bhagat secured gold medal in the men's singles SL3 category and teamed up with Sukant Kadam to win the silver in the men's doubles SL3 SU5 at the Japan International today. The six-time world champion Bhagat produced a dominant performance in the singles final, defeating fellow Indian Umesh Kumar 21-16, 21-8 to clinch the top honour. But now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagement with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's team clinched Junior Asia Cup title at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champion Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. For details of these stories and more, log on to our website, newsonair.gov.in and News on AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स मामलात के हल फराहम करने का एक इको निज़ाम है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नई दिल्ली एलामिया के सभी फैसलों पर मुकर्रर वक्त के अंदर अमल दरामद किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग इख्तिताम को पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ 15 दोतरफा मीटिंगें की। इसके साथ साथ उन्होंने सरबराह मीटिंग से अलग बैन-उल-अक़वामी इदारों के सरबराहान के साथ भी अपनी सरगर्मियां जारी रखीं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत का मकसद लैब में तैयार किए गए हीरे जवाहरात के शोबे में एक आलमी रहनुमा की हैसियत इख्तियार करना है। जावा समंदर में इंडोनेशिया का एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में 6 अफराद हलाक और तकरीबन 130 लापता हो गए हैं। हॉकी में भारत की मर्दों और खवातीन की टीमों ने चीन के शहर मुखी में जूनियर एशिया कप के खिताब हासिल किए हैं। और क्रिकेट में खवातीन के T20 एशिया कप में दुबई में भारत और दिफाई चैंपियन श्रीलंका के दरमियान फाइनल मैच जारी है। उधर नई दिल्ली में 3 मैचों की मर्दों की T20 सीरीज का पहला मैच भारत और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को उजागर करने के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई कि ब्रिक्स के तनवों की बुनियाद पर इसकी शनाख्त, तआवुन और तहरीक बरकरार रहेगी और इसकी तरक्की से इंसानियत के मकसद को तआवुन हासिल होता रहे। दो रोज़ा सरबराह मीटिंग के आज आखिरी दिन अपने इख्तितामी कलमात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ब्रिक्स महज कोई मुल्कों का एक ग्रुप नहीं है बल्कि ये मामलात के हल का एक इको निज़ाम है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन में जो मुज़ाकरात हुए उनसे इस मकसद को मज़ीद इस्तेहकाम हासिल हुआ है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: सरबराह मीटिंग में मंजूर किए गए नई दिल्ली एलामिये से एक मुश्तरका तसव्वुर और मुस्तकबिल के तआवुन के लिए एक वाज़ह सिमत फराहम होगी। उन्होंने इस जरूरत पर भी जोर दिया कि तमाम फैसलों पर मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर अमल दरामद किया जाए जिससे तमाम तर लोगों को फायदा हासिल हो।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने इफ्तिताही कलमात में कहा था कि ब्रिक्स ग्रुप में मजबूती में इजाफा करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, क्योंकि वबाई बीमारियों, आबो हवा से मुतल्लिक कुदरती आफात और सप्लाई चेन में रुकावट

0: जिसकी वजह से इस बात का अंदाजा हुआ कि आज की बाहम मरबूत दुनिया में कोई बहरान महज एक खित्ते तक महदूद नहीं रहता। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: इस दो रोजा सरबराह मीटिंग में मजबूती, इख्तिरा, तआवुन और पायदार तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई और 50 से ज्यादा हिकमत अमली की अमली हैसियत के फैसले किए गए। सरबराह मीटिंग में बड़े आलमी और इलाकाई मामलात पर बातचीत की गई, जिनमें आलमी हुक्मरानी में इस्लाह, बैन अलाक्वामी तिजारत, दहशतगर्दी, अमन व सलामती, मसनू जहानत, आबो हवा में तब्दीली, हिफजान सेहत और पायदार तरक्की के मौजूद शामिल हैं। रहनुमाओं ने वबाई बीमारियों के तनाजुर में तैयारी के मैदान में एक मजबूत तर तआवुन और मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले से खबरदारी के एक मजबूत निज़ाम की हिमायत की। मगरबी एशिया की सूरत हाल के बारे में ब्रिक्स रहनुमाओं ने ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल इख्तियार करने, मुज़ाकरात व जमहूरियत की हिमायत की और शहरियों व शहरी बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। रहनुमाओं ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की और इसके तई हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई अपने अहद का इजहार किया। उम्मीद है कि नई दिल्ली में एलामिया से इकतसादी तरक्की, टेक्नोलॉजी, हिफ्जान सेहत, आबो हवा में तब्दीली और आलमी हुक्मरानी के मैदान में ब्रिक्स के तआवुन को फरोग देने का रास्ता हमवार होगा। नीज आलमी जुनूब की आवाज़ को तकवीत मिलेगी। ये सरबराह मीटिंग आलमी सियासत, मईशत और कसीर मुल्की तआवुन के तनाजुर में इंतहाई अहम रही। मगरबी एशिया में सूरत हाल और बैन अलाक्वामी अमन व सलामती से मुतालिक मामलात पर बातचीत की वजह से ये वाज़ेह हो गया है कि ब्रिक्स अब मजीद महज इक्तसादी तआवुन का कोई प्लेटफार्म नहीं है, बल्कि ये आलमी सियासी तनाजुर में इसके रोल की अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। न्यूज़ डेस्क से अंकित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से अलग आला सतह की बहुत सी दो तरफा सरगर्मियां अंजाम दी। पिछले तीन दिन में जनाब मोदी ने सरबराहान मुमलकत हुकूमत के साथ 15 मीटिंग्स का इनेकाद किया। इसके अलावा उन्होंने बैनुल अक़वामी इदारों के आलमी रहनुमाओं और सरबराहान के साथ भी बहुत सी मीटिंगें की। इन मीटिंग्स से दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने, बाहमी मफाद के मामलात पर बातचीत करने और इलाकाई और आलमी तरक्यात पर तबादला ख्याल करने का एक मौका फराहम हुआ। वज़ीर आज़म मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलिपीन, जनूबी अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने कजाकिस्तान के कासिम जमरत तुर्गेव से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासत, तिजारत, दिफा और सलामती, कनेक्टिविटी, तवानाई, अहम मदनियात, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, तख्लीकी मईशत और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों समेत बहुत से मैदानों में तआवुन का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी के साथ भी एक मीटिंग का इनेकाद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मामलात, खासतौर पर इलाकाई तरक्यात और भारत मिस्र शराकत दारी पर बातचीत की। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ अपनी मीटिंग के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक बहुत से शोबों में अपनी शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने का अमल जारी रखेंगे। जनाब मोदी ने फिलीपींस के सदर फेडिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कुदरती आफात की सूरत में मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए इत्तेहाद में शामिल होने के फिलीपींस के फैसले का खैर मकदम किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के साथ अपनी मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने भारत जनूबी अफ्रीका अहम शराकत दारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया, जिसमें भारत SSCU तजारती समझौता, कानकनी और अहम मादनियात, बुनियादी ढांचा, खुराक की यकीनी फराहमी, डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा, उभरती हुई टेक्नोलॉजी और हुनरमंदी शामिल हैं। बुरुंडी के सदर इवारिस्ते एंदिएशिमे के साथ अपनी मुलाकात में जनाब मोदी ने अफ्रीकी यूनियन की सदर नशीनी इख्तियार करने पर बुरुंडी को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने नाइजीरिया के नायब सदर कासिम सिटेमा से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और भारत और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी तआवुन को मजीद आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर इक़्तिसादियात व मालियात जमशेद कुचकरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने दो तरफा इकतसादी और मालियाती तआवुन को मजबूत बनाने पर बातचीत की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने आज कहा है कि नई दिल्ली अलामिया में रवायती, तकमीली और लाजमी दवाओं TCIM की निशानदेही रवायती दवाओं के शोबे में आलमी तआवुन को मुस्तहकम बनाने की जानिब अहम कदम है। वजीर मौसूफ ने एक बयान में खासतौर पर कहा है कि ब्रिक्स सेहत ट्रैक के तहत TCIM से मुतालिक ब्रिक्स का माहरीन का मुजवजा वर्किंग ग्रुप रुकन मुल्कों को एक बामानी प्लेटफार्म फराहम करेगा, जिस पर एक दूसरे

0: आपको मालूमात फराहम की जा सकेगी और तहकीक और शवाहद पर मबनी जदीद तरीन नजरियात को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। दाखिली उमूर और बाहमी और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज भारत की जवाहरात और जेवरात की सना से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि लैब में तैयार किए गए हीरों का पूरा इको निज़ाम और मैन्युफैक्चरिंग का सिलसिला भारत के ही हाथों में पुख्तगी से बरकरार रहे। मुंबई में जवाहरात और जेवरात के 52वें अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि लैब में तैयार किए गए हीरों की वजह से अब इसकी तजारत में तब्दीली आ रही है। उन्होंने कहा कि लैब में तैयार किए गए हीरों की मार्केट उम्मीद है कि अपनी गुंजाइश के एतबार से मौजूदा मार्केट का तकरीब 50 गुना हो जाएगी। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा मौका करार दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत के पास बुनियादी ढांचा, सलाहियतें, एहसास है और कारोबारी जज्बा और सलाहियत मौजूद है जो इस मौके से फायदा उठाने के लिए दरकार है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि विज्ञान केंद्रों और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसानों से बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों के मसाइल के हल के लिए काबिले एतमाद मराकज में तब्दील करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि किसानों को दुरुस्त साइंसी मशवरे मिलें और उन्हें मकामी सतह पर नई टेक्नोलॉजीज तक रसाई हासिल हो। भारत गुजरात के शहर गांधीनगर में सर्कुलर मईशत के फोरम 2026 की मेज़बानी करेगा। फोरम का इनेकाद इस महीने की 15 से 18 तारीख तक किया जाएगा। फोरम का मौजू है सर्कुलर मईशत, अवाम और खुशहाली के लिए तब्दीली। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ मंगल को मुश्तरका तौर पर इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। बिहार के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदाद और बचाव की कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। बिहार में 15 जिला में 48 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अब तक 1251 इज्तमाई किचन के जरिए 88 लाख से ज्यादा अफराद को खाना फराहम किया जा रहा है। 13 इमदादी कैंपों में 12,000 से ज्यादा अफराद को खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के वजीर रत्न सदा ने बताया कि सैलाब से मुतासर हर खानदान को 7,000 रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। तकरीबन 3,68,000 पॉलीथीन शीट्स, 65,400 खुश्क राशन के पैकेट्स और 1,400 तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए हैं। मुतासर इलाकों में 1,688 कश्तियां काम कर रही हैं। मवेशियों के चारे की 12,844 क्विंटल से ज्यादा मकदार भी फराहम की गई है। इमदादी और बचाव की कार्रवाइयों में SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें मसरूफ अमल हैं। नदियों की सतह पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुल्तानगंज में गंगा नदी की आबी सतह कम हो रही है। कोसी, बूढ़ी गंडक, गंगा, पुनपुन, बागमती और घाघरा नदियां कई मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना से निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात में कल इंतहाई शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी राजस्थान, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में भी कल तेज बारिश का इम्कान है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंडोनेशिया में खराब मौसम के सबब आज जावा समुद्र में एक जहाज के उलट जाने से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है, जिसमें 240 अफराद सवार थे। तकरीबन 130 मुसाफिर और अमले के अरकान भी लापता हैं। बचाव के काम में मसरूफ इंडोनेशियाई अहलकार ने बताया कि अब तक 107 अफराद को बचाया जा चुका है। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब पर नए हमलों का दावा किया है। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई है जब यमन की सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत ने बहीरे अहमर के साहिली इलाकों में हौसियों की हालिया पेशकदमी को एक तशवीशनाक और तकलीफ देह सूरत हाल से ताबीर किया है। हॉकी में मर्दों और ख्वातीन की भारतीय टीमों ने आज चीन के मोकी शहर में जूनियर एशिया कप के खिताब जीत लिए हैं। मर्दों की भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में आज जनूबी कोरिया को 4-1 से हराकर अपने खिताब का दिफा किया। इस जीत के साथ मर्दों की भारतीय टीम टूर्नामेंट की तारीख में लगातार 4 बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इससे कबल टीम 2015, 2023 और 2024 में भी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत चुकी है। भारतीय खातून टीम ने भी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। टीम ने फाइनल मुकाबले में चीन को 1-0 से शिकस्त दी। भारत की जानिब से मैच का वाहिद गोल साइका चंद्रकांत माने 17वें मिनट में किया। खवातीन की क्रिकेट में दुबई में जारी खवातीन टी20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने दफाई चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ अब से कुछ देर पहले तक 18 ओवर्स में 3 गेंद पर 3 विकेट पर 166 रन बना लिए थे। इससे कबल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

वहीं श्रीलंका भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त देने से पहले अपने तीनों ग्रुप मैच जीतकर फाइनल में पहुंची है। मर्दों की क्रिकेट में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 157 रन का निशाना रखा है। अफगानिस्तान ने 8 विकेट पर 156 रन बनाए। इससे कबल भारतीय कप्तान श्रेयसी अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जगह तजुर्बाकार संजीव

0: के बायस जसप्रीत बुमराह ने टीम में वापसी की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स मामलात के हल फराहम करने का एक इको निज़ाम है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नई दिल्ली एलामिया के सभी फैसलों पर मुकर्रा वक्त के अंदर अमल दरामद किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग अख्तिताम को पहुंची। वज़ीरे आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ 15 दो तरफा मीटिंगें की। इसके साथ उन्होंने सरबराह मीटिंग से अलग बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान के साथ भी अपनी सरगर्मियां जारी रखीं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत का मकसद लैब में तैयार किए गए हीरे जवाहरात के शोबे में एक आलमी रहनुमा की हैसियत अख्तियार करना है। जावा समंदर में इंडोनेशिया का एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में 6 अफराद हलाक और तकरीबन 130 लापता हो गए हैं। और हॉकी में भारत की मर्दों और खवातीन की टीमों ने चीन के शहर मोकी में जूनियर एशिया कप के खिताब हासिल किए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is Akashwani. We now present a feature titled Guns and Glory on the rise of shooting as a sport in India.
2: Shooting at the Asian Games 2026 will be contested from September 17th. At the previous edition of the Asian Games held in Hangzhou, the People's Republic of China, India claimed 7 golds, 9 silvers and 6 bronze medals for an unprecedented haul of 22 medals. It is in this backdrop that we now bring you a feature, Guns and Glory, tracing the long history of India's performance in this sport.
3: Shooting has come to occupy the space that it now does in the collective consciousness of the people of India only on the dint of hard work and some amazing results. It may not be an athletic sport, but it is one in which Indians have excelled and made their presence felt on the world stage.
4: Manuel Baca won India's first medal at the Paris 2024. She is the first Indian woman to win.

0: Avani became the first Indian shooter to win another Paralympic Games gold medal last year. As we come to the end of this journey, let's join Mansher Singh as he narrates how Manisha Kheer, a fisherman's daughter, rose to be a part of a medal-winning Indian team.
1: Manisha is one of those ones who came with her father on, as you very rightly said, on a cycle to see what shooting was, because she heard the pop-pop from her village, which is close to the shooting range. She never went back. 4 years later, she broke the world junior world record in Changwon at the World Championships.
2: Guns and Glory. That was a feature written and narrated by senior sports journalist Raja Raman, bringing out the story of the rise of shooting as a sport in India. Produced by Nitish Arora, this was a presentation of the Central English Feature Unit and came to you from the radio station of Akashwani. Please stay tuned in for our next announcement that follows shortly.
3: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुमित सिंह पदम द्वारा सितार वादन।
4: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय सुमित सिंह पदम।
3: सुमित को संगीत के प्रति प्रेम और निपुणता अपनी 3 पीढ़ियों पुरानी पारिवारिक परंपरा से विरासत में मिली है। आकाशवाणी के ग्रेडेड कलाकार उनके दादा श्री सोहन सिंह पदम एक उत्कृष्ट संगीतकार होने के साथ साथ तंतु वाद्य यंत्रों के सिद्धस्थ कारीगर भी थे। उनके पिता श्री जसवीर सिंह पदम, जो सितार और तबला वादन के दिग्गज हैं, उनके प्रथम गुरु बने।
4: अलोंग विद लर्निंग फ्रॉम हिज फादर, सुमित इज लर्निंग सितार अंडर गुरु शिष्य परंपरा from Pandit Dr. Harvinder Kumar Sharma, a top grid artist of Akashwani and an acclaimed sitarist, carrying the generations old legacy of his guru, Ustad Vilayat Khan Sahib of Imdad Khani Gharana.
3: Akashwani ke A grade kalakar Sumit lambe samay se Bharatiya Shastriya Sangeet ka jadu bikher rahe hain और देश भर के प्रमुख संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियों के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली है।
4: He also has numerous awards and achievements added to his name, which include संगीत रतन सम्मान, कला निधि सम्मान, स्वर साधक सम्मान एंड राष्ट्रीय कला गौरव सम्मान।
3: आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुमित सिंह पदम के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मधुरेश भट्ट। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले मधुरेश भट्ट वर्तमान पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी तबला वादकों में से एक हैं। वे अपने पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र भट्ट के शिष्य हैं।
4: He possesses special abilities in fusion, jugalbandi and ताल kachehri. His performances as a solo artist and as an accompanist has won admiration, appreciation and respect from the classical music world. An A-grade artist of All India Radio, he is a member of ICCR's reference panel of artists.
3: आज के कार्यक्रम में सुमित सिंह पदम अपने वादन की शुरुआत राग रागेश्वरी से कर रहे हैं, जिसमें आलाप, जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबत गत तीन ताल में, मध्य लय गत मत ताल में और अंत में तीन ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी।
4: In tonight's concert, Sumit Singh Padam begins his recital with Rag Rageshwari, wherein Alap is followed by Jod Alap, Jod Jhala and then Vilambit Gat in teen taal, Madhya Lay Gat in mat taal and Drut Gat is in teen taal. Thank you.

0: ये था राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम अब प्रस्तुत करेंगे राग देस। आलाप के बाद तीन ताल में मध्य लय और द्रुतगत प्रस्तुत की जाएगी।
1: That was राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम will now present राग देस। आलाप is followed by मध्य लय गत एंड द्रुतगत इन तीन ताल।

0: यह था सुमित सिंह पदम द्वारा प्रस्तुत राग देश। तबले पर उनके साथ संगत की थी श्री मधुरेश भट्ट ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: That was राग देश presented by सुमित सिंह पदम। He was accompanied on tabla by मधुरेश भट्ट। This program was a presentation of आकाशवाणी जालंधर।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है।

0: China today. Both the men, Indian men's and women's teams have also qualified for the Junior Hockey World Cup by winning their respective Asia Cup titles. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, क्योंकि घड़ी बता रही है कि वक्त हो चुका है 11:10 और तकरीबन 25 सेकंड। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त एंड होस्ट तलत। और फरमाइश की बात है तो फरमाइश आपकी हमारे पास कैसे पहुंचेगी, उसका जरिया आपको अभी बताना बेहतर रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है, दरकार होती है, और वो हमारा ईमेल आईडी जो है वो ये है कि ip.radio.delhi@gmail.com। ip.radio.delhi@gmail.com वो मेल आईडी है जिसके ज़रिए आप अपनी बात, अपनी राय, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस संगीत में सफ़र की, इस बेहतरीन गीत के साथ जो मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा।

आ गया दिल जो कहीं, आ गया दिल जो कहीं और ही सूरत होगी, जो लोग देखेंगे तमाशा, जो मोहब्बत होगी। आ गया दिल जो कहीं और ही सूरत होगी, लोग देखेंगे तमाशा, जो मोहब्बत होगी। उनके आने की खबर सुन के तो ये हाल हुआ, उनके आने की खबर सुन के तो ये हाल हुआ, जब वो आएंगे तो फिर क्या मेरी हालत होगी। मार डाला मुझे बेमौत, बड़ा काम किया, मार डाला मुझे बेमौत, बड़ा काम किया, खूब तारीफ तेरी ऐ शबे फुरकत होगी। ए दिले जार मज़ा देख लिया उल्फत का, ए दिले जार मज़ा देख लिया उल्फत का, हम ना कहते थे इस काम में बड़ी जिल्लत होगी। ये भी कुछ बात है फिर वसल ना हो ऐ जौहर, ये भी कुछ बात है फिर वसल ना हो ऐ जौहर, रंज राहत से हुआ, रंज से राहत होगी।

जी, कई बार बहुत सारी चीज़ों का इरादा नहीं होता और गैर इरादतन तौर पर वो चीज़ें हो जाती हैं, और जब वो चीज़ें हो जाती हैं, वो अंजाम पा जाती हैं, तो इंसान बहुत हैरान हो जाता है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लगातार हमारा इनबॉक्स जो है आपकी मैसेजेस से रोशन हो रहा है और बाकायदा इस पे रौनक आई हुई है, तो आपके मैसेजेस हम ज़रूर शामिल करेंगे और उम्मीद है कि आप सभी ये गीत सुन रहे होंगे जो आपकी फरमाइश के हम तक पहुंचे हैं।

0: खोट
1: खोट का हो या फिर खरा हो, लेकिन सौदा जो है वो करने से पहले बहुत अच्छी तरह से जांच लें, परख लें और सही लफ्ज़ों में कहें तो ठोक लें और बजा लें, क्योंकि सौदा एक बार अगर हो गया और अगर ख़ास तौर से दिल का वो सौदा हो गया तो बाद ज़रा मुश्किल पड़ जाती है। तो जी, वायदे के मुताबिक अब हम लेते हैं अपने मैसेजेस। हमारे पास मैसेज आया है मुरादाबाद से, लिखने वाले हैं मोहम्मद फरीद, बिलाल और ज़ुबैर। इसके साथ हमारे पास मैसेज आया है रमेश कुमार जजौरिया का, आप हमें मैसेज कर रहे हैं मलोट से। आपके साथ हैं गीता रानी, गगनदीप और आरजू गुड्डू जजौरिया। मल्होत्रा, टी डी मल्होत्रा में चंडीगढ़ से मैसेज कर रहे हैं, और आपके साथ हैं ऋतिक प्रतीक, अनिल जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आपकी फरमाइश हम तक पहुंच गई है, उम्मीद है कि आप प्रोग्राम सुन रहे होंगे और ज़रूर अपना गीत सुन लेंगे। जसबीर सिंह ने हमें मैसेज किया है निमनाबाद से, हरियाणा में है ये निमनाबाद, और आपके साथ हैं जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवली प्रीत और कमरजीत कौर। आपने कहा कि किसी भी गीत में शामिल कर लें, तो जी लीजिए, सभी गीत आप ही के लिए हैं, आप ही लोगों की तरफ से हमारे पास पहुंची ये फरमाइशें हैं। राजस्थान श्रीगंगानगर से मैसेज कर रहे हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कार्तिक अरोड़ा और भूमिका। आपकी फरमाइश भी हम तक पहुंच चुकी है। किशन सबकल ने हमें मैसेज किया है बीड़ से, और आपके साथ हैं आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सबकल। इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज आया है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा का, और आपके साथ हैं बिमला अनेजा। आप कहते हैं कि बीते हुए कल को बार बार सोचने से आने वाला कल नहीं बदलता। अपना ध्यान इस बात पर लगाइए कि आज आपको क्या करना है। बात तो आपकी सच्ची है और सही भी है, लेकिन कुछ परसेंट, क्योंकि अगर आप पिछली बात को नहीं सोचेंगे तो अगली बार आप गलती फिर वही दोहरा देंगे। आने वाला कल कहीं ना कहीं आपके बीते हुए कल से इफेक्टेड जरूर होता है, तो पिछले को याद करने से अगर आपके आने वाला कल सुधरता है

तो ज़रूर याद कीजिए कि बीते हुए कल में क्या खासियत थी, क्या खूबी थी, क्या कमी थी, क्या खामी थी, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी छोड़ देनी चाहिए। हर चीज़ बैलेंस में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बैलेंस जैसे ही बिगड़ जाता है चीज़ें बिखर जाती हैं। दिल्ली के कृष्णा पार्क से मैसेज किया है हमें सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवान, और गुरवंश सिंह जौड़ा ने आपके गीत की फरमाइश भी हम तक पहुंच चुकी है। नबी हसन का मैसेज हमारे पास आया है एटा से, आपके साथ हैं शहनवाज, माफ़ कीजिएगा, शहनाज, नवेद, सुहेल, अनम, यशफ और रशीद वारसी, कदवई नगर से हैं ज़ुबैर अली ख़ान, सबीहा अंजुम, और आपने कहा कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। इसके साथ एक ये मैसेज और है हमारे पास, ग्वालियर से हमारे पास ये मैसेज आया है, लिखने वाले हैं सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या अरफा और एसपी। तो जी सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत गीत जो आप हमारे पास पहुँचाए फरमाइश बनकर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ तलत। तो बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ जो हमारे पास आया है। हाँ, से यवतमाल से हमारे पास ये मैसेज आया है। लिखने वाले हैं राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। आपके गीत की हमारे पास फरमाइश पहुंच चुकी है और इसके साथ मैसेज हमारे पास आया है। ब्रैकेट में लिखा है सिर्फ एक ही मेल और लिखने वाले हैं अनिल कुमार गौहानकर। आप हमें महाराष्ट्र उमरखेड़ा से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं अभिजीत गौहानकर, सरिता, प्रिंस, एकांश। मुंबई के बदलापुर से लिखते हैं प्रणीता गौहानकर, सिद्धांत, अर्जुन गौहानकर और टुक टुक। बहादुरा नागपुर से लिखते हैं वैशाली, शैलेश गौहानकर, एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि और परी। आपने कहा है कि अपनी पसंद के किसी भी गीत में शामिल कर लें और कोशिश मेरी यही है अनिल जी कि सारे जो गीत हैं और सभी जो गीत हैं वो आपको बहुत अच्छे सुनवाए जाएं, क्योंकि हमारे लिसनर्स इतनी अच्छी फरमाइशें भेजते हैं हमारे पास कि उन्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन सी बात लगती है। इंदौर से मैसेज हमें किया है पूजा रघुवंशी, नंदिनी, बबीता, शोभा, वंदना और देविका चौधरी, लड्डू, स्वाति, प्रज्ञा। और आपने कहा है कि हमें किसी भी फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कार्यक्रम में आप सभी हिंदी फिल्मों के गीत ही सुनते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है सुदर्शन शाह का और आप हमें मैसेज कर रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से। आपके साथ है प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगला बेन और राजेंद्र शाह। सिद्धार्थ गोंडानी जी ने हमें मैसेज किया है अमरावती से। आपके साथ है अर्चना, प्रणय, कुमारी सिद्धि, प्रसिद्धि, हीरामन और प्रतिभा पद्माकर गोंडाने। आपने कहा कि किसी भी गीत में हमें शामिल कर लें। अगला मैसेज हमारे पास मऊ से आया है। लिखने वाले हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आपने कहा कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। अकरम हुसैन प्रिंस ने हमें मैसेज किया है बिहार सीतामढ़ी से और आपके साथ हैं बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से लिखते हैं मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। आपका भी यही कहना है कि मैं अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दूं। इसके साथ साथ मैसेज हमारे पास आया है बक्सर बिहार से, शफरुद्दीन अंसारी, फातिमा और सुमित, रमेश साहू। डुंडवारा बिहार से डॉक्टर बबलू डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अतीबा, दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, अस्मा और इकबाल मस्तान। आपने कहा कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। रमेश कुमार हमें मलोट से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। मैसेज हमारे पास इसके अलावा आया है कहाँ से जी। अगला मैसेज है ताज मोहम्मद का। आप हमें मैसेज कर रहे हैं उत्तराखंड हरिद्वार से। आपके साथ हैं गुलाम साबिर और मिराज जहां। सुनते हैं एक और बहुत बेहतरीन गीत।

और एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस वक्त मेरी आंखों के सामने है कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और एशिया कप अपने नाम कर लिया है। तो हमारी तरफ से, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से हमारी भारतीय टीम को बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ, जहां पर हमारे पास मैसेज आया है गुरनूर यूपी से। लिखने वाले हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहाना, फारिया और ताहिरा। बहुत ही लय में नाम है आप सभी के। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ, ये जवाब है सतीश अनेजा जी के लिए भी। और वे कह रहे हैं कि गुजरे हुए कल के साथ ही आने वाले कल की तैयारी जरूरी है। जो वक्त

गुज़र गया वो हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है, और वाकई वो जो गुज़रा वक्त है वो बहुत कीमती वक्त है, वो लौटेगा नहीं दोबारा, लेकिन जो उसकी याद है ना वो हमारे जहन में व्यवस्थित है। और एक और हमारे पास मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे पेश किया गया है, बक्सर बिहार से ये मैसेज हमें मिला है, और ये लिखने वाले हैं जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता, संजना और सानवी। इतने सारे फूलों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने कहा है कि किसी भी गीत में शामिल कर लें। नासिर शेख का हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र श्रीरामपुर से, और दिलावर खान ने हमें मैसेज किया है रघुवीर नगर से, आपके साथ हैं अलीजा और लड्डू, आपने कहा कि किसी भी गीत में शामिल कर लें। इसके साथ साथ मैसेज हमारे पास है बोधराज खोरवाल जी का, आप हमें उत्तम नगर से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इसके साथ मैसेज हमारे पास आया है अनिल कोहाले का, और आपको गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमें महाराष्ट्र के नागपुर से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं छाया प्रियांश, और आपने धन्यवाद दिया है। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, हम यहाँ बैठे ही हैं कि आपका अच्छी तरह से और आपकी पसंद के मुताबिक मनोरंजन किया जाए। छोटे अंसारी हमें मैसेज कर रहे हैं संभल से, आपके साथ हैं आलम अंसारी, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी जी। इसके साथ इंद्रभान सिंह का हमारे पास मैसेज आ रहा है कलारी से, आपके साथ है अनुभव सिंह, ऋषभ राम, सहोदर नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंदरी लहरे मैसेज। इसके साथ साथ हम पढ़ लेते हैं, अश्वनी चुग ने हमें मैसेज किया है, और जी आप हमें पंचकुला से मैसेज कर रहे हैं, आपने कहा है कि हर गीत श्रोताओं की पसंद है और हमारी भी, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको गीत पसंद आ रहे हैं। आपके साथ है गोविंद चुग और टोनी दीवान, आशु चुग भी आपके साथ हैं। रवि कुमार ने हमें मैसेज किया है अंबाला हरियाणा से, आपके साथ है रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरु शब्द सिंह राहुल, आपने कहा है कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गीत ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अरुण कुमार पांडे का मैसेज हमारे पास आए मध्य प्रदेश से, और इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज है मोहम्मद कमर का, और मोहम्मद कमर ने हमें लिखा है कि जस्तजू जिसकी थी वो बेवफा हो गई, उसकी आरजू में हमारी पूरी ज़िंदगी कट गई। तो जी आरजू में ज़िंदगी गुजारें, लेकिन ज़िंदगी को खूबसूरत तरीक़े से गुजारिए, काटिए मत, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो देखिए ज़ाहरी तौर पे तो एक ही बार मिली है, अगली बार कब मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी ये हम नहीं जानते, इस बहस में जाना भी नहीं है, लेकिन अभी का जो वक्त है वो बेशकीमती है, इसे खूबसूरती से गुजारिए, खुश होकर गुजारिए, और कोशिश कीजिए कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी आपसे ज़रूर खुश रहें। इसके साथ हमारे पास मैसेज आया है कटनी से, लिखने वाले हैं अनिल ताम्रकर, अमर दिलीप, राजू ताम्रकर, रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना मोना, हनी, यश, सौम्या, और सुनते हैं अभी बहुत ही खूबसूरत गीत जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस गीत को लोग पसंद करते हैं।

जी, जो वक्त है उसे गनीमत जानिए, उसे कीमती समझिए और उसे बहुत खूबसूरती के साथ गुजारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वक्त जब एक बार गुजर जाता है तो फिर वो लौट कर नहीं आता। अगला पल आपको एक पल के लिए और बड़ा करता है, हर एक पल आपकी ज़िंदगी में जुड़ता चला जाता है, और घटता क्या चला जाता है? आपका बीता हुआ कल, क्योंकि हर बात याद रहे अगले दिन ये ज़रूरी नहीं। इसी तरह से यादों का सिलसिला जो है कभी घटता है, कभी बढ़ता है, और कभी यादों का वज़न इतना हो जाता है कि सिर्फ कुछ यादें ही इतनी भारी हो जाती हैं कि उसके अलावा और कोई बोझ उठाने को जी ही नहीं चाहता। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। लिखने वाले हैं दर्शन और कविता गौड़। आप हमें मैसेज कर रही हैं मेरठ कैंट से। आपकी फरमाइश हम तक पहुंच गई है और अहमद बागवान ने हमें मैसेज किया है। आप गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपके साथ हैं नूर, आयशा, अहमद बागवान, इकबाल, अखलाक, आमना, आसमा, राबिया, परी, आशु, जूही, सदफ और आरसू बागवान। आपने हमें बलिया से मैसेज किया है। मैसेज हमारे पास आया है गोविंद वैष्णव का, और आप हमें मैसेज करें मध्य प्रदेश राजगढ़ से। आपके साथ हैं सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश और चंद्र डांगी। अगला मैसेज जो है हमारे पास वो है, यही हो जाता है जब बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ जाते हैं। हाँ जी, मज़हर का हमारे पास मैसेज आया है मऊ से लिखने वाले रज़िया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, गाज़ीपुर से आज़ाद अली, अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। सुदर्शन मुखी ने हमें मैसेज किया है शांति नगर सोनीपत से। आपके साथ हैं सिमरन मुखी और इसके अलावा हमारे पास जो मैसेज आया है वो आया है भागुराम यादव का हरियाणा से। आपके साथ हैं ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, कांकेर से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। अनिल मोहन का हमारे पास मैसेज आया है मुल्तानी ढांडा से। आपके साथ हैं उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। इसके साथ साथ मैसेज मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी छूटे नहीं, सभी का नाम ज़रूर ज़रूर शामिल हो जाए, क्योंकि आप इतनी मोहब्बत से हमें मैसेज करते हैं और कुछ हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं जो बार बार बहुत सारे मैसेज करते हैं और कुछ मैसेजेस नीचे दब जाते हैं। मुकेश भट्टा जी ने हमें पटियाला से मैसेज किया। आपके साथ हैं नीलम भट्टा, निहारिका, हार्दिक, वंश भट्टा और आपने कहा कि एनी सॉन्ग प्लीज़। मैसेज हमारे पास नंद किशोर घाटे का आया है और ये मैसेज आया है अंजलि करवा, बाला साहेब करवा का साक्षी घाटे और महाराष्ट्र के बीड़ शहर से आप हमें ये मैसेज कर रहे हैं। कृष्ण जटोलिया जी ने मैसेज किया है हमें दिल्ली नागलोई से और आपके साथ हैं उषा, कृष्णा, पूजा, कोमल और आरव जटोलिया। इसके साथ मैसेज हमारे पास रजीश शर्मा का आया है और आप हमें पंजाब से मैसेज कर रहे हैं, मलोट से आपका मैसेज आया है। बब्बल जी ने हमें मैसेज किया है मोहाली पंजाब से, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और आपको गीत पसंद आ रहे हैं। मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए कि आप कार्यक्रम सुन भी रहे हैं और पसंद भी आ रहा है। प्रतीक महाजन ने हमें मैसेज किया है पुणे महाराष्ट्र से। आपके साथ हैं नितिका महाजन और प्रतीक, आपने हमें मैसेज किया है। तो सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गीत जो आपके इंतज़ार में हमने क्यों कर रखा है।

यकीन मानिए कि हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं रहता कि कार्यक्रम की अंतिम घड़ियां सामने हो और हम आपसे कहें अलविदा, लेकिन वक्त है और ये घड़ी की सुइयां है ना बड़ी बेरहम होती हैं। आखिर में हम मैसेज ले लेते हैं। हमारे पास साउथ एक्सटेंशन से मैसेज आया है गुरमीत सिंह मीता का, और इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है एयरपोर्ट वंदना नगर इंदौर से। लिखने वाले हैं कार्तिक खर्चे, संजना स्वाति, प्रयाग चौधरी, लड्डू चौधरी देवी का, और आपका नाम शामिल हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी का नाम मैं इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल कर लूं। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लेती हूं। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर अब 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। और अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स

0: शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता लाता है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 12:10 कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 90 का वो दौर याद कीजिए जब फिल्मों के गानों में एक अलग ही मस्ती, देसीपन और दिल को छू जाने वाला जादू हुआ करता था। एक ऐसा संगीतकार जिसके धुनों पर हम सब थिरकते थे और जिनके लिखे और गाए नगमे सुनकर आंखें भी नम हो जाती थी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी आनंद राज आनंद साहब की। एक ऐसे कलाकार जो संगीतकार भी हैं, गायक भी और गीतकार भी। आज इस कार्यक्रम में हम आनंद राज आनंद की निजी जिंदगी, उनके शुरुआती संघर्ष, उनकी शानदार कामयाबी और उनके यादगार नगमों का जश्न मनाएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं उनके एक बेहद खूबसूरत गीत से। सुनते हैं फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से ये गीत।

दोस्तों, 14 नवंबर 1962 को दिल्ली के एक सराफा ज्वेलरी कारोबारी परिवार में जन्मे आनंद राज आनंद का संगीत से बचपन से ही गहरा लगाव था। परिवार चाहता था कि वे अपने पुश्तैनी बिजनेस संभालें या सिविल इंजीनियरिंग करें, लेकिन आनंद राज आनंद की रगों में तो धुनें दौड़ रही थी। साल 1995 में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़कर वे अपनी आंखों में संगीत के सपने सजाकर सपनों की नगरी मुंबई आ गए। मुंबई का शुरुआती दौर आसान नहीं था। शुरुआत में उन्होंने अपना प्राइवेट एल्बम बाबू टिप टॉप निकाला। इस एल्बम का एक गाना झांझरिया उसकी छनक गई काफी लोकप्रिय हुआ, जिसके बाद इसे एक फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में असली ब्रेक मिलना अभी बाकी था। फिर आया साल 1996 और फिल्म मासूम। इस फिल्म में आनंद राज आनंद ने एक बच्चों का गाना कंपोज किया जो रातों रात हर बच्चे और बड़े की जुबान पर चढ़ गया। आइए सुनते हैं वही आइकॉनिक गीत।

छोटा बच्चा जानकी ने आनंद राज आनंद को इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट गानों की झड़ी लगा दी, चाहे वो अमिताभ बच्चन की फिल्म मेजर साहब का गाना प्यार किया तो निभाना हो या गोविंदा की फिल्में जैसे परदेसी बाबू और हद कर दी आपने। इनकी खास बात ये थी कि वे हर मिजाज का संगीत बना सकते थे, चाहे वो मस्ती भरा ओए राजू हो या फिर बेहद भावुक कर देने वाला कोई रोमांटिक ट्रैक। चलिए रुख करते हैं उस दौर की एक ऐसी ही फिल्म की तरफ जिसने हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर दिया था। सुनते हैं फिल्म मेजर साहब से ये खूबसूरत गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा कार्यक्रम। दोस्तों, जब भी 90 के दशक के कॉमेडी सिनेमा और गोविंदा का नाम आता है, आनंद राज आनंद का संगीत अपने आप याद आ जाता है। गोविंदा की एनर्जी और आनंद जी की ऐसी धुनें, ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर तहलका मचा देता था। हद कर दी आपने जोड़ी नंबर वन और जिस देश में गंगा रहता है जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय लोक संगीत और आधुनिक बीट्स का मिलन कैसे किया जाता है। चलिए सुनवाते हैं आपको फिल्म हद कर दी आपने का ये ट्रैक।

दोस्तों, आनंद राज आनंद केवल एक संगीतकार ही नहीं बल्कि एक शानदार गायक भी हैं। उनकी आवाज़ में एक खास किस्म का रफ एंड टफ और मिट्टी से जुड़ा एहसास है। जब उन्होंने खुद गाना शुरू किया तो श्रोताओं ने उनकी आवाज़ को हाथों हाथ लिया। अब आपको आनंद राज आनंद के ही गाए एक बेहद खूबसूरत गाने को सुनवाते हैं जिसके बोल उन्होंने खुद लिखे थे।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में। मैं हूं कीर्ति। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बहुमुखी संगीतकार, गायक और गीतकार आनंद राज आनंद के बारे में। पहले हमने उनके दिल्ली से मुंबई आने के सफर और 90 के दशक की उनकी हिट्स की बात की, और अब हम रुक करेंगे साल 2000 के दशक का, जहां आनंद राज आनंद ने अपने संगीत का पूरा अंदाज ही बदल दिया। साल 2002 में आई फिल्म कांटे, इस फिल्म के एल्बम ने भारतीय संगीत उद्योग में एक नई क्रांति ला दी थी। सुनवाते हैं कांटे का ये ब्लॉकबस्टर गीत।

आहा माही वे, सुखविंदर सिंह और रिचा शर्मा की आवाज़ और आनंद राज आनंद का कॉम्पोजिशन। इस गाने ने उस समय क्लबों और शादियों में धूम मचा दी थी। फिल्म कांटे के लिए आनंद राज आनंद को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन मिला। इसके अलावा उन्हें आईफा और स्क्रीन अवार्ड्स में भी सराहा गया। इश्क समुंदर और माही वे जैसे गानों ने उन्हें इंडस्ट्री के ए लिस्ट संगीतकारों में खड़ा कर दिया। इन्होंने अपने पूरे करियर में 90 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया, 45 से अधिक फिल्मों में गाने गाए हैं और 40 से अधिक साउंडट्रैक्स के लिए गीत लिखे हैं। बाद के वर्षों में उन्हें प्रतिष्ठित मिर्ची म्यूजिक अवार्ड सहित कई लाइफटाइम और संगीत में सम्मानों से नवाजा गया। कांटे और मुसाफिर के बाद आनंद राज आनंद ने मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्मों का रुख किया। साल 2007 में आई फिल्म वेलकम कौन भूल सकता है, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और नाना पाटेकर की इस फिल्म को। इस फिल्म का गाना ऊंचा लंबा कद काफी पसंद किया गया था और आनंद राज आनंद की खूबी ये रही कि समय बदला, संगीत का दौर बदला, लेकिन उनकी धुनों का तड़का हमेशा तरोताजा रहा। इसके बाद शूट आउट एट लोखंडवाला और डबल धमाल जैसी फिल्मों में भी उनके बनाए गानों ने खूब धूम मचाई।

फिल्म मुसाफिर से सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना ये गीत। दोस्तों, हर कलाकार की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। पर्दे के पीछे की दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। आनंद राज आनंद शादीशुदा हैं और उनकी दो बेटियां हैं। उनका परिवार हमेशा उनके संघर्ष और सफलता में उनकी ताकत रहा है। उनके छोटे भाई हैरी आनंद भी संगीत उद्योग में सक्रिय हैं। एक समय ऐसा आया जब लगातार काम करने के बाद आनंद ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। वे कुछ समय के लिए लंदन चले गए और उन्होंने खुलकर स्वीकार किया है कि बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर होने के बाद उन्होंने क्लिनिकल डिप्रेशन का सामना किया और लंबे समय तक इससे उभरने की लड़ाई लड़ी। लेकिन एक सच्चे कलाकार की पहचान यही है कि वो हर मुश्किल से सीख कर और मजबूत होकर लौटता है। संगीत से उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने विश्व संगीत का अध्ययन किया और वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्मों के जरिए अपनी सुरीली वापसी की घोषणा की।

0: दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आज के इस खास शो में हमने आनंदराज आनंद के संगीत के विशाल समंदर में गोता लगाया। दिल्ली के सराफा बाजार के एक सपने से लेकर मुंबई के संगीत सम्राट बनने तक, जीवन के तनावों पर जीत हासिल करने से लेकर हमें अनगिनत सदाबहार गाने देने तक, आनंदराज आनंद की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनके द्वारा रचित संगीत हमेशा भारतीय सिनेमा के सुनहरे पन्नों में दर्ज रहेगा। उम्मीद है आपको आनंद राज आनंद की जिंदगी और उनके गानों पर आधारित हमारा ये शो पसंद आया होगा। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए सुरों का सफरनामा कार्यक्रम से इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमारे अन्य कार्यक्रम AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 1 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स ही विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन

0: हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जूनियर महिला हॉकी टीम को एशिया कप का टाइटल बचाने के लिए बधाई दी है। उन्होंने जूनियर पुरुष हॉकी टीम को भी फाइनल में 4-1 से शानदार जीत के साथ एशिया कप जीतने के लिए बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह शानदार जीत युवा खिलाड़ियों के असाधारण टैलेंट, अनुशासन और पक्के इरादे को दिखाती है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
0: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा. हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा. हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे.
2: Earlier, in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with the heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewelry industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remain firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewelry Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said that lab-grown diamond market in terms of volume is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea yesterday. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. India has condemned the attack on the commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman. In a statement, the Indian Embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. The leaders of Northern Ireland, Scotland and Wales will meet in Cardiff today to discuss the future of the United Kingdom. Scotland's First Minister John Swinney, Wales' First Minister Rhian ap Iorwerth and Northern Ireland's leadership are expected to sign a joint declaration affirming their right to self-determination, including the right to pursue independence through democratic means. They are also expected to discuss closer cooperation on the economy, energy, Europe and international affairs. In women's cricket, India defeated Sri Lanka by 72 runs in the final of the Women's T20 Asia Cup in Dubai tonight. Batting first, India scored 183 for 5 in 20 overs, while Sri Lanka managed 111 for 7 in their 20 overs. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the first T20 international of the 3-match series in Delhi tonight. Chasing a target of 157 set by Afghanistan, India scored 157 for 3 in 13.4 overs. And with that, we end this news bulletin.
3: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर. मध्यरात्रि के 1:10 हुए हैं. गीत सुनहरे कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त कीर्ति, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा. जी हाँ, स्वर्ण युग के पुराने फिल्मी नगमे जो आपके दिल में आज भी बसे हुए हैं. तो चलिए उस दौर में चलते हैं और इन गीतों का आनंद लेते हैं. फिलहाल पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपके लिए आ रहा है फिल्म प्रिंस से.

अगला गीत आपके लिए आ रहा है फिल्म गाइड से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और एस डी बर्मन ने संगीत से पिरोया था। आइए सुनते हैं ये गीत।

एसटी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक एक सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं हम पुराने फिल्मी नगमे। अगला गीत हसरत जयपुरी का लिखा है, संगीत आईएसडी बर्मन ने दिया था और मोहम्मद रफी की आवाज़ में, फिल्म तेरे घर के सामने से ये गीत।

अभी आपने सुना हेमलता की आवाज में ये गीत। संगीत रविंद्र जैन ने पिरोया था। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार के स्वर में।

अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म ब्रह्मचारी से आ रहा है। मोहम्मद रफ़ी व अन्य आवाज़ों में गीत के बोल हसरत जयपुरी के हैं और शंकर जयकिशन ने इस गीत में संगीत दिया था।

0: ऋषि गीत के साथ गीत सुनहरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। फिलहाल रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए दिशा स्पष्ट करेगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जूनियर महिला हॉकी टीम को एशिया कप का टाइटल बचाने के लिए बधाई दी है। उन्होंने जूनियर पुरुष हॉकी टीम को भी फाइनल में 4-1 से शानदार जीत के साथ एशिया कप जीतने के लिए बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट

0: इसी गीत के साथ नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर वैश्विक नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया

0: के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी कीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। भारत इस महीने की 15 से 18 तारीख तक गुजरात के गांधीनगर में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। यह फोरम सर्कुलर इकोनॉमी, लोगों और समृद्धि के लिए बदलाव थीम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर मंगलवार को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें उद्योगपति, उद्यमी, नवोन्मेषक, शोधकर्ता, नीति निर्माता और शिक्षा भी शामिल हैं। ये फोरम ग्लोबल साउथ के साथ साथ सहयोग, निजी निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देगा। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले रिकर्व तीरंदाज धीरज बोम्मदेवरा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कल मेक्सिको के साल्टिला में रोमांचक शूट ऑफ में जापान के नाकानिशी जूनिया को हराकर तीरंदाजी के विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनने पर गौरव हासिल किया।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS groupings as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government.

ये आकाशवाणी दिल्ली का या लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। ये वक्त होता है कार्यक्रम गीत और गजल का। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और गालिब गजल के सरताज थे और हैं। उनका कलाम आज भी उतना ही ताजा लगता है जितना उनके अपने दौर में था। उनका मुहावरा और बयान आज के दौर में भी मॉडर्न लगता है, इसलिए गायकों के लिए गालिब सदाबहार हैं। वो किसी भी लिबास में सज जाते हैं। जगजीत ने उन्हें मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

0: और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे भक्तिमय संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस खास कार्यक्रम में आप सुनेंगे जी उमा का वायलिन वादन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के बाद प्रदमास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 45 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे बद्ध पद्मासन के बारे में। 5:20 पर

देशभक्ति गीत होगा और 5:30 पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कार्यक्रम स्वर रंजनी में आज आप सुनेंगे राग नट भैरव में डॉक्टर गरुण मिश्रा का

0: सुबह 6 बजे आपको लिए चलेंगे समाचारों की दुनिया में और 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुनेंगे भजन और शब्द। 6:40 पर वक्त होगा चिंतन का, मैथिली शरण गुप्त के विचार सुनेंगे आज आप चिंतन कार्यक्रम में। हर रोज की तरह आज भी 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। छह बजकर 55 पर संस्कृत में समाचार होंगे और 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। उसके बाद 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर इंग्लिश न्यूज, उर्दू समाचारों का वक्त होगा सुबह 8:30 पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीनावेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC आज से विकासशील देशों के लिए मानव अधिकारों पर 6 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम ITEC के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस सत्र में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्घाटन NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन करेंगे। आयोग के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के मानव अधिकार संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना और बेहतर तौर तरीकों के अनुभवों को साझा करना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। होर्मूज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में बहुत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ

मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत का आज पहला दिन है। इस दौरान लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता लाता है। उन्होंने कहा कि ये पवित्र पर्व सभी को जीवन में नए संकल्पों के साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की कि भगवान गणेश सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति लाए। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: and senior government officials to discuss the promotion of Hindi and its coordination with other Indian languages. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesha, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Also known as Vinayak Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day-long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesha at their homes and worship them. President Draupadi Murmu has extended greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. In her message, she said, "Lord Ganesha symbolizes wisdom, prosperity and auspicious beginnings. The president prayed that Lord Ganesha brings happiness, peace, good health and prosperity to everyone." India has condemned the attack on the commercial vessel MT El Gaia off the coast of Oman. In a statement, the Indian Embassy in Oman said, 13 Indian crew members have been rescued so far while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy is said to be closely monitoring the situation and coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. The India Meteorological Department has issued an orange alert warning for heavy rainfall over Gujarat today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, East Rajasthan, Assam. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के 1 घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। ये करने के बाद इस मुद्रा में एक से दो बार सांस अंदर और बाहर लें। और अब यही क्रिया दाएं हाथ से भी दोहराएं। बहुत से लोग ये आसन उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए जहां तक आपके हाथ जाते हैं पद्मासन में बैठे हुए पीठ के पीछे से क्रॉस करते हुए जितनी दूरी तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक ले जाएं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ेगा और आप इस आसन को पूरी तरह से कर पाएंगे। जिन लोगों का बद्ध पद्मासन लग चुका है अब आप उस मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु कभी भी इस आसन को 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से ज्यादा ना करें। 5 बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन करने के लाभ के बारे में बात करें। बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों, घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। बद्ध पद्मासन पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज आदि से राहत दिलाता है। बद्ध पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में भी आपको फायदा देता है, लेकिन इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये आसन निषेध है। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द हो उन्हें बद्ध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में चोट हो तो बद्ध पद्मासन ना करें। कंधों में

चोट या दर्द हो तो ये आसन आपके लिए वर्जित है। और हमेशा की तरह एक सुझाव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर ना लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी एक नए आसन के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में आइए सुनते हैं डॉक्टर गरुण मिश्रा का राग नट भैरव में गायन।